सुप्रभात। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज शनिवार है, शक्षमवत 1948 के भाद्र माह की तिथि 7, तदनुसार 29 अगस्त सन 2026 सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हो रहे हैं। अब हमारा आज का ये प्रसारण आरंभ होता है।

0: हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से होगा बस थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियायोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
2: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रखे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी भी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल की बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीयों से अभी भी कोई संपर्क नहीं हो सका है। मंत्रालय ने बताया कि 149 लोग चीन से नेपाल पहुंचे हैं। चीन में लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास इन लोगों के संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के ईरोड में कोंगु विल्लालर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो राज्य विधानसभा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेल्वन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालास फारकाश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 और 20 सेकेंड हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।

जीवन की परवाह, क्योंकि उनके हृदय में असीम करुणा थी। हाँ, वो करुणा ही तो थी जो उमड़ पड़ी थी उनके अंतरतम से। यही करुणा मानव को महामानव बना देती है। तभी तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर मानव जाति के लिए एक दृष्टांत बनकर इतिहास के पृष्ठ में अमर हो गए। मनुष्य के अंदर दया और करुणा होनी चाहिए। वो दया और करुणा अपने परिवार तक ही सीमित न होकर अड़ोस पड़ोस, परिचित अपरिचित किसी के लिए भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोक सेवा के लिए आपके पास प्रचुर धन राशि हो, आपके पास कुछ नहीं है, पर आपके हृदय में मात्र करुणा के दो चार कण हैं, तो वो भी बहुत बड़ा खजाना है। समस्याएं कहां नहीं बिछी हैं, संकटग्रस्त कौन नहीं है। सेवा और करुणा की जरूरत चारों ओर है। आपको जरूरत है उसकी चादर बिछाने की। रास्ते के हर मोड़ पर पीड़ित हैं, असहाय हैं, जरूरत है उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने की, उनके दर्द को अपना दर्द समझने की। कुछ क्षण के लिए आप स्वयं पीड़ितों के जीवन की कल्पना कीजिए, उसकी देहरी पर खड़े होकर देखिए और सोचिए। आपके हृदय में स्वयं करुणा उमड़ पड़ेगी और उमड़ी हुई करुणा के दो चार छींटों से ही उन्हें नहलाइए। फिर देखिए उनके आशीर्वादों की फुहार, उसमें नहाकर आपको कैसी अलौकिक शांति मिलती है। छोटी छोटी सेवाओं को भी कभी छोटा मत समझिए। अड़ोस पड़ोस, मोहल्ला, रास्ता, नगर, कहीं भी आप ऐसी जरूरत देखिए, अपनी करुणा का दरवाजा तुरंत खोल दीजिए। हो सकता है आपकी करुणा भरी छोटी सी सेवा सहायता किसी को काल के गाल से निकाल दे, किसी माँ का लाल लौटा दे, किसी सुहागिन का लुटता हुआ सुहाग लौटा दे, किसी बच्चे को अनाथ होने से बचा दे, किसी वृद्ध या किसी परिवार को बेसहारा होने से बचा दे। हो सकता है इसके लिए बदले में आपको कोई कीमत ना मिले, पर आपका हृदय परमानंद से परिपूर्ण जरूर होगा। दया और करुणा रहित मानव मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गिरजाघर जाए, वो ईश्वर से बहुत दूर है। और ईश्वर के नजदीक वही है जिसने सोच लिया है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सम्राट अकबर के दरबार में रहने वाले प्रधान सेनापति खान खाना रहीम, हाथ में एक पत्र है। पत्र में है सिर्फ दो पंक्तियां, सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोय। पत्र लाने वाला है एक दीन दरिद्र ब्राह्मण। रहीम सोच में है, पत्र किसी ऐरे गैरे का नहीं, ये तो उनके परम श्रद्धेय मित्र संत तुलसी का है। उन्होंने तुलसी के अधूरे दोहे को पूरा किया, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। साथ ही ब्राह्मण की थैली उन्होंने पर्याप्त अशर्फियों से भर दी। उसे धन की जरूरत थी, बेटी की शादी करनी थी, वो निर्धन था। तुलसी के पहेली नुमा इशारे पर यहां रहीम ने ब्राह्मण को धन दिया। महत्व उसका नहीं है, महत्व है रहीम के भाव का, उनके उदात्त चरित्र का। क्योंकि तुलसी ब्राह्मण है, हिंदू है, और खानखाना रहीम मुसलमान, पर वे तो तुलसी के परम मित्र हैं, परम भक्त हैं। तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भी वे प्रभावित हैं। रहीम तो काशी उनकी

0: बिया में भी आए हैं। तुलसी ने उनका आलिंगन किया है, भव्य सम्मान दिया है अपनी कुटिया में। रहीम ने मोहरों की थैली भेंट की है और तुलसी के इनकार करने पर कहा है इसे रखना ही होगा, क्योंकि चित्रकूट में जो तुम संत सम्मेलन और भंडारा कर रहे हो उसमें इसे लगा देना, मैं भी उस सत्संग में भाग लेने जरूर आऊंगा। चित्रकूट में रहीम संत तुलसी के साथ बहुत दिन तक रहे थे, इसके प्रमाण भी हैं। एक दिन तुलसी ने चित्रकूट में एक हाथी को स्नान के बाद सूंड से अपने ऊपर धूल डालते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने मित्र रहीम से पूछा, धूरी धरत निज शीश पर, कहो रहीम के ही काज? और रहीम ने चट जवाब में कहा, जेहिरज मुनि पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। बात तुलसी और रहीम की नहीं, बात इन कविताओं और कवित्व प्रतिभा की भी नहीं, बात है कट्टर जात पात के उस जमाने में भी हिंदू मुस्लिम एकता की, सद्भावना की। कहां है वहां सांप्रदायिकता का द्वेष या भेदभाव? कोई भी संत या सूफी जाति पाति के प्रपंच से बहुत ऊपर होता है।
1: श्रोता सुन रहे थे आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, 6:11:50 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अनूप जलोटा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना। अब लता मंगेशकर के स्वर में आपको सुनवा रहे हैं ये अगली रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

सुमन कल्याणपुर के स्वर में श्रोता सुन रहे थे ये भक्ति रचना, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

सुमन कल्याणपुर के गाए इसी भक्ति रचना के साथ अब आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त होता है। श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं 6:40 और 35 सेकंड हुए हैं। वक्त तो चला है श्री रामचरितमानस गान के आज की कड़ी का, आइए सुनते हैं।

श्रीराम की बाल लीलाओं से आनंदित अयोध्या निवासी उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। उन्हीं दिनों महामुनि विश्वामित्र अपने आश्रम में जप तप यज्ञ और योग करते थे, किंतु मारिच तथा सुबाहु जैसे राक्षस उनकी साधना में विघ्न डालते। मुनिवर के मन में ऐसा विचार आया कि इन पापी राक्षसों का संहार केवल भगवान के हाथों ही हो सकता है। अतः एक दिन वह राजा दशरथ की राजसभा में पहुंचे।

श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ज पर। श्रोताओं 6:51 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर बाद यानी कि सुबह 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंग प्रसंग, सामाजिक वार्ता का साप्ताहिक कार्यक्रम का वक्त होगा 7:20 पर। 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे हमारे रांची केंद्र से। 8:45 पर होगा कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी और सुबह 9 बजे से 10 बजे तक सुन सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। सुबह 10 बजे सुनिए कार्यक्रम हेलो हजारीबाग और 11 बजे से विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे संध्या 5 बजे तक।

शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी और 5:30 पर होगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी। 6:02 पर होगा कार्यक्रम श्रमिकों के लिए मेहनत कश और 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम श्रोताओं क्षमा करें 6:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम मेहनत का और 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। 7:00 प्रादेशिक समाचार रिले होगा हमारे रांची केंद्र से। 7:15 पर सुनिए कार्यक्रम नव चेतना।

7:30 पर होगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। 8 बजे सुनिए कार्यक्रम फरमाइशी फिल्मों का आपकी चाहत। समाचार संध्या रात्रि 9 बजे और न्यूज एट 9 रात्रि 9:15 पर सुना जा सकता है। 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम स्पॉटलाइट और विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे मुंबई केंद्र से रात्रि 9 बजे से। 10 बजे होगा कार्यक्रम रजनीकंधा और 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचारों के साथ होगा आज के प्रसारण का समापन। तो श्रोताओं, यति रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। 6:55 होने को है। अब संस्कृत में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

सुन रहे थे ये लोकगीत। लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

श्रोता साथियों, शारदा सिन्हा के गाये इसी भोजपुरी लोकगीत के साथ अब आज का लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग समाप्त होता है।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 7:20 और 50 सेकंड हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामाजिक वार्ता का प्रसंग। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता। विषय है आधुनिक युग में रेडियो की प्रसंगिकता। वार्ताकार हैं स्नेहा, आइए सुनते हैं।

आधुनिक युग में रेडियो की प्रासंगिकता। टेलीविजन के आने के पहले तक रेडियो जनसंचार का अच्छा माध्यम माना जाता था, और जब टेलीविजन का दौर आया तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रेडियो की आवाज दब कर रह जाएगी, लेकिन यह अपनी विशेषताओं के कारण लगातार जन जन तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने का काम बखूबी कर रहा है। आज भी रेडियो एक प्रासंगिक माध्यम के रूप में हमारे समक्ष मौजूद है। शहरों में निश्चित रूप से लोग टेलीविजन की ओर आकर्षित हुए हैं, लेकिन कस्बों और गांवों में अभी भी रेडियो की पहुंच सबसे ज्यादा है। गांव में अभी भी रेडियो की पहुंच इतनी ज्यादा क्यों है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है और हर जगह पर बिजली अभी भी नहीं पहुंची है। रेडियो की यह खासियत है कि उसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं होती है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि अंधकार के बीच में रेडियो एक प्रकाश का काम करता है। जहां सड़क नहीं, बिजली नहीं, यातायात के साधन मौजूद नहीं है, वहां भी रेडियो की उपस्थिति है। रेडियो श्रोताओं को साथ में लेकर चलता है और श्रव्य माध्यम होने के नाते वो उनकी कल्पना शक्ति को भी समृद्ध करता है। सस्ता, सुलभ और सुविधाजनक माध्यम होने के कारण आज भी यह सभी जनसंचार माध्यमों में अग्रणी है। जिनके पास अक्षर ज्ञान नहीं है वे लोग अखबार नहीं पढ़ सकते हैं, पर रेडियो सुन सकते हैं। जो लोग अंधे हैं और न अखबार पढ़ सकते हैं और न ही टेलीविजन देख सकते हैं, रेडियो उनका साथी भी है और पथ प्रदर्शक भी। रेडियो न केवल जनता का मनोरंजन करता है बल्कि उन्हें जागरूक भी करता है। जैसा कि हम सब देखते हैं कि सरकार की जो योजनाएं होती हैं उसके विषय में रेडियो पर टेलीविजन के मुकाबले ज्यादा जागरूक किया जाता है। रेडियो आज भी सूचना, शिक्षा और जनमत निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। दूर दराज के इलाकों में लोगों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु सामुदायिक रेडियो की स्थापना की जा रही है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए सामुदायिक रेडियो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सामुदायिक रेडियो में ज्यादातर कार्यक्रम उनके खुद के स्थानीय बोली में होता है। गांव के लोगों पर उसका ज्यादा असर होता है। सामुदायिक रेडियो की और क्या खासियत है? सामुदायिक रेडियो लोगों के लिए, लोगों का, लोगों के द्वारा बना एक सशक्त माध्यम है जो देश के हर ग्रामीण को अपनी बात कहने की पूरी आजादी देता है। विश्व में 95% जनसंख्या तक रेडियो की पहुंच है, जिसमें सामुदायिक रेडियो दूर दराज के समुदायों और छोटे समूहों तक कम लागत में पहुंचने वाला संचार का सबसे आसान साधन है। सबसे ज्यादा सामुदायिक रेडियो स्टेशन तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में है। कहीं यह सामुदायिक रेडियो आदिवासियों की आवाज बन रहा है तो कहीं पहाड़ी समुदायों की आवाज बन रहा है। सामुदायिक रेडियो केंद्रों द्वारा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक विकास, संस्कृति, लोकगीत कार्यक्रमों की प्रसारण किया जाता है। यहाँ काम करने वाली टीम स्थानीय होती है, जिसे समय समय पर कुछ संस्थाएं ट्रेनिंग देती रहती हैं। ये टीम ज्यादातर सामुदायिक स्तर पर वॉलंटियर का काम करती हैं। सामुदायिक रेडियो के खुलने से ग्रामीण क्षेत्र में लोग रेडियो ज्यादा खरीदने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर भैंस खो जाना, सर्टिफिकेट खो जाना, बच्चा खो जाना जैसी सूचनाओं की जानकारी प्रसारित की जाती है। कई बार सामुदायिक की खोई हुई चीजें उन्हें रेडियो के द्वारा आसानी से मिल जाती हैं। भारत सरकार ने 2006 में सामुदायिक रेडियो दिशा निर्देश की अधिसूचना जारी की। इस संगठन में ये कहा गया कि गैर सरकारी संगठन, नागरिक, सामाजिक संगठन, शिक्षा संस्थान को सामुदायिक रेडियो स्टेशन संचालित करने की अनुमति देता है। वर्तमान समय में पूरे देश में 200 से ज्यादा सामुदायिक रेडियो चल रहा

0: रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान सामुदायिक रेडियो की क्या भूमिका रही? कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने, अफवाहों से सचेत रहने व आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए देश भर के सामुदायिक रेडियो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना जैसे भयावह बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए जब केंद्र सरकार द्वारा 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा से ग्रामीण समुदायों में खलबली मच गई थी, क्योंकि ग्रामीण समुदाय इस प्रकार के अप्रत्याशित कदम के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में सामुदायिक रेडियो ग्रामीण समुदायों की मदद के लिए आगे आए और उनकी समस्याओं, जरूरतों को शासन प्रशासन तक पहुंचाई, ताकि जरूरतमंदों को राशन एवं अन्य रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें पहुंचाई जा सके। लॉकडाउन के दौरान उन्हें संक्रमण एवं अफवाहों से बचने के लिए सचेत करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कई प्रकार शिक्षाप्रद कार्यक्रमों के साथ ही लोक संगीत एवं लोक गाथाओं का प्रसारण भी किया गया। विपदा के समय में भी ज्यादातर सामुदायिक रेडियो स्टेशन सीमित संसाधनों के बावजूद समुदायों की सेवा में निरंतर अपनी भूमिका निभाते आ रहे हैं। इसके श्रोता न केवल ग्रामीण है बल्कि कार्यक्रम निर्माण में भी उनकी प्रमुख भूमिका होती है। रेडियो के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर स्थानीय भाषा में जानकारी मिल रही है। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच शहरी क्षेत्रों के स्कूलों ने बच्चों को विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए पढ़ाई शुरू करवा दी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की पढ़ाई सर्वाधिक प्रभावित हो रही थी। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की मदद के लिए देश भर में स्थित विभिन्न सामुदायिक रेडियो आगे आए हैं और अपना 1-2 घंटे का स्लॉट बच्चों की पढ़ाई के लिए शुरू किया है और कई जगह पढ़ाई शुरू हो चुकी है। रेडियो अपने शुरुआती दौर से ही बच्चों को रेडियो स्कूल और रेडियो चले हम जैसे कार्यक्रमों के जरिए अंग्रेजी की बुनियादी शिक्षा देने के साथ ही हर बच्चे को अनिवार्य शिक्षा देने पर बल देता आ रहा है। रेडियो समुदाय के हर वर्ग, मसलन बच्चों, महिलाओं, किसानों, किशोरों तथा वृद्ध लोगों से विभिन्न कार्यक्रमों जरिए जुड़ा है। रेडियो के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं, पंचायत राज, ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर स्थानीय भाषा में कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। अतः अगर हम कहें, रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो देश के लगभग सभी लोगों के पास प्रभावी कार्यक्रम लाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। रेडियो मानव की उंगलियों द्वारा संचालित कठपुतली हो, क्योंकि रेडियो का बटन थोड़ा सा घुमाकर कोई भी व्यक्ति एक कोने से दूसरे कोने जा सकता है। अच्छा, ये सब तो हो गई रेडियो की बातें, पर क्या आप जानते हैं कि भारत में रेडियो कब और किसके द्वारा आरंभ किया गया? भारत में 23 जुलाई 1927 को प्रायोगिक तौर पर प्रसारण शुरू किया गया। उस समय की भारत सरकार एवं इंडियन ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड के बीच समझौता के तहत रेडियो प्रसारण प्रारंभ हुआ। यह कंपनी 1930 में निस्तारण में चली गई, तो इसका राष्ट्रीयकरण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया। आजादी के बाद 1956-57 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो AIR या आकाशवाणी रखा गया। जहां तक आकाशवाणी का सवाल है, आजादी के समय 1947 में इसके केवल 6 केंद्र एवं 18 ट्रांसमीटरों का केंद्र था तथा इसकी पहुंच केवल 11% लोगों तक थी। आज आकाशवाणी में 231 केंद्र तथा 373 ट्रांसमीटर हैं तथा इसकी पहुंच 99% लोगों तक है। भारत जैसे बहुभाषी बहुसांस्कृतिक देश में आकाशवाणी से 24 भाषाओं में इसकी घरेलू सेवा में प्रसारण होता है। आकाशवाणी मीडियम वेव, शॉर्ट वेव एवं FM के माध्यम से प्रसारण सेवा प्रदान करती है। एक समय था जब रेडियो ही संचार का प्रमुख साधन था, लेकिन आज जमाना बदल गया है। धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक बैठे व्यक्ति सतत एक दूसरे के संपर्क में रहता है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी घटना पल भर में सभी जगह प्रसारित हो जाती है। तेज गति से चल रहे इस कालखंड में रेडियो की बात बड़ी असहज लगती होगी, लेकिन यह सच है कि किसी जमाने में रेडियो की अपनी अलग शान थी। रेडियो रखना, रेडियो सुनना, रेडियो के कार्यक्रमों में भाग लेना गौरव की बात होती थी। टेलीविजन के आने के बाद रेडियो श्रोताओं में कमी आई है, लेकिन FM के आने के बाद पुनः रेडियो के दिन लौट आए हैं। आजादी के बाद रेडियो का इतिहास सरकारी ही रहा है। भारत में रेडियो सरकारी नियंत्रण में ही रहा था। आम आदमी को रेडियो चलाने की अनुमति हेतु अनेक क्षेत्रों में दबाव आया। सन 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा रेडियो तरंगों पर सरकार का एकाधिकार नहीं है। सन 2002 में एनडीए सरकार ने शिक्षण संस्थानों को कैंपस रेडियो स्टेशन खोलने की अनुमति दी। उसके बाद 2006 में शासन ने स्वयंसेवी संस्थानों को रेडियो स्टेशन चलाने की अनुमति दी, परंतु इन रेडियो स्टेशनों से समाचार या समसामयिक विषयों पर चर्चा के प्रसारण पर पाबंदी है।
1: आधुनिक युग में रेडियो की प्रासंगिकता। आधुनिक युग में रेडियो की प्रासंगिकता, इस विषय पर वार्ता सुन रहे थे स्नेहा कुमारी से, और इसी वार्ता के साथ अब आज का साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसंग समाप्त होता है। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

कार्यक्रम सुगम संगीत का पहला नजराना श्रोता सुन रहे थे अब्दुल रब जावेद के स्वर में। अगला सुगम संगीत आपको सुनवा रहे हैं मृदुला भट्टाचार्य के स्वर में।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

राजेश दत्त के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये सुगम संगीत। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनवा रहे हैं जिगर मुरादाबादी का गाया ये रचना।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी का। यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने को हैं। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज के आज के अंकों। और 8:30 पर आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार, रिले होगा हमारे रांची केंद्र से। तो समाचारों के लिए कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
5: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
4: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
6: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
4: भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमरीकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ 30वां विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
7: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन के

0: और लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308-8718, 0112308-8719। आप व्हाट्सएप नंबर 9968291988 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 9779851316807 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
3: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में CNG के मूल्य में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में CNG की कीमत 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित CNG कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
4: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो

0: कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने ओडिशा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता एन योव एनजी को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हों, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद फरहत। विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग। जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित। नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमेरिका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, पीएम मोदी की कलाई पर सजा बच्चों के प्यार का धागा। नशे के खिलाफ एकजुट हो रही देहरादून के थानी गांव की महिलाएं, नशे के कारोबार से गांव को बचाना है लक्ष्य, जनसत्ता की सुर्खी है। सोना 26 साल बाद सबसे बड़े मासिक उछाल की तरफ, अगस्त में दाम 14% बढ़ चुके, दैनिक भास्कर की खबर है। अमर उजाला ने अपने कारोबारी पन्ने पर शेयर बाजार से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, आईटी शेयरों ने दिया बाजार को सहारा, सेंसेक्स निफ्टी में 2 दिन की गिरावट थमी। शिक्षा की दीवार से आसान हो रही पढ़ाई, सरकारी स्कूल में नवाचार, निजी स्कूलों से हटा सरकारी में कराया प्रवेश। मध्य प्रदेश के सीहोर में इस योजना के माध्यम से अंग्रेजी सीखने के सरल तरीके को अपनाया जा रहा है, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
0: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today to enhance economic and defense cooperation. India signs deal with United States to procure Javelin anti-tank guided missile systems. Death toll in Nepal flash floods rises to 579, while 1,924 people still missing. India steps up humanitarian assistance to the neighboring country. Government to introduce fortnightly sugar allocation system from next month to ensure availability of sugar in market on time. And India's Vilavan Senthil Kumar wins PSA Budapest Swash Open title, beating Balázs Farkas of Hungary. And now the news in detail. प्राइम मिनिस्टर

0: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
1: पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की ओर से आयोजित CGL प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सफल 4 अभ्यर्थियों को CID ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभ्यर्थियों में धनबाद निवासी दीपक कुमार, बिहार भोजपुर निवासी उमेश कुमार राय, धनबाद निवासी विजय कुमार तिवारी और बिहार के सारण निवासी आनंद कुमार सिंह शामिल हैं। इस मामले में जांच एजेंसी परीक्षा में गड़बड़ी के पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और नियुक्तियों में अनियमितताओं के विरोध में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की ओर से आयोजित भर्ती सुधार यात्रा दुमका के SP कॉलेज परिसर से निकाली गई। इस दौरान छात्र नेता ने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ी के कारण राज्य के मूल आदिवासी और मूलवासी युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800-1800-4747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। विशेषज्ञ समिति के प्रश्न पत्रों के तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद और भाषा संबंधी त्रुटियां पाई जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। 16 अगस्त को समाज शास्त्र, वाणिज्य और अंग्रेजी विषयों की उत्तर कुंजी जारी करने के बाद तीनों परीक्षाएं इस वर्ष सितंबर में फिर से आयोजित करने की घोषणा की गई थी। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर सभी जिले के निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा

0: समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि होम टू रोल सत्यापन के दौरान बीएलओ घर घर जाकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं रहे।
1: भारत का नागरिक का नाम ये मतदाता सूची से छूटना नहीं चाहिए। निर्देश सभी कर्मचारी का दिया हुआ है, सभी कर्मचारी इसके लिए प्रयास कर रहा है। भी मतदाता से भी मेरा अनुरोध है के लिए आप सहयोग करें। केवल विदेशी नागरिक उनका नाम कटेगी, बाकी सभी पात्र पात्र नागरिक का नाम आएगी। उससे एक वोटर का नाम है 1 अक्टूबर 2026 में उनका सबका नाम रहना आवश्यक है।
0: सिमडेगा पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी रणवीर सिंह ने बताया कि गोवंश पशुओं के अवैध कारोबार और गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तारी हुई है।
2: सूचना के आलोक में पुलिस का थाना डाकर चेकिंग लगाया, गाड़ी को पकड़ा गया, कुछ लोगों को पकड़ाया और 2 व्यक्तियों को उड़ीसा से गिरफ्तार किया। इन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 10/8/26 की गाड़ी पकड़ी गई थी बोले मेरा थाना अंदागत, उसमें 108 केजी गांजा मिला था। उस दिन के लोग निकाल दिए गए, जिसमें 5 लोगों की टोटल गिरफ्तारी की गई है।
0: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में 1 महीने तक चले राजकीय श्रावणी मेले का समापन हो गया। इसके साथ ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर में अर्घा हटाकर स्पर्श पूजा की शुरुआत की गई। राजकीय श्रावणी मेले के अंतिम दिन कल उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया, पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर समेत कई अधिकारियों ने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। मौसम। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम केंद्र रांची ने 31 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवा को लेकर चेतावनी जारी की है। आज दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हॉकी। इंडिया ने बेल्जियम और नेदरलैंड्स में हुए FIH महिला हॉकी विश्व कप में 5वां स्थान हासिल करने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को 50 लाख रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की है। झारखंड की सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल एम्स्टेलविन में 5वें और 6ठे स्थान के लिए हुए मैच में दुनिया की 5वीं वरीयता वाली टीम जर्मनी को 3-1 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की। भारतीय टीम की सफलता पर कप्तान सलीमा टेटे के सिमडेगा जिला स्थित गांव सहित पूरे झारखंड में खुशी की लहर है। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नेपाल में बाढ़ की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल त्रासदी के बीच 21 भारतीय लौटे, 85 बचाए गए और 320 अब भी लापता। प्रभात खबर ने नेपाल को हाइड्रो पावर प्लांट से पलामू मजदूर के लापता होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने राजस्व दस्तावेजों का गायब होने के मामले में नामकुम के तत्कालीन CEO श्वेता वर्मा सहित 3 लोगों पर प्राथमिकी की खबर को प्रमुखता दी है। वहीं हिंदुस्तान ने रांची में इस महीने स्वाइन फ्लू के 8 मरीजों की पुष्टि की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी। और अब अंत में मुख्य समाचार। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की CGL परीक्षा में अनियमितता मामले में CID ने 4 सफल अभ्यर्थियों को किया गिरफ्तार। पूरे नेटवर्क की हो रही जांच। UGC की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित। 9 और 10 सितंबर को दोबारा होगी अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र विषय की परीक्षा। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में चल रहे राजकीय श्रावणी मेले का हुआ समापन। बाबा मंदिर से हटा अर्घा सिस्टम, स्पर्श पूजा शुरू। और हॉकी इंडिया ने FIH महिला हॉकी विश्व कप में 5वां स्थान हासिल करने पर भारतीय महिला टीम को 50 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। झारखंड में खुशी की लहर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर।

0: माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जनवरी तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली के पते पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ज पर। स्वतः स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में एक कार्यक्रम होगा मॉर्निंग मेलोडी।

मॉर्निंग मेलोडी कार्यक्रम का पहला गीत श्रोता सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को हमने लिया था आपकी कसम फिल्म से।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
4: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।

श्रोताओं से गीत के साथ अब आज का मॉर्निंग मेलोडी का सफर यहीं पे खत्म होता है। आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको जिन फिल्मों के गीत सुनवाए उनके नाम इस प्रकार हैं, आपकी कसम, मर्यादा और कर्ज। तो मोहम्मद रफी साहब के गाए इसे खूबसूरत गीत के साथ अब आज का मॉर्निंग मेलोडी कार्यक्रम समाप्त होता है। अनुमति दीजिए अशोक को, नमस्कार।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी आकाशवाणी का। ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 9 बजने को हैं अब विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम होंगे हमारे मुंबई केंद्र से सुबह 10 बजे तक। तो तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। धूम 3 फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं मोहित चौहान की आवाज में अगला गीत। कौसर मुनि ने इस गीत को लिखा है।

जूलियस पैकियम ने इस गीत को संगीत दिया था। संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कुछ

0: काबू वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।

जानी मानी गायिका दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे

श्रोताओं, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आपको बता दें कि आज 29 अगस्त को हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस। अच्छा, क्यों मनाया जाता है ये दिवस? इस दिन का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि दुनिया को परमाणु हथियारों के परीक्षण से होने वाली मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ने वाले खतरों के प्रति जागरूक करना है। परमाणु परीक्षण से रेडिएशन फैल सकता है, जिसका असर लंबे समय तक मनुष्य और प्रकृति पर रह सकता है। अब इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि परमाणु हथियारों के परीक्षण को रोका जाए, देशों के बीच शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए और ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएं जहां परमाणु परीक्षण और उनसे होने वाले विनाश का खतरा ना हो। तो आइए आज इस दिवस पर हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना और उसके लिए प्रयास करें जहां शक्ति का प्रदर्शन विनाश से नहीं बल्कि शांति, संवाद और मानवता से हो।

0: रश्मि विराग का लिखा गीत आप सुन रहे थे। संगीत बद किया था आर्को ने, फिल्म का नाम था सुखी और आवाज थी सचेत टंडन की।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

हमारे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

चांद सिफारिश, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म फना से। शान और कैलाश खैर की आवाजें थी, प्रसून जोशी का लिखा गीत, जतिन ललित का संगीत। ढिशक्याओं इस फिल्म से आप गीत सुन रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में। सनमजीत तलवार ने इस गीत को लिखा है, पलाश मुश्चल की आवाज, माफ कीजिएगा, पलक मुश्चल की द्वारा संगीतबद्ध किया गीत।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में रिश्कियाओं फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इस गीत के संगीतकार का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, पलाश मुच्छल ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। तेजस फिल्म से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और शाश्वत सचदेव की आवाज़ों में।

तेजस फिल्म से गीत सुन रहे थे आप श्रेया घोषाल और शाश्वत सचदेव की आवाज में कुमार के बोल थे शाश्वत सचदेव का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यही समाप्त करने की दीजिए आज्ञा पूजा नरानिया को। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: दोस्तों आइए आज बात करें अभिनेत्री लीना चंदावरकर की।
1: क्या तुम सच कह रहे हो? अरे क्या, तुम तो बहुत छोटा ही है।
2: आपको तो ताज्जुब होगा कि इतनी गहरी चोट खाने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ।
1: मुझे गलत मत समझना।
2: यही तो अफसोस है, मैं आपको बिल्कुल सही समझ गया हूँ।
1: मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। सच कहती हूँ, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल नादानी है।
2: कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा।
1: वाह अच्छा शेर है, बैठो मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ।
2: ड्रेसिंग की क्या जरूरत है, दुनिया का हर जख्म कुछ दिनों बाद भर जाता है और फिर अपनी जिंदगी तो कांटों में कटी है।
1: मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उस आदमी से सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें देहरादून तक ले जाए और तुम फिर कड़ी नजर रखे। लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती
2: कि मैं टूट जाऊंगा।
3: लीना ठीक अब भी मैं लेके कहा था, तू कहा थी अब तक
1: घर पे ही थी और कहा थी
2: नेंद्रा को मेकअप करने के लिए 2 घंटे चाहिए।
1: मैं मेकअप नहीं कर रही थी, गाड़ी का इंतजार कर रही थी। गाड़ी तुम लेकर आए, मैं कैसे आती?
2: अंकल की गाड़ी ले आती।
1: उनकी गाड़ी में आई नहीं, मुझे अकल मत सिखाओ।
2: अकल तो उसे सिखाई जाती है जिसके पास अकल हो।
3: अरे अरे अरे क्या हो गया तुम लोगों को बाबा, आज मेरा बर्थडे है, उसे लड़ोगे?
1: आज मेरी सबसे प्यारी सहेली लीना मेरी बर्थडे पार्टी की खुशी में एक गाना सुनाएगी।
2: हाँ हाँ

रीना चंदावरकर दरअसल कारवाड़ की रहने वाली हैं। 15 साल की उम्र में उन्हें अभिनय का चस्का लग गया और होनहार कलाकारों के चयन के लिए होने वाली एक प्रतियोगिता में उन्होंने चुपके से आवेदन कर दिया। उनके माता पिता ने इस बात का विरोध किया, लेकिन दादाजी का समर्थन पाकर लीना चली आई मुंबई। उम्र बहुत कम होने के कारण इन दिनों उन्हें हीरोइन के रोल नहीं दिए जाते थे। कुछ फिल्मों में लीना चंदावरकर ने बहन की भूमिकाएं की। इस दौर में लीना ने छुटपुट मॉडलिंग भी की। उन दिनों अभिनेता और निर्देशक सुनील दत्त अपनी फिल्म मन का मीत की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म में उन्होंने लीना को पहली बार हीरोइन बनाया।

फिल्म मन का मीत की तैयारी के दौरान सुनील दत्त ने लीना की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अपनी पत्नी नरगिस को सौंपी। नरगिस जी के नजदीक रहकर लीना ने भाषा, संवाद अदायगी, नृत्य, तैराकी और ड्राइविंग सीखी। फिल्म मन का मीत को बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन लीना चंदावरकर की पहचान जरूर बन गई। अगले ही साल सन 1970 में लीना चंदावरकर की धमाकेदार फिल्म आई हम जोली।

0: जाने दो जाना है गाते गाते लीना धूम मचाती हुई चोटी की हीरोइनों में गिनी जाने लगी। शम्मी कपूर के साथ वे नजर आई फिल्म प्रीतम और फिल्म जाने अनजाने में।
1: राम, आज मैं बहुत खुश हूँ। दिल पे एक बोझा था, वो आज हट गया।
2: बोझ? कैसा बोझ?
1: आज जब तुम्हारा फोन आया था तो हेमंत भी वहाँ मौजूद था। उसने एकदम अचानक शादी की बात छेड़ी।
2: मुबारक हो।
1: ओहो, तुमसे बात करना भी मुश्किल है। मैंने हेमंत से साफ साफ कह दिया कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ।
2: माला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब तुम्हें मालूम होगा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ तो
1: अब कोई फायदा नहीं राम।

जब शक्ति सामंत जी आए घर पर और वो जाने अनजाने के लिए आए थे, तो उन्होंने दो फिल्मों के ऑफर लेके आए थे, एक में राजेश जी थे और एक में शम्मी जी। अब पता नहीं मेरे पापा को किसने भड़काया था कि शम्मी जी बहुत ही अपने टाइम में वो क्या बोलते हैं एकदम टाइप के थे, तो पापा ने बोला, पापा भी एकदम उनको मालूम नहीं ना, बोले कि राजेश खन्ना यस, शम्मी कपूर नो। तो उन्होंने वाई क्यों नो, तो बोलते वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, राजेश खन्ना नए नए हैं, तो नहीं आप बोलिए ना, ये शम्मी जी के साथ में बहुत अच्छा रोल है और इतना अच्छा मतलब सब्जेक्ट है। वो जमाना ऐसे था कि कोई आर्टिस्ट ही थे नहीं, इसलिए हम लोगों को वाकई बहुत इज्जत मिली और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इस तरह

0: काफी क्लोज आ गई और वो इतने अच्छे इंसान थे कि मैं
1: अभिनेत्री लीना चंदावरकर की धर्मेंद्र के साथ जोड़ी बनी फिल्म रखवाला में।

1971 में हास्य अभिनेता महमूद की फिल्म आई मैं सुंदर हूँ। इस फिल्म के जरिए लीना ने अपने चाहने वालों से कहा,

ये सन 1973 में आई फिल्म अनहोनी का गीत था। इसके बाद लीना की एक बड़ी शानदार फिल्म आई मनचली।

फिल्म मंचली में लीना चंदावरकर ने लोगों को अपनी अदाओं से खूब गुदगुदाया और ये साबित कर दिया कि कॉमेडी में भी उनका कोई जवाब नहीं है। सन 1974 में आई फिल्म विदाई, इस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए लीना को खूब तारीफ मिली।

0: सन 1974 में विदाई फिल्म के साथ ही लीना चंदावरकर ने फिल्म उद्योग को अलविदा कह दिया था, क्योंकि सिद्धार्थ वांदोड़कर के साथ उनका विवाह हो गया था। एक दर्दनाक दुर्घटना में उनके पति नहीं रहे और लीना पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मजबूर होकर लीना चंदावरकर को दोबारा फिल्मी दुनिया में आना पड़ा।
1: तो जिंदगी है कभी खुशी है कभी

0: कभी खुशी है कभी गम।
1: आगे चलकर लीना चंदावरकर की मुलाकात हुई सुरों के बादशाह किशोर कुमार से, जो उनके जीवन साथी बने।
2: आज भी मैं जब कोई गाना सुनती हूँ उनका, तो एक एक गाने के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। जैसे एक गाना था, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19,750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

श्रोता सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 10 बज चुके हैं, वक्त हो चला है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो हजारीबाग।

कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुन रहे सभी संगीत प्रेमी श्रोताओं को अशोक का नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आपके मिजाज भाई? बारिश ने तो थोड़ा सा जनजीवन को और भी खुशहाल

बना दिया है। ये अलग बात है कि बारिश से जल जमाव की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है और इस पे हमें जमीनी स्तर पर कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि प्रशासन को भी हर जगह का जो है सो उनका ध्यान हमारा कर्तव्य बनता है कि उस ओर आकृष्ट करने का। अगर आपके मोहल्ले में कहीं पर भी जल जमाव हो रहा है या परेशानी है बारिश से, गड्ढे हैं, तो उसके लिए नगर पालिका से संबंध करें, आप संबंधित अधिकारी हैं उन तक यह खबर पहुंचाएं, निसंदेह रूप से आपकी सुनी जाएगी और समस्या को त्वरित निदान किया जाएगा। ऐसा हम पॉजिटिव सोच के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। खेतीबाड़ी ठीक ठाक चल रही है, इधर कुछ क्षेत्रों में झारखंड में अच्छी बारिश हुई है, इसलिए धान की फसल जो है सो कुछ दिनों में लहलहाने लगेगी, रुपाई ठीक ठाक हो गई है और अब कृषक ठीक हैं तो हमारा देश ठीक रहेगा, खुशहाल रहेगा और देश खुशहाल रहेगा तो हमारे हेलो हजारीबाग के जो हमारे श्रोता हैं वो भी निसंदेह रूप से खुशहाल रहेंगे। इसी खुशहाली को ध्यान में रखते हुए आज के सुविचार को हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। कार्यक्रम के आरंभ में ही हर दिन सोचिए कि आज आपके पास एक नया अवसर है। जी हाँ, आपके पास कोई भी अवसर आता है तो ये ना सोचे कि चलिए आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, ऐसा कतई नहीं है। आप उसे आज ही करिए और नई शुरुआत के साथ कीजिए, नए जोशो खरोस के साथ कीजिए। चलिए एक खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं और उसके बाद कार्यक्रम में ढेर सारी बातें हैं आपके आपसे साझा करने को।

0: खूबसूरत से गीत के बाद चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, मानव जीवन में खेलकूद का बहुत ही अत्यधिक महत्व है। ये एक और आपको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए आपको अग्रणी करता है, आगे लाता है। दूसरी ओर अगर आप करियर के भी रूप में खेल को अपनाते हैं तो इसमें बेशुमार करियर की संभावनाएं हैं। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो खेल खेलने से शरीर चुस्त दुरुस्त और मजबूत रहता है। नियमित शारीरिक गतिविधि से रक्त संचार सही रहता है और हमारा स्टेमिना बढ़ता है। निरंतर रूप से खेल से जुड़े रहने से मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा जो है सो कम हो जाता है। मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। खेलने से मानसिक तनाव कम होता है और तरोताजा महसूस होता है। खेलकूद से मानसिक मस्तिष्क तेज होता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। सकारात्मक हार्मोन एंडोर्फिन के निकलने से चिंता और डिप्रेशन भी दूर होते हैं। इन सब के अलावा निरंतर खेल से जुड़े रहने से खेल हमें अनुशासन, संयम और समय का सही उपयोग करना सिखाते हैं। मैदान पर हार जीत से सहनशीलता और कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा जो है सो जागृत होती है और इससे नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप और टीम के साथ काम करने की भावना विकसित होती है। तो ये था खेल का महत्व। अब श्रोताओं, आज है 29 अगस्त, तो आज के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में भी हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, आज मनाते हैं। और ये याद किया जाता है आज के दिन महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी को, तो उनकी जयंती को हम सम्मान के रूप में मनाते हैं और राष्ट्रीय खेल दिवस कहा जाता है। आज मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर, यह दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। उन्होंने भारत सरकार को 1928, 1932, 1936 में लगातार 3 स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल्स दिलाने में अहम भूमिका निभाई। भारत सरकार ने वर्ष 2012 में आधिकारिक तौर पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो ये थी खेल दिवस के बारे में कुछ जानकारी। और निरंतर खेलने से हमारे शारीरिक और मानसिक का कितना विकास होता है, इस संबंध में छोटी सी चर्चा। एक गीत के बाद फिर तुरंत वापस आते हैं।
1: हर घर की वाणी, आकाशवाणी।

दिल की वाणी आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

कार्यक्रम हलवाजारी भाग में एक बार फिर से सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज विश्व परमाणु परीक्षण दिवस भी हम मना रहे हैं और इसके विरोध में हम सब ये दिवस को मनाते हैं, क्योंकि कहीं पर भी जब परीक्षण किया जाता है या युद्ध के दौरान इसका उपयोग किया जाता है तो उसके मानवीय स्वरूप, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर अत्यंत विनाशकारी और दीर्घकालिक दुष्प्रभाव होते हैं। स्वास्थ्य पर तो इसका इतना बुरा असर पड़ता है कि तीव्र विकिरण सिंड्रोम के कारण विकिरण के संपर्क में आने से मतली, उल्टी, दस्त, बाल झड़ना और गंभीर मामलों में जो है लोगों की मृत्यु भी होती है, हो जाती है। दीर्घकालिक बीमारियां जैसे कैंसर, विशेषकर थायराइड कैंसर और ल्यूकेमिया, जो कि रक्त का कैंसर कहा जाता है, का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अनुवांशिक विकृतियां भी पैदा होती है। रेडियोधर्मी प्रभाव डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों में शारीरिक और मानसिक विकलांगता या जन्मजात विकृतियां पैदा होती है। इन सब के अलावा पर्यावरण पर प्रकृति का बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। रेडियो धर्मी फॉल आउट की वजह से परीक्षण के दौरान उड़ने वाले रेडियोधर्मी कण हवा, बारिश और पानी के जरिए दूर दूर तक फैल जाते हैं और वातावरण को जहरीला बना देते हैं। मिट्टी और जल प्रदूषण, इससे कृषि योग्य भूमि और पीने के पानी का स्रोत सदियों तक दूषित हो जाता है, जिससे खाद्य श्रृंखला, फूड चैन को भी प्रभावित होता है। वन्य जीवों का भी विनाश होने का खतरा बना रहता है। विस्फोट के भयंकर गर्मी और विकिरण से आसपास के जीव जंतु और वनस्पतियां भी नष्ट हो जाती हैं। अश्रोताओं, तो इसी दुष्प्रभाव से बचने के लिए आज जो है सो परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है कि भाई इससे हमारे जब इससे कुछ भी फायदा नहीं है तो हम क्यों परीक्षण करें, और परीक्षण करें तो करें लेकिन युद्ध के दौरान इन शक्तियों का प्रयोग से बचना चाहिए।

कार्यक्रम हेलो हजारीबाग आप सुन रहे हैं अशोक के साथ आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोताओं चलिए अखबार की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। हजारीबाग दैनिक भास्कर का हजारीबाग का पन्ना इस वक्त हमारे हाथों में है। तो आज का जो तापमान रहा न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम तापमान रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस। शहर में आज हमेशा की तरह आज भी भगवत गीता पाठ का आयोजन किया जाएगा झेली सेंटर में संध्या 6:30 पर और महावीर स्थान मंदिर में पूजा पाठ का आयोजन होगा सुबह 7 बजे से। अब बीते कल रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में और हजारीबाग में भी धूमधाम से मनाई गई, मगर एक साथ कई त्यौहार होने से चीनी के दाम बढ़ने से मिठाइयां हुई महंगी। इसमें उत्साह में थोड़ी सी कमी देखी गई, हालांकि भीड़ भाड़ में कोई कमी नहीं थी और उत्साह भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। सड़क चौड़ा है तो बिल्कुल जाम में फंस गए थे। और होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर बनेगा हाईटेक, पहले फेज में 6 करोड़ से काम शुरू। यह हजारीबाग होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर सिंदूर को सुरक्षित और आधुनिक संसाधनों से लैस करने की कवायद शुरू हो गई है। यह पहल डीजी होमगार्ड सह अग्निशामक एमएस भाटिया द्वारा की गई है और पहले फेज में 6 करोड़ की योजनाओं पर काम शुरू किया जाएगा। 11 करोड़ की योजनाएं प्रभावित हैं।

और जेल में बंदी भाइयों को भी राखी बांधने पहुंची 800 बहनें। जी हां, कतार में खड़ी थी बहनें, भाई की कलाई में राखी बांधते ही छलकी दोनों की आंखों से दर्द। ये खबर भी सुर्खियों में है। और 3 किलोमीटर सड़क पूरी तरह जर्जर व कीचड़ से भरा, बरसात के दिनों में लोगों को आने जाने में हो रही है मुश्किलें। ये है चनारो के 4 गांव में सड़क नहीं है, 1500 लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड के चनारो पंचायत की ये खबर हमने आप तक साझा की। उन्हें नाम है बिनकरवा सिंघानिया और कानाबांध और साथ ही चंदनाटाड़।

और भड़कागांव की एक बड़ी अच्छी खबर है, लोगों ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधा। जी हाँ, यह खबर है भड़कागांव की, लोगों ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधा, जंगल बचाने का लिया संकल्प। बहुत अच्छी खबर है। इस तरह से सभी लोगों को चाहिए कि आसपास अगर वन है, जंगल है, हमारे पर्यावरण का रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। देखिए आज पर्यावरण कब क्या कौन सा जो है हम पर कहर बन के टूटे, ये हम नहीं जानते हैं। नेपाल की जो त्रासदी हुई है, ये ऐसे ही कहर की जो है हमें सचेत रहने के लिए हमें सूचित करती है। और बुढ़वा महादेव में उमड़ी उमड़ी भीड़, भक्ति जागरण का आयोजन, कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत गाकर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। चौपारण मुखिया ने खिलाड़ियों के बीच बांटे फुटबॉल, ये चौपारण की खबर है। फुटबॉल प्रतियोगिता उद्घाटन मैच में चंदोल की सीनियर टीम ने जूनियर टीम को 4-0 से हराया, ये भड़कागांव की खबर है। और बेलहारा फुटबॉल टूर्नामेंट

रोमांच टूर्नामेंट का रोमांच शुरू रानी छुआ हुआ पोग डंडा ने मारी बाजी, ये बरही की खबर थी। और सरना झंडागढ़ी पर उमड़ा आदिवासियों आदिवासी समाज जल जंगल जमीन बचाने का लिया गया संकल्प और विद्यालय की छात्राओं ने जवानों की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र। ये 203 कोबरा बटालियन की अधिकारी मेस में रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हर्षोल्लास के साथ उत्साह के साथ रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बटालियन के कमांडेंट पवन कुमार सिंह एमजी के मार्गदर्शन की अगुवाई में हुआ। ये बरी से खबर थी। अब एक गीत सुनवाते हैं, उसके बाद कुछ और देश विदेश की खबरों पर जिक्र करेंगे।

कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में एक बार फिर से मैं अशोक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अखबार के हेडलाइंस का विवरण

वक्त प्रभात खबर के कुछ हेडलाइंस पर जिक्र करना चाहेंगे। नेपाल में आई अचानक बाढ़ से अब तक 592 की मौत, 320 समेत 1500 से ज्यादा भारतीय भी लापता हो गए हैं और रेस्क्यू टीम लगातार जो है सो इस संदर्भ में मेहनत कर रही है। कईयों को बाहर निकाला भी गया है, खोज निकाला गया है, लेकिन कई भी अभी भी लापता हैं। और यही हमने जिक्र किया था कि पर्यावरण कब हमारे साथ जो है कठोर पूर्वक मजाक कर देता है, ये हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि अधिक से अधिक पेड़ वृक्ष लगाकर हम पर्यावरण को संतुलित करें और अपने आप को भविष्य के लिए सुरक्षित कर दें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं और लोगों को इस ओर इस दिशा में प्रेरित करें।

और एक खबर है, अमेरिका से 100 ज्वेलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत। और जेएससीसी सीजीएल परीक्षा में रिश्वत देकर सफल हुए 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बड़ी अच्छी खबर है और इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। और लगातार प्रोटेस्ट के कारण सरकार ने जो है सो इस दिशा में कदम बढ़ाए और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो है सो इसकी जांच की जा रही है। और इस संदर्भ में 4 लोगों को जो है सो सीईडी की तरफ से फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। और एक और खबर है कि ट्रॉली से टकराई वंदे भारत एक्सप्रेस, 40 मिनट तक रुकी रही। ये गठगमदाग की खबर है वंदे भारत रांची से पटना जाने वाली ट्रेन के संबंध में। एक और खबर के अनुसार कार्मिक विभाग ने 11वीं से 13वीं सिविल सेवा में सफल 2 अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी रद्द कर दिया है। सरकार ने 1.21 लाख टन प्याज वफर का 30% सड़ने से इनकार किया। जी हाँ, प्याज और चीनी के भाव से पब्लिक में थोड़ी परेशानी का सबब है और उम्मीद है कि सरकार इस पर पहल करते हुए जल्द से जल्द इन दामों की बेशुमार वृद्धि को नियंत्रित करेगी। एक और खूबसूरत संगीत, उसके बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा।

कार्यक्रम हरे हजारे बाग में एक बार फिर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, अब कुछ खेल की खबरों की ओर हम रुख करते हैं। चेस से संबंधित यह खबर है, 6 अंक पीछे थे पर ज्ञानानंदा अंत में 15-13 से जीता जीसीटी फाइनल। श्रीलंका में 119 सीरीज जीत के बावजूद क्लीन स्वीप से चूकी टीम इंडिया। ये खबर है खेल से संबंधित जुड़ी खबर। और एशिया कप खिताब बचाने के लिए उतरेगी हरमनप्रीत की टीम। T20 एशिया कप जो कि शुक्रवार से UAE में शुरू हो चुका है, अब भारत का मैच जो है सो 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ, 3 सितंबर को हांगकांग के खिलाफ और 5 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होगा। और इन मैचों का सीधा प्रसारण भी आप आकाशवाणी पर सुन सकेंगे। ये खुशी की बात है, तो ट्यून कीजिएगा और सुनते रहिएगा आकाशवाणी हजारीबाग। और 3 मैच के बाद सेमीफाइनल की राह जो है सो भारत के लिए आसान हो जाएगी। तो ये थी कुछ खेल से जुड़ी खबरें। और श्रोताओं, आज भारतीय सिने तारीख का

चलिए श्रोताओ, हम जल्दी से आपको खबर दे दें कि आज के दिन कौन कौन सी घटनाएं विश्व में हुई थी। आज के दिन 1831 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने पहली बार विद्युत परिवर्तित ट्रांसफार्मर का प्रदर्शन किया था। 1833 में ब्रिटिश दास तथा प्रथा उन्मूलन अधिनियम कानून बना, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य में दासों को मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई। 1898 में प्रसिद्ध गुडइयर टायर कंपनी की स्थापना हुई।

और 1953 में सोवियत संघ रूस ने अपने पहले हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया। 1974 में चौधरी चरण सिंह ने भारतीय लोकदल नाम की नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। अब आज के दिन जन्म लेने वाले व्यक्तियों की सूची भी हम आपको बता दें। 1905 में भारत के महान हॉकी खिलाड़ी और हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। इनकी जयंती को भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जैसे कि हमने पहले भी इस बारे में आपको खबर दी। 1949 में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक के राधाकृष्णन का जन्म हुआ था और जिनके नेतृत्व में भारत ने अपने पहले ही प्रयास में मंगलयान मिशन में को सफल बनाया था। और निधन होने वाली इन लेने वाली व्यक्तियों की सूची भी हम आपको बता दें। 1976 मार्च के दिन बंगाल के प्रसिद्ध विद्रोही कवि और संगीतकार काजी नजरुल इस्लाम का निधन हुआ था। और 2014 में ऑस्कर विजेता प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रिचर्ड एटनबरा, जिन्होंने गांधी फिल्म बनाई थी, उनका निधन हुआ था। तो ये थी इतिहास के पन्नों की संपूर्ण जानकारी। श्रोताओं, तो ये था आज का हेलो हजारीबाग का अंक। आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, इस संबंध में अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। कार्यक्रम हेलो हजारीबाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हजारीबाग के पते पर। और सुनते रहिए आकाशवाणी हजारीबाग, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और आज का दिन बहुत बहुत मंगलमय हो। और पॉजिटिव सोच के साथ आज के दिन की पॉजिटिव शुरुआत कीजिए। कार्यक्रम सुनने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब दीजिए अशोक को अनुमति, छोड़े जा रहे हैं खूबसूरत गीत के साथ।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 11 बजने को हैं, अब विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम होंगे हमारे मुंबई केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। सृजन भारती के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस महीने की सृजन भारती गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित है। सृजन भारती के इस आयोजन में हमने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाने माने फिल्म समीक्षक अजय ब्रह्मात्मज जी और गायिका दीपाली सहाय को। इन दोनों अतिथियों का विविध भारती परिवार की ओर से पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया विविध भारती के कार्यक्रम प्रमुख संतोष जाधव जी ने और इंजीनियरिंग हेड सोपान तायडे जी ने। एडीपी अनुश्री पाठक और एडीपी तेजश्री कांबले और प्रोड्यूसर जुबैर खान ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। संचालन आपकी इस रेडियो सखी ममता ने किया। तो अब माइक उद्घोषक यूनुस खान को सौंप रही हूँ। शैलेंद्र के गीतों और जीवन की अनमोल कहानियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं यूनुस खान। तो आनंद उठाइए इस कार्यक्रम का।
1: इस बार सृजन भारती करने की वजह यह है कि 30 अगस्त को शैलेंद्र के 103 बरस हो रहे हैं और एक ऐसे गीतकार जिन्होंने हिंदी फिल्मी गीतकारी पर बहुत गहरा असर डाला है। 30 अगस्त 1923 को शैलेंद्र का जन्म हुआ था और बहुत छोटी जिंदगी शैलेंद्र को मिली। 30 अगस्त 1923 से 14 दिसंबर 1966 तक। 14 दिसंबर जिस दिन शैलेंद्र इस दुनिया से गए वो राज कपूर का जन्मदिन होता है और राज कपूर अपने जन्मदिन का जश्न मना रहे थे तब यह खबर आई कि शैलेंद्र नहीं रहे हैं। यह राज कपूर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। जरा यह देखिए कि तकरीबन उनकी जो जिंदगी थी वो 43 साल की जिंदगी थी और इन 43 साल में जो गीत यात्रा थी वो 1949 से 1966 तक, यानी तकरीबन 17 साल की। लेकिन इतने सारे गाने शैलेंद्र और इतने बेमिसाल गाने शैलेंद्र हमें दे गए हैं कि ये लगता है कि शैलेंद्र ने बहुत लंबी जिंदगी जी। वो जो आनंद का डायलॉग है ना, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, मुझे लगता है ये शैलेंद्र की जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठता है। 17 साल में इतने गाने और इतने अनमोल गाने, इतने कल्ट गाने, ऐसे गाने जिनमें कहीं अपने समाज की झलक दिखती है, कहीं राजनीति की झलक दिखती है, रोमांस है, दर्शन है, जीवन का फलसफा है, सुख दुख, हास्य, कौन सा ऐसा विषय है जो शैलेंद्र के गानों में नहीं है। मुझे लगता है कि 43 साल कितना छोटा समय होता है एक व्यक्ति के लिए। तकरीबन 40 की उम्र में तो इंसान समझदार बनना शुरू होता है, उसे जिंदगी की समझ आती है और तब तक शैलेंद्र निकल लिए।

ये जो एक घंटे की यात्रा होगी, इस यात्रा में आप ये पाएंगे कि कितना बड़ा गीतकार था ये बंदा। 30 अगस्त 1923 को शैलेंद्र पैदा हुए और तकरीबन 40 के दशक की बात है, राज कपूर ने शैलेंद्र को एक कवि सम्मेलन में सुना था और इस कवि सम्मेलन में शैलेंद्र अपनी कविता सुना रहे थे, जलता है पंजाब। और रेलवे में वो मैकेनिक थे और झांसी में उनकी नौकरी लगी थी और मुंबई उनका ट्रांसफर हो गया था। तो मुंबई आने के बाद वो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन और उसके अलावा मुंबई कॉयर ऑर्केस्ट्रा, जहां सलील चौधरी हुआ करते थे, तो वो जो पूरी प्रोग्रेसिव दुनिया है उसमें बहुत एक्टिव थे। इप्टा में बहुत ही एक्टिव थे, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, और उनके जनगीत बहुत शानदार तरीके से वहां गाए जाते थे। आपको याद होगा कि सलील चौधरी ने उनका एक जनगीत कंपोज किया था उसी जमाने में जो बॉम्बे कॉयर गाया करता था, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और ये ऐसा गीत है जो जोश ला देता है और इप्टा में ये गाना पूरे देश में खूब गाया जाता है। और इसके अलावा हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, ये भी शैलेंद्र की रचना है। अब हुआ यूं कि राज कपूर ने शैलेंद्र से कहा कि आपको आग के गाने लिखने हैं और शैलेंद्र ने पूरी तरह से ठुकरा दिया कि मेरी कलम बिकाऊ नहीं है, फिल्मों में लिखने का उनका कोई इरादा नहीं था। लेकिन फिर जिंदगी ने एक मोड़ लिया, शैलेंद्र की पत्नी प्रेग्नेंट हो गई और झांसी में वो मौजूद थी और उन तक भेजने के लिए पैसे नहीं थे, उनकी देखभाल के पैसे नहीं थे और बहुत जरूरी तौर पर उन्हें पैसे भेजने थे। उन्हें समझ नहीं आया कि ये पैसे कहां से जुटाए जाएं, तो वो राज कपूर के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे 500 रुपए चाहिए। राज कपूर के ऑफिस में उस वक्त 500 रुपए थे नहीं, उन्होंने घर से मंगाए और शैलेंद्र को 500 रुपए दिए, लेकिन उस वक्त कोई सवाल नहीं पूछा। थोड़े दिन बाद कहीं से पैसे आए, शैलेंद्र वो पैसे लौटाने के लिए गए, तब राज कपूर ने कहा कि तुमने मुझे कोई सूदखोर महाजन समझ रखा है कि जब चाहे तुम मुझसे उधार ले लोगे और जब चाहे वापस कर दोगे, तुम्हें मेरे लिए गाने लिखने ही पड़ेंगे। तब राज कपूर के जोर देने पर शैलेंद्र ने बरसात के दो गाने लिखे, एक तो बरसात का टाइटल गीत। और यहां एक बहुत जरूरी बात यह कि शैलेंद्र की पत्नी शकुंतला जी जब मायके में थी और उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, तो उन्होंने अपनी चिट्ठी में एक लाइन लिखी थी और वो लाइन थी, देर ना करना कहीं ये आस छूट जाए। शैलेंद्र ने शकुंतला जी की चिट्ठी में लिखी हुई इस लाइन को एक गाने में बदल दिया। ये गाना सुनते हैं।

बरसात में उन्होंने जो दूसरा गाना लिखा वो था पतली कमर है तिरछी नजर है, वहां वो लिखते हैं मौसम के साथ जो बदलता जाए आदमी वही है जो चलता जाए। एक तरह से वो उस जमाने का आइटम सॉन्ग है, लेकिन वहां पर भी वो जिंदगी का एक फलसफा देते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर ये है कि 1953 में 2 बीघा जमीन बन रही थी, बिमल रॉय प्रोडक्शन एक तरह से अपनी शुरुआत कर रहा था बॉम्बे में। बिमल रॉय अपने सारे साथियों के साथ जब वहां आए थे, उन्होंने बॉम्बे में बाइसाइकिल थीफ देखी, फर्स्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल था वहां पर उन्होंने देखी, तो बस से वो लौट रहे थे अपनी पूरी। ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती हैं, तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा कि मैं लिखूंगा, और इस तरह से सलील चौधरी की कहानी पर 2 बीघा जमीन फिल्म बनी। और उस फिल्म की स्क्रिप्ट ऋषिकेश मुखर्जी ने लिखी थी, और इस फिल्म में शैलेंद्र ने एक बहुत ही बेमिसाल गाना लिखा था जो उम्मीद का गाना है। ये गाना कहता है तेरी राह में कलियों ने

नैन बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए, मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले भाई। ये शैलेंद्र थे,

दो बीघा जमीन का ये गाना कितना कल्ट गाना है ये आप सभी समझ सकते हैं, लेकिन शैलेंद्र की असली यात्रा जो शुरू होती है राज कपूर के साथ, वो आवारा के साथ शुरू होती है। एक दिन ये हुआ कि शैलेंद्र अपने रेलवे वर्कशॉप में काम कर रहे थे, तब राज कपूर की गाड़ी आई और राज कपूर लगभग उन्हें घसीटते हुए ख्वाजा अहमद अब्बास के घर ले गए और ख्वाजा अहमद अब्बास ने तकरीबन 2.5 घंटे का नैरेशन किया। और 2.5 घंटे का एक फिल्म का नैरेशन करने के बाद राज कपूर ने शैलेंद्र से कहा कि कविराज क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया? तो शैलेंद्र ने 2.5 लाइन में ये जो 2.5 घंटे का नैरेशन है उसको पिरो दिया। उन्होंने कहा, आवारा था या गर्दिश में था, आसमान का तारा था। इतने तपाक से उन्होंने ये बोला, आवारा था या गर्दिश में था, आसमान का तारा था। राज कपूर क्यों शैलेंद्र को इतना ज्यादा प्यार करते थे, उसकी वजहें थीं कि इतने कमाल के गाने और ऐसे फलसफा अपने गाने में उतार देना। ये शैलेंद्र भले फिल्मों में लिखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके भीतर जो गीतकार था वो बहुत ही कमाल का गीतकार था। और जब वो सिनेमा में आए तो उन्होंने अपने जलवे दिखाए। ये गाना सुनते हैं।

जो आवारा का गाना है ये चाइना, टर्की, मिडिल ईस्ट, यहाँ तक कि जापान और तमाम देशों में ये गाना बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। और अभी तो साउथ कोरिया से भी इस गाने के वीडियोज आ रहे हैं जहां पर इस गाने को सब लोग गाते हैं। उज्बेकिस्तान के एक बहुत मशहूर गायक हुए हैं बोबोमुरोव हमदानोव। बोबोमुरोव हमदानोव राज कपूर के गाने गाते रहे हैं और उज्बेक सिंगर थे, लेकिन वो जिस अंदाज में गाते हैं, अब सोचिए कि इन लोगों की भाषा नहीं है ये, लेकिन जिस अंदाज में, जिस खुशी के साथ, जिस जोश के साथ गा रहे हैं। बोबोमुरोव के बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जो आवारा का वीडियो ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। आवारा के बाद श्री 420 आती है और श्री 420 एक ऐसी फिल्म है जो शैलेंद्र और राज कपूर की जोड़ी की सबसे ज्यादा नायाब फिल्मों में से एक है। श्री 420 का जो सबसे मशहूर गाना है वो है मेरा जूता है जापानी। 1955 का जमाना था, भारत को आजाद हुए बहुत वक्त नहीं हुआ था और भारत एक तरह से धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था, लेकिन रईस लोगों में चलन ये था कि जूता जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, टोपी रूसी। तो शैलेंद्र ने इस पर एक तंज मारा था कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये उन लोगों के ऊपर व्यंग्य है जो बाहर का सामान इस्तेमाल कर रहे थे और अपने आप को हिंदुस्तानी कह रहे थे। तो अमूमन हम इस गाने को तंज के रूप में नहीं देखते, लेकिन ये बाकायदा एक तंज है। और इस गाने में जो सबसे है वो है होंगे राजे राजकुंवर, हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे। यानी ये वो देश है जहां एक आम आदमी भी सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ सकता है।

इस गाने में एक और बहुत ही शानदार लाइन शैलेंद्र लिखते हैं कि बढ़ते जाएं हम सैलानी, जैसे एक दरिया तूफानी, चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। इतने आम भाषा में शैलेंद्र ऐसा फलसफा दे जाएंगे, ये उनकी कलाबाजी है जो वो हमेशा करते रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र सिर्फ राज कपूर के लिए ही अपना बेस्ट नहीं दे रहे थे, देव आनंद के प्रोडक्शन के लिए उन्होंने कुछ बेमिसाल गाने लिखे हैं। और यहाँ जो गाना अब मैं आपको दिखवाना चाहता हूँ वो इसलिए कि ये गाना देखने का गाना ज्यादा है। इस गाने में शैलेंद्र अनियोक्ति का इस्तेमाल करते हैं कि अपनी तो हर आह एक तूफान है, ऊपर वाला जानकर अनजान है। ये गाना पूरी तरह से ऊपर वाले के लिए लिखा गया है। देखने में ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की बात कही जा रही है, पर सुनने में ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की बात की जा रही है, लेकिन जब आप देखते हैं तो पता चलता है ऊपर वाले की नहीं, ऊपर वाली की बात हो रही है। ये गाना दिखाइए।

जरा सोचिए कि माँ बाप को वो वहीदा रहमान ये बता रही है कि ऊपर वाले की बात कर रहा है, मेरी बात नहीं कर रहा है। तो ये कितना कमाल है। अमूमन हम सुन लेते हैं गाना, लेकिन सिचुएशन पर इस तरह से लिखना और वो भी धुन पर लिखना, ये बहुत नायाब गाना है, बहुत अद्भुत गाना है। अमूमन हमारा ध्यान नहीं होता इस बात पर। अब एक गाने की कहानी। एक बार ये हुआ कि एस डी वर्मन ने शैलेंद्र को एक सिचुएशन दी और कहा कि इस पर तुमको गाना लिखना है। अब काफी टाइम हो गया शैलेंद्र ने गाना लिखा ही नहीं, तो एस डी वर्मन को गुस्सा आया। उन्होंने आर डी वर्मन को भेजा कि जब तक शैलेंद्र गाना ना दे तुम वापस मत लौटना। अब ये हुआ कि शैलेंद्र के पास पंचम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं शंकर जयकिशन के म्यूजिक रूम में जा रहा हूं। तो वो पंचम को लेके शंकर जयकिशन के म्यूजिक रूम में चले गए। अब वहां पर जयकिशन को ये लगा कि यार ये दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर का बेटा इधर क्या जासूसी करने के लिए आया है। तो उन्होंने कहा तुम यहां पर क्यों आया भाई। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे शैलेंद्र, क्योंकि क्या होता है कि काम चल रहा होता है वो सीक्रेट होता है ना, तो

जरूरी बात यह है कि एसडी बर्मन ने एक बांग्ला गाना बनाया था, दूर कौन पारो बाशे तुम्ही चोलो जाइबारे कोबे आईबारे। ये जो गाना है इसको यूट्यूब पर आप ढूंढ के सुन सकते हैं। इसी ट्यून पर मुसाफिर जाएगा कहां बनाया गया था। और अगर आप रिकॉर्ड पर गाना सुनते हैं तो एक अंतरा अमूमन मिलता नहीं है, लेकिन वो वर्जन मौजूद है और ढूंढने पर वो मिल जाएगा, जिसको जावेद साहब कहते हैं कि शैलेंद्र का लिखा सबसे नायाब अंतरा है इस गाने का, वो है

तूने तो सबको राह बताई, तू अपनी मंजिल क्यों भूला? सुलझा के राजा औरों की उलझन, क्यों कच्चे धागों में झूला? क्यों नाचे सपेरा, मुसाफिर जाएगा कहां? क्यों नाचे सपेरा, क्या जुमला है, देखिए आप क्या शानदार जुमला है, क्यों नाचे सपेरा।

गाना और अब गाइड के और भी दूसरे गानों की बात करना चाहते हैं। गाइड फिल्म एक महिला की आजादी और अपनी जिंदगी को चुनने वाली फिल्म है और अमूमन क्या होता है कि फिल्मी गानों में पहले मुखड़ा आता है और उसके बाद फिर अंतरा आता है, लेकिन गाइड का एक गाना है आज फिर जीने की तमन्ना है। इस गाने में पहले अंतरा आता है और बाद में मुखड़ा आता है, ये प्रयोग शैलेंद्र ने किया था और हुआ ये था कि देवानंद शूटिंग के लिए मत करो, मैं ऐसा थीम सॉन्ग बनाऊंगा कि लोग याद रखेंगे। गाना रिकॉर्ड हुआ लेकिन देवानंद इससे खुश नहीं थे, विजय आनंद भी खुश नहीं थे, हालांकि यूनिट के लोग इस गाने को गुनगुनाए जा रहे थे। फिर ये हुआ कि चूंकि हम लोग चित्तौड़ आए हुए हैं तो इस गाने को शूट कर लेते हैं, एडिट पे नहीं अच्छा लगा तो उड़ा देंगे। जरा सोचिए कि इस गाने को लगभग उड़ा दिया गया था, लेकिन जब वो गाना शूट हुआ तो यूनिट सुबह शाम गा रही है आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर जीने की तमन्ना है, और तब देव को लगा कि ये गाना बहुत कमाल का गाना हो सकता है और उन्होंने इस गाने को रखा फिल्म में। और जिंदगी की उलझनों और जिंदगी की ठोकरों में फंसी एक महिला की आजाद उड़ान का गाना है। इस गाने से पहले के डायलॉग आपको याद है, देव कहता है कि मेरी समझ में नहीं आया, कल तक आप लगती थी 40 साल की एक औरत जो जिंदगी की हर खुशी, हर उमंग, हर उम्मीद पीछे कहीं रास्ते में खो आई है, और आज लगती हैं 16 साल की एक बच्ची, भोली, नादान, शरारत से भरपूर। और कट गाना शुरू होता है, वो ट्रक में जा रहे हैं और वो मटका फोड़ती है और वो वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट सॉन्ग ऑफ सिनेमा, कमाल गाना है।

गाइड ऐसी फिल्म है जिसमें दो और भी कमाल के गाने हैं। बैक टू बैक दो गाने इस फिल्म में आते हैं, मुंह से छल किए जा और क्या से क्या हो गया। एक ही ट्यून और दो गाने। एस डी बर्मन ने यह सोचा था कि एक ही ट्यून पर दोनों गाने आएंगे, बैक टू बैक आते हैं। जब वो मुंह से छल किए जा होता है और मुंह से छल किए जा जैसे ही खत्म होता है तो वो सलाखें और जाल और देव उस जाल में।

0: अब ये देखिए कि सुहाना सफर गाना इसी तरह से शुरू होता है, उन्होंने ये हुर हुर जो है उसमें रख लिया था। इसी तरह से आजा रे परदेसी एक और कमाल का गाना है, मैं नदिया फिर भी मैं प्यासी, भेद ये गहरा बात जरा सी। मतलब शैलेंद्र कैसे छोटी छोटी सूक्तियां दे देते हैं। और वैसे आपको बता दें कि ये गाना फिल्म जागते रहो के बैकग्राउंड म्यूजिक में बजी एक ट्यून से आता है। जागते रहो के बैकग्राउंड में ये ट्यून आती है और सलील दा और शैलेंद्र को ये ट्यून बहुत पसंद थी, तो शैलेंद्र के इसरार पर ये गाना मधुमति के लिए बनाया गया था उस ट्यून को लेके। और इस फिल्म का जो सबसे शानदार गाना है वो बिछुआ है। सलील चौधरी ने बचपन में असम में कुलियों को ये गाना गाते हुए सुना था, और जब सलील दा ने ये धुन शैलेंद्र को सुनाई तो अनायास ही शैलेंद्र के मुंह से ये बात निकली, हो बिछुआ। और आप सोचिए कि ये जो गाना है इसमें एक पूरी कहानी है, प्रॉपर एक कहानी आती है। लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि ये गाना फोक से आता है, पर सच ये है कि ये शैलेंद्र का रचा हुआ फोक सॉन्ग है। जिस तरह की पैकेजिंग, जिस तरह की इसमें पूरी एक कहानी चलती है, वो बहुत ही कमाल की बात है।
1: मंतर फेरू

और अब उस फिल्म की बात जो शैलेंद्र ने बनाई थी। दरअसल हुआ ये था कि बिमल रॉय की फिल्म परख की शूटिंग चल रही थी, और यहाँ एक और बात बताएं कि परख के सिर्फ गाने ही नहीं बल्कि डायलॉग भी शैलेंद्र ने लिखे थे, और ये एक इकलौती फिल्म है जिसके डायलॉग शैलेंद्र ने लिखे थे। बिमल रॉय की यूनिट के तमाम लोग खाली वक्त में गप्पे मारते थे, और इसमें नबिंदु घोष, बासु भट्टाचार्य, बी आर इशारा, रघुनाथ झालानी वगैरह होते थे। उसी दौर में मोहन राकेश ने एक किताब छापी थी, 5 लंबी कहानियां, जिसमें एक कहानी थी फणीश्वरनाथ रेणु की, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। और शैलेंद्र ने जब ये कहानी पढ़ी तो उनके मन में ये भूत चढ़ गया कि उन्हें तो ये फिल्म बनानी है। राज कपूर ने उन्हें ये समझाया कि देखो कविराज, ये आपके बस का काम नहीं है, फिल्म आप मुझे बनाने दो, मैं प्रोड्यूस कर देता हूं। पर शैलेंद्र नहीं माने और उन्हें वो फिल्म बनानी ही थी। पर इस फिल्म को बनाने का जो सफर है वो बहुत डिफिकल्ट रहा। जो प्रोडक्शन मैनेजर्स थे उन्होंने बहुत स्कैम

0: गाइड के बाद जब ज्वेल थीफ बनाने की बारी आई थी तो ये तय हो गया था कि चूंकि गाइड में इतने अच्छे गाने लिखे हैं तो शैलेंद्र ही गाने लिखेंगे। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात हो रही थी, शैलेंद्र तीसरी कसम बनाने के बाद डीप डिप्रेशन में चले गए थे, डिप्रेशन की दवाएं चल रही थी। विजय आनंद जब मिलने आते तो शैलेंद्र ये कहलवा देते कि बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूं। तो एक दिन विजय आनंद ने एक ट्रिक सोची, उन्होंने लिंकिंग रोड पर गाड़ी बाहर ही छोड़ दी, पैदल आए, बेल बजाई और लगभग गेट क्रैश करते हुए अंदर घुस गए और कहा कि आप ये बताओ कि आप गाना क्यों नहीं लिख रहे हो। तो शैलेंद्र ने कहा कि देखो अब मेरा हौसला नहीं रहा है और मैं इस फिल्म के गाने नहीं लिख पाऊंगा। एक ही गाना उन्होंने इस फिल्म का लिखा और उसके बाद बाकी गानों के लिए उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी का नाम दिया और मजरूह सुल्तानपुरी ने बाकी गाने लिखे। लेकिन ये जो गाना है रुला के गया सपना मेरा, ये असल में शैलेंद्र ने हीरोइन के लिए भले लिखा हो पर ये उनकी अपनी जिंदगी की निराशा की कहानी है। कैसी ये जिंदगी के सांसों से हम उबे, हाय कि दिल डूबा हम डूबे, एक दुखिया बेचारी इस जीवन से हारी, उस पर ये गम का अंधेरा। इसको अगर आप शैलेंद्र पर फोकस करके देखें तो आपको लगेगा कि उनके दिल में यही चल रहा था और वो बहुत निराश थे और ये गाना उन्होंने फिल्म की हीरोइन के लिए भले लिखा हो पर ये अपने लिए ज्यादा लिखा था उन्होंने।
1: वही है वो मेरे।

हमने आपसे गीतकार और संगीतकार का नाम पूछा था, राजेंद्र कृष्ण और कल्याण जी आनंद जी। श्रोताओं ने जवाब सही दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। फिल्म थी ब्लैकमेल। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बड़ी बहन जब 10 से 11 साल की थी तब हम लोग बासंता गांव में थे और मेरा और संगीतकार जयकिशन जी का जन्म स्थान, तब वहां तितलियां बहुत आती थी, उन्हें पकड़ती भी थी और बाद में कुछ सेकंड्स के बाद छोड़ देती थी। ये अच्छी बात है, पकड़ा तो उसे छोड़ भी दिया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत इन पन्नों से जुड़ी हुई है और बहुत सारे श्रोता इबारत से जुड़ी हुई अपनी बात लिख रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था

गया जिसमें सूखा गुलाब अपनी खुशबू समेटे दबा था। जो गाने चुने हैं वो है रात भर आपकी याद आती रही, मेरी सांसों को जो महका रही, कैसे समझाऊं भाई। ये सारे गाने हम भी सोच रहे हैं लेकिन अब क्या करें, समय तो एक घंटे का है, इसमें कौन कौन से गाने शामिल करें। अब हमदम शब्द से जो गाने हमारे श्रोताओं ने चुने हैं उनमें से एक

है। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र गुलाब तितलियों शानदार इबारत पर आज सुरीला सफर, शानदार प्रस्तुति और शानदार आपकी टिप्पणियां हमें प्रभावित कर रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कंक्रीट के इन जंगलों में ढूंढती हैं वो बाग बगीचे, उड़ती हैं मासूम तितलियां काले धुएं शोर के नीचे, मशीनी इस दौर में भी वो पंखों में रंग सजाती हैं, खो न जाए प्रकृति का सौंदर्य, बस यही याद दिलाती है। सुनिए अब अगला गाना फिल्म गमन से, आपको बूझना है किसकी है आवाज और कौन है गीतकार। आपको गायिका का नाम बताना है और गीतकार का नाम बताना है फिल्म गमन।

पगला कहीं का फिल्म का नाम था और ये हमारा सवाल था, सभी श्रोताओं ने सही बूझा और लता मंगेशकर की आवाज थी। अक्सर आप मोहम्मद रफी की आवाज वाला वर्जन सुनते हैं। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की धुन थी और हमने प्रोग्राम का आखिरी गाना आपसे पूछा था। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आपकी पसंद हमारी पसंद और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज तो हमारा वाला गाना बज गया बहुत सारा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। सुरीला सफर का ये सुरीला सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई। 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार, लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज़्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं ताशकंद में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी से। जी सुशील, ताशकंद पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत की क्या तैयारियां हैं वहां पर और लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप?
1: विशाल, प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी के स्वागत की ताशकंद में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जगह जगह पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां भी चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। विशाल, देर शाम प्रधानमंत्री का भारतीय और उज्बेकिस्तान के लोगों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी होगा। हम जानते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत दोस्ताना हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय फिल्मों, गानों और फिल्मी सितारों के दीवाने हैं, तो उसकी एक झलक भी यहाँ के स्वागत में जरूर नजर आएगी। विशाल,
1: सुशील, इस यात्रा के दौरान किन प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की संभावना है वहां पर?
0: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की यात्रा है, ये उनकी चौथी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें निवेश बढ़ाने, व्यापार को दोगुना करने, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत होगी। विशाल, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी अड़चन है व्यापार को आगे बढ़ाने में, तो इस विषय पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विशाल,
1: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। इसमें विनिर्माण, AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर शामिल हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 011-230-88-719 और 011-230-12-113। व्हाट्सएप नंबर है 9968291988 और ईमेल है situationroom@।
1: चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपए और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी

0: मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार ने व्हाट्सएप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से संबंधित एक फर्जी दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
2: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
3: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा।
2: श्री मेघवाल ने कहा कि खेल लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के साथ साथ तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है। सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहलें देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को उनके समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश और गरज के साथ तूफान जारी रहने की संभावना है। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे जबकि बारिश नहीं होगी। विभाग ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई, 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का

0: होगा, उल्फत में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी
0: दुनिया।

0: अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने। संगीतकार थे मदन मोहन, फिल्म का नाम था सुहागन।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: राजा मेहंदी अली खां का लिखा गीत सुनिए महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। तर्ज है मदन मोहन की, फिल्म का नाम है

आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए अब सुना जाए नीरज का लिखा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। धुन है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नखमे। तो अब अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। नगमा निगार है हसरत जयपुरी, संगीतकार है शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।

0: लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR और दूरदर्शन न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पाकुड़ के खनन प्रभावित ग्रामीणों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। श्री मरांडी ने अमरापाड़ा प्रखंड के विस्थापित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य सरकार विस्थापितों को उनका हक नहीं दिला पा रही है। उन्होंने कहा कि विस्थापित परिवारों के लिए बनाए गए मकान क्षतिग्रस्त
1: लोगों की जमीन की व्यवस्था कौन करेगा?
0: श्री मरांडी ने ऐसे परिवारों को अतिरिक्त जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है।
1: लोगों की जमीन की व्यवस्था कौन करेगा? सरकार करेगी। लोगों के लिए सड़क की व्यवस्था कौन करेगी? सरकार ही करेगी, चाहे कंपनी से करावे या सरकार अपने पैसा से करावे, लेकिन करना तो है सरकार को ही ये सब काम। सरकार अगर अगले 100 वर्षों के लिए नहीं सोच रही है तो फिर झारखंड से, इस क्षेत्र से हमारे जो आदिवासी संथाल भाई बहने हैं फिर रहेंगे ही नहीं यहाँ पर।
0: झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के वित्त मंत्री को लिखे पत्र पर पलटवार किया है। उन्होंने श्री मरांडी पर गंभीर आरोप लगाया है। श्री पांडे ने कहा कि कोयला और लौह अयस्क झारखंड की खनिज संपदा है, इस पर झारखंड के उचित अधिकार और राजस्व की मांग करना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि खनिज झारखंड का है तो उसके लाभ में झारखंड का उचित हिस्सा भी होना चाहिए। संताल परगना में छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो की भर्ती सुधार यात्रा जारी है। छठे दिन आज यह यात्रा पाकुड़ और साहिबगंज जाएगी। इसके बाद कल यह यात्रा गोड्डा और देवघर की ओर आगे बढ़ेगी। इससे पहले कल दुमका में यात्रा के दौरान आदिवासी छात्रों ने मजबूत समर्थन दिखाया। SP कॉलेज के आदिवासी कल्याणी छात्रावास में छात्रों से मुलाकात कर श्री महतो ने भर्ती सुधार यात्रा और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नीट UG 2026 की दूसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने जारी कर दिया है। दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान 3 से 8 सितंबर तक किया जा सकेगा। वहीं चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रक्रिया 3 से 9 सितंबर तक चलेगी। सीट आवंटन का परिणाम 11 सितंबर को घोषित किया जाएगा। लातेहार में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। स्थानीय मुरपा मोड़ के पास पुलिस ने छापेमारी कर करीब 1.5 किलोग्राम अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी पलामू के रहने वाले हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आज जयंती है। मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा मामलों और केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि मेजर ध्यानचंद की 121वीं जयंती पर आज देशभर में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है, एक नया भारत बन रहा है।
2: सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। आज सुबह से मुझे सूचना मिल रही है, लाखों की संख्या में हर गली में मैदान में देश के युवा 1 घंटे के लिए खेलने के लिए आए हैं।
0: राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज राज्यभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर IIT ISM धनबाद में राष्ट्रीय खेल दिवस पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर फिटनेस, अनुशासन, मेहनत, लगन और खेल भावना को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। इस मौके पर 4 अलग अलग वर्गों में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन में संस्थान के बड़ी संख्या में छात्रों, कर्मचारियों और उनके आश्रितों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। मैराथन दौड़ के विजेताओं और बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा और शकुंतला मिश्रा ने सम्मानित किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: का चांद

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के

14वीं का चांद फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल थे, रवि का संगीत था। और इस गाने को सुनने के लिए पत्र लिखा आप सभी श्रोताओं ने। मानेवाड़ा रोड से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता, मनोहर और लक्ष्मण की ओर से फरमाइश आई। इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी डोंगर दिवे, डोंगर दिवे, रमा ताई डोंगर दिवे, राहुल, सीमा ताई, रीमा ताई, इन्होंने पत्र भेजा नागपुर महाराष्ट्र से। और हमें पत्र मिला है सम्राट चौक शिरपुर जैन से, गिरीश देशमुख, अश्विनी और मौसमी की ओर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये।

दूर गगन की छांव में इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। संगीत भी किशोर कुमार का था और इस गाने को सुनने के लिए पत्र लिखा मीना तलरेजा ने और इन्होंने पूरी चिट्ठी भी लिखी और भी बातें लिखी है कि बेटियों के साथ ये प्रोग्राम सुना करती हैं। और भी हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने फरमाइश भेजी, उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं। जिला बीर शहर से रणजीत कुमार नामदेव थोरात, रितेश आकाश, रश्मि रंजना और गबरू और इनके मित्रगण। दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार। और हमारे कुछ श्रोताओं ने और भी पत्र लिखा है। गेवराई शुगर फैक्ट्री महाराष्ट्र से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की ओर से चिट्ठी आई है। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये।

कन्यादान फिल्म का गाना था और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। जो सुनने के लिए पत्र हमें मिले वो ये हैं, अकोला से शिवराज भारती, कुमारी टीना भारती, तनीषा, वेणु संगेकर, रीना, रोहित और इनके मित्रगण। फरमाइश आई अन्य श्रोताओं की भी, पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केशव जत्तोरानी और इनके साथी महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे, मिलिंद सरकटे ने फरमाइश भेजी वरुण जौलका से, और इसी गाने की फरमाइश आई थी अनिल वचकामले, सुषमा वचकामले सभी और इनके अन्य मित्रगण। श्रोताओं आपसे अनुरोध है कि कृपया जब आप फरमाइश भेजते हैं तो साफ साफ नाम लिखें ताकि आपके नाम सही सही पढ़े जा सके। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत।

मुबारक बेगम की आवाज थी, दत्ताराम का संगीत था, फिल्म थी मोरे मन में तुआ। फरमाइशी पत्र आए घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके अन्य साथी, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई डोंगर दिवे, रीमाताई और इनका पूरा परिवार, कृष्ण नगर टीवी टावर्स से। और हमारे ये श्रोता है छाया बंछोर, प्रीति, चंद्रकिरण, पोषण बंछोर और इनका पूरा परिवार, छत्तीसगढ़ पाहरा जिला दुर्ग से। कटारिया कच्छ से पत्र आया है मानतिक राघाणी, डॉक्टर निषाद राघाणी, कबीर, रमजान और इनके अन्य साथियों की ओर से फरमाइश मिली है।

जीने की राह फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और फरमाइश भेजी थी इस गाने के लिए आप सभी श्रोताओं ने। सीवन हरियाणा से सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा और इनके अन्य साथी, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुल्ढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार, गांव चलाला काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, इकबाल महबूब और इनके अन्य साथी। चलिए अब सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गीत ये।

0: बॉबी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शैलेंद्र सिंह की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसे पसंद किया था इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और इनके मित्रगण ने। जवाहरगंज जबलपुर से फरमाइश आई थी जिनेन्द्र जैन, महेंद्र और इनके साथियों की ओर से। और फरमाइश आई थी दिलीप कुमार सेंचुरी, विमला रानी, शिम्पी, सुरेश, अमित और इनके साथियों की ओर से। आदर्श रेडियो श्रोता संघ कन्हैया बाजार पूर्णिया से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: यह है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक आई लव यू पहला भाग। मूल गुजराती लेखक हैं प्रदीप सोलंकी, हिंदी नाट्य रेडियो रूपांतरकार सुनंदा नायक, निर्देशिका तनुजा कानड़े। तो आइए सुनते हैं नाटक आई लव यू पहला भाग।
2: इधर भी नहीं, यहाँ भी नहीं।
3: क्यों जी, ये क्या ढूंढ रहे हो?
2: मेरा सिर।
3: वो क्या तुम्हें सोफे के नीचे मिलेगा?
2: तुम अपनी रसोई देखो, मुझे मेरा काम करने दो।
3: देखो जरा, देखो तो।
2: क्या देखूं? क्या देखूं? तुम में देखने लायक है ही क्या?
3: अरे मैं कह रही हूँ, तुमने कमीज उल्टी पहन रखी है।
2: क्या मेरी कमीज? मैं चाहे जैसा पहनूं।
3: अरे लेकिन किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा?
2: क्या देख लिया तू? हैं?
3: हैं? ये तुम्हारी कमीज और क्या?
2: मुझे छोड़कर लोग मेरी कमीज क्यों देखेंगे?
3: क्योंकि तुमने ये उल्टी पहनी है।
2: अरे पहनी है ये क्या काम है, तुम्हें पता है कई लोग तो यूं ही घर में घूमते रहते हैं। मिल गया। ये देखो ये अखबार। चलो अब घंटे भर तक मुझसे बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है, समझी?
3: ये कोई समय है अखबार पढ़ने का? सुबह से क्या कर रहे थे?
2: हाँ? और तुम जब मुझे 3 दिन की बासी रोटी खिलाती हो तब? चलो चलो अपनी राह लो, रसोई में जाओ।
3: मेरी समझ में नहीं आता, आखिर अखबार में ऐसा क्या पढ़ने लायक होता है?
2: तुम क्या समझोगी, अखबार पढ़ने से अकल बढ़ती है, अकल।
3: हाँ इसीलिए तो कम अकल वाले ही पढ़ा करते हैं।
2: तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कम अकल वाला पति कैसे पसंद कर लिया?
3: अच्छी पैकिंग देखकर माल खरीदने से कई बार लोग धोखा भी खा जाते हैं।
2: देखो मैं कहता हूँ तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो।
3: रावण सामने खड़ा हो तो सीता को लक्ष्मण रेखा पार करनी ही पड़ती है।
2: क्या कहा तुमने? तुमने मुझे रावण कहा?
3: नहीं नहीं, मैं तो अपने को सीता कह रही थी। इन साहब को बैठे बैठे अखबार पढ़ने की सोच रही थी। अखबार पढ़ेंगे, पढ़ो बैठ कर अखबार।
2: बाप रे बाप, कमाल की खबर छपी है। एक महिला ने दो सिर वाले बच्चे को जन्म दिया। अरे भाई रेखा, रेखा भाई सुनती हो?
3: अरे क्या है क्या है?
2: ये देखो पढ़ो, देखो क्या लिखा है इसके अंदर।
3: अरे मुझे फुर्सत नहीं है।
2: फुर्सत नहीं क्यों? रसोई में तुम क्या धो रही थी?
3: आज रामू नहीं आया, जानते हैं रामू नहीं आया। बर्तन कौन साफ करेगा, तुम्हारा चाचा?
2: क्या कहा तुमने?
3: मैंने कहा बर्तन कौन, तुम्हारा चाचा साफ करेगा।
2: चाचा मर गए चाचा। अब ये राजा भाई टावर की तरह खड़े खड़े क्या देख रही हो? ये सब सामान वगैरह उठाओ, ठीक करो। चाचा जी।
3: अरे क्या अचानक तुम्हें क्या हो गया है, क्यों इस तरह से गला फाड़ रहे हो?
2: अरे अरे अरे, आज जगजीवन चाचा और रमा चाची हमारे यहाँ आ रहे हैं ना।
3: क्या
2: अब ये सांसें क्या भर रही हो? कल रात मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे सुबह याद दिला देना?
3: अरे वो रामू नहीं आया ना, तो मैं इसी परेशानी में मैं तो भूल ही गई।
2: खाना नहीं भूली? अरे रामू का तो बहाना है।
3: अब करना क्या है वो बोलो।
2: अरे उनके जैसे करोड़पति चाचा खुद चलकर अपने घर आ रहे हैं और तुमने अभी तक बर्तन भी साफ नहीं किए।
3: चाचा जी तुम्हें मिलने आ रहे हैं या हमारे बर्तनों से? और अगर चाचा जी आ भी रही हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई?
2: तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो?
3: जी गलती हो गई, बस
2: गलती तो मेरी है कि मैंने तुमसे शादी की।
3: तो गलती सुधार लो।
2: गवाही झूठी हो तो सुधारी भी जा सकती है, लेकिन ये तो न जाने किस मुसीबत से पाला पड़ा।
3: बस बस रहने दो आप, और बस बहुत हो गया, अब और समय बर्बाद मत करो, जल्दी से सब साफ सफाई कर लो। हाँ बस।
2: साफ सफाई कौन करे, मैं करूँ?
3: तो क्या हुआ, भगवान ने तुम्हें हाथ नहीं दिए?
2: तो क्या तुम मेरे हाथ में झाड़ू थमा दोगी?
3: तो नहीं क्या लड्डू लगा दूँ?
2: इतनी खूबसूरत उम्मीद तुमसे करना बेकार है।
3: क्या इसी तरह लड़ाई झगड़े में ही वक्त बर्बाद करने का इरादा है तुम्हारा? हा?
2: अरे इतना तो सोचो कि आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। पति?
3: पति नहीं, वनस्पति हो। अभी यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? कभी इधर बैठे तो कभी उधर बैठे, कभी
2: सीधी एक सुन लो, कह देता हूँ मैं साफ सफाई नहीं करने वाला, नहीं करने वाला।
3: तो मत करो, चाचा तुम्हारे आ रही है, मेरे नहीं।
2: हाँ, और जब तुम्हारी चाची आई थी तो मैं नहीं गया था श्रीखंड लेने के लिए?
3: चाची बेचारी तो सीधी अफ्रीका से आ रही थी।
2: ये बताने की जरूरत नहीं, वो तो उसकी शक्ल से ही मालूम पड़ गया था।
3: और तुम श्रीखंड लेने इसलिए गए थे क्योंकि तुम्हारे लिए चाची पैंट का कपड़ा लेकर आई थी।
2: जी, और वो पैंट धोते ही सिकुड़ कर हाफ पैंट हो गई थी। ना ना करते भी तुम्हारी चाची कितना सारा खाना खा गई थी। मेरी चप्पल कहाँ है?
3: कहाँ जा रहे हो?
2: चाचा जी के लिए थोड़ा गुलाब जामुन और रसमलाई लेकर आता हूँ, उन्हें घाट कूपर की मिठाई बहुत पसंद है। चलो ये तुम्हारी चप्पल।
3: अरे अरे मेरी चप्पल उतारो, उतारो मेरी चप्पल, कोई जरूरत नहीं मेरी चप्पल पहनने की। अरे करोड़पति होंगे तो अपने घर के, इन पैसे वालों को कभी किसी की कदर नहीं होती। हाँ जब ये लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हम कितनी भाग दौड़ करके इन्हें लेने जाते हैं, और जब हम इनके घर जाते हैं तो ये लोग मुंह बनाते हैं। हम इनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाते हैं, और ये लोग हमें क्या खिलाते हैं मालूम है? आलू की सब्जी और रोटी, जैसे हम कोई भिखारी हैं।
2: अब, अब, अब, अब रहने दो, रहने दो, मेरे चाचा जी ऐसे नहीं है।
3: तुम्हारे ही नहीं, दुनिया के सारे करोड़पति चाचा एक ही जैसे होते हैं।
2: तुम मुझे चप्पल लाकर देती हो या नहीं?
3: चप्पल टूट गई है।
2: टूट गई? किसने तोड़ी?
3: अरे तुम्हारी चप्पल तुम्हारे अलावा इस घर में और किसके पांव में आएगी?
2: अच्छा भाई, टूटी हुई सही, मगर वो है कहाँ?
3: होगी कहीं पड़ी हुई, ढूंढ लो। तुम्हारी चप्पल कोई राम जी की चरण पादुका तो है नहीं क्योंकि पूजा के लिए ले जाएगा।
2: उफो, अरे भाई चप्पल तो मिल ही नहीं रही है। चलो जाने जाने दो, मेरे बूट कहाँ है? बूट लाओ।
3: वो
2: मैं कहता हूँ मेरे बूट कहाँ है?
3: अरे वो उधर घोड़े के नीचे पड़े हैं, वो देखो। उधर
2: घोड़े के नीचे मेरे बूट किस गधे ने रख दिए?
3: कल रात तुम्ही ने वहाँ उतारे थे।
2: अरे भाई इसके फीते कहाँ गए भाई?
3: ओहो अब मुझे क्या मालूम,
2: कल तो थे ना।
3: चूहा ले गया होगा।
2: चूहा? तो क्या रात को हमारे यहाँ चूहा आया था?
3: क्यों, तुम्हारे चाचा आ सकते हैं तो चूहा क्यों नहीं आ सकता? तुम्हारे चाचा करोड़पति हैं तो तुम क्यों इतना खुश हुए जा रहे हो? तुम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
2: तुमने मुझे दीवाना कहा है?
3: अरे मैंने तो सिर्फ कहावत कही है भाई।
2: लेकिन इशारा तो मेरी ही तरफ था ना, मेरे चाचा जी के आने से तुम्हारे सिर में क्यों दर्द हो रहा है?
3: हाँ चाचा, कल मामा, परसों मौसा, दरवाजे पर बोर्ड लगा दो मनोहर लाल की धर्मशाला।
2: मैं कहता हूँ चुप बैठो, नहीं तो। अरे भाई इस बूट का फीता कहाँ गया?
3: जाओ बाजार से खरीद ला, जाओ।
2: बाजार कैसे जाऊं, बूट में फीता नहीं है, चप्पल टूटी हुई है।
3: नंगे पांव जाओ, पद यात्रा करो, नेता लगोगे।
2: रेखा रेखा तुम समझती क्यों नहीं हो, जरा तो सोचो, तकदीर वालों के घर ही मेहमान आते हैं।
3: अरे तकदीर वाली होती तो तुम जैसे पल लेना पड़ती।
2: ओहो, तुम्हें इस घर में किस बात की तकलीफ है रेखा, बोलो ना। पैसा है, नौकर है, चाकर है, फ्लैट है, फ्रिज है, टीवी है, फोन है,
3: लेकिन रामो नहीं है। इस तरह से मेहमानों की भीड़ लगती रही तो काम के लिए नौकर टिकेगा कैसे, बोलो।
2: नौकरों के न टिकने का कारण मेहमान नहीं बल्कि तुम्हारी ये पक पक है, पक पक।
3: तो क्या मैं बकबक करती रहती हूँ?
2: इसके लिए किसी इंक्वायरी कमेटी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये बात तो सूरज की रोशनी की तरह साफ है।
3: अरे शादी के पहले तो कहते थे।
4: रेखा, तुम बोलती हो तो तुम्हारे मुंह से फूल झड़ते हैं।
2: हाँ हाँ, तब मैं खुद फूल था, एक बेवकूफ था, एक गधा था।
3: अभी भी कहाँ सुधरे हो?
2: शादी से पहले तो मैं तुम्हें मेनका समझता था, मेनका। अब मालूम पड़ा कि तुम ताड़का हो, ताड़का।
3: तुम्हें मिठाई लेने जाना है?
2: तुम अंदर जाकर पहले फीता ढूंढो, नहीं तो कम से कम वो टूटी हुई चप्पल ले आओ। वो भी चलेगी, जब आधे दिमाग वाली पत्नी चल गई तो टूटी हुई चप्पल क्यों नहीं चलेगी। मर गया, मर गया। चाचा जी आ गए। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर दरवाजा खोलो।
4: देखो मेरे कपड़े तो ठीक है ना?
2: घर में इतनी सारी अच्छी अच्छी साड़ियां पड़ी हैं और तुमने ये कहां की फटी पुरानी पहन रखी है। वैसे तो बिना मतलब घर में बनारसी सिल्क पहना करती हो, और जब कोई मेहमान आने वाला है तभी तुम्हें ये चिचड़े पहनने की जरूरत पड़ती है।
4: अरे अरे, दरवाजा खोलो, नहीं तो तुम्हारे चाचा पीछे के रास्ते से आ जाएंगे।
2: मैं जा रहा हूँ।
5: मौसी, मौसी, मौसी कहाँ हो तुम? मौसी,
2: हाँ। अरे भाई, मैं हूँ, मैं हूँ।
5: मौसी जी, आप? थैंक गॉड, मुझे लगा कोई मामला ही पीछे पड़ा है।
2: भाई ये तो बता।

0: ये इस तरह हाथ क्यों रही हो?
1: महाजा जी आपके पास रेलवे का टाइम टेबल है क्या?
0: वो क्यों?
1: कोई अच्छी सी ट्रेन देखकर उसके नीचे मुझे अपनी जान देनी है।
0: कोई फायदा नहीं, आजकल गाड़ियाँ टाइम टेबल के हिसाब से चलती कहाँ हैं?
1: मौसी कहाँ है लेकिन?
0: अरे मगर क्या बात है, मुझे बताओ तो सही।
1: आपसे क्या कहूँ, आप भी तो आखिर एक मर्द ही है ना।
0: अभी तो तुम्हारी शादी तय हुई है और इतने जल्दी तुमने इतना तजुर्बा भी कर लिया।
1: मौसी कहाँ है बताइए ना।
0: वो तो भगवान को प्यारी हो गई।
1: मौसा जी ये आप क्या अनाप शनाप पक रहे हैं, अभी सुबह ही तो मैंने उससे बात की थी।
0: ओ हो, तुम अपनी मौसी की बात कर रही हो, मैं समझा मेरी मौसी।
1: लुक मौसा जी, आई डोंट लाइक सच नॉनसेंस जोक।
0: देन यू शुड नॉट मैरी बिकॉज मैरिज इज ए बिगेस्ट जोक।
1: प्लीज मौसा जी मुझे जरा शांति से बैठने दीजिए।
0: घर में झगड़ा कर आई हो?
1: मैं घर से नहीं आ रही हूँ।
0: तो बाहर किसी से झगड़ा किया होगा?
1: मैं क्या सबके साथ झगड़ा करती रहती हूँ, आपको मैं ऐसी लगती हूँ?
0: देखो भाई, इंसान का चेहरा पढ़ना बहुत ही मुश्किल है बेटा। इंसान जैसा होता है वैसा दिखता नहीं और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं।
1: इनफ, बहुत सुन लिया आपका मैंने।
0: देखो बेटे, ये घर मेरा है।
1: घर मेरी मौसी का है।
0: और तुम्हारी मौसी मेरी है,
1: ऐसा आप समझते हैं?
0: क्या मतलब?
1: आप मर्द लोग पत्नी को अपनी जायदाद समझते हैं, अपने मनोरंजन का साधन समझते हैं, अपने सुख चैन के लिए रखी गई तासी समझते हैं। लेकिन याद रखिए, अब जमाना बदल गया है, टाइम हैज चेंज।
0: ये सारी बातें अपने होने वाले पति वीरेंद्र को सुनाना मुझे नहीं समझ में आया।
1: नाम मत लीजिए उसका मेरे सामने। मैं किसी बंदर से शादी कर लूंगी लेकिन उसके साथ कभी नहीं।
0: क्यों बेचारे बंदर की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो?
1: मौसा जी,
0: तो तुम वीरेंद्र से शादी नहीं करना चाहती?
1: नहीं।
0: लेकिन कल तक तो तुम लोग साथ साथ घूमते थे फिरते थे।
1: कल जो किया वो आज भी करना जरूरी है क्या?
0: अरे मगर शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं।
1: हाँ लेकिन ये बात एक मर्द कहाँ समझते हैं, इन्हें क्या?
0: लेकिन तुमने अपने डैडी से बात की?
1: शादी मुझे करनी है मेरी डैडी को।
0: मैं समझता हूँ तुम्हारे डैडी एक ही गलती दोबारा नहीं करेंगे।
1: आप मुझे पता ये मौसी बढ़ गई है क्या?
0: नहीं, साड़ी बदल रही है, बाथरूम में होगी।
1: तो इतनी देर से मुझे बताया क्यों नहीं?
0: लेकिन तुम्हें मौसी से क्या काम है?
1: मैं मौसी से यही कहने आई हूँ कि मेरे मम्मी डैडी को समझाइए।
0: किसके बारे में?
1: मैं अपनी मंगनी तोड़ना चाहती हूँ।
0: क्यों, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो?
1: प्यार? माय फुट, नो, आई कांट लव एनीबॉडी।
0: लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या?
1: अत्याचार, नारियों पर अत्याचार। तुम मर्द लोग अपने आप को समझते क्या हो? क्या अब भी तुम औरतों को अपनी गुलामी समझते हो? कहने को तो रसोई की रानी और असल में काम वाली ही समझते हो ना। सभी मर्द अहंकारी होते ये मुझे मालूम था, लेकिन इतने मीन होते ये आज ही मालूम पड़ा। परशुराम ने जिस तरह क्षत्रियों का संहार किया था, मेरा बच चले तो मैं सारी पुरुष जाति का संहार कर दूं। हिटलर ने जिस तरह यहूदियों को पैरों तले कुचल डाला था, राम ने जिस तरह राक्षसों का नाश किया था, बस उसी तरह।
0: भाई जल्दी आओ, मेरी जान खतरे में, हेल्प प्लीज, हेल्प रेखा।
2: अरे क्या हुआ? क्या हुआ, इस तरह क्यों दहाड़ रहे हो? तुम्हारे चाचा गुजर गए? क्या हुआ?
0: अरे इस लीना पर माता जी आई है।
2: लेकिन तुम क्यों शोर मचा रहे हो?
0: इस पर पिताजी आए हैं।
2: तुम कब आई लीना?
1: अभी थोड़ी देर पहले।
2: मुझे बुलाने में तुम्हें तकलीफ हो रही थी? बैठो ना लीना, बैठो। देखो ये साड़ी कैसी लग रही है।
1: ओहो मौसी, फॉरगेट साड़ी, आई एम वेरी सीरियस।
2: क्यों, क्या हुआ? अरे हाँ, आज तो तुम वीरेंद्र के साथ बाहर जाने वाली थी ना।
1: वीरेन,
2: क्या हुआ? उसकी तबीयत तो ठीक है ना?
1: उससे क्या हुआ है? अरे वो तो घोड़े जैसा है।
2: लीना ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारा होने वाला पति है।
1: पति? गधा है गधा।
0: मालूम होता है लात खाकर आई है।
2: तुम बीच में ना बोलो जी।
0: चाचा जी आ रहे हैं मालूम है ना। अरे लीना ठीक है, ये मैं तुम्हारी चप्पली पहन कर चला जाता हूँ।
2: अरे ये क्या पागलपन है,
0: थोड़ी छोटी होती है बस।
1: लेकिन मेरी चप्पल से आपको क्या काम?
0: गुलाब जामुन, रस मलाई
1: मुझे नहीं खानी।
2: इनके चाचा जी पधार रहे हैं। अरे पहले उन्हें आने तो दो, तुम क्या लेडीज चप्पल पहनकर

0: जाने वाले थे।
1: तो क्या हो गया भाई, तुम लोग भी तो हमारी पैंट पहनती हो, शर्ट पहनती हो, घड़ी पहनती हो, तो क्या हम तुम्हारी चप्पल भी नहीं पहन सकते? ओहो, अब की बार तो चाचा जी हैं।
0: ओहो, चाचा जी आ रहे हैं तो ऐसे क्या उतावले हुए जा रहे हो? वो कोई तुम्हारे लिए बंगला बांध कर देने के लिए नहीं आ रहे, समझे?
1: लीना, लीना जरा समझाओ इसे। अरे चाचा जी हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ काम की वजह से आए हुए हैं बंबई, और अहमदाबाद में उनकी चार चार मिले हैं, चार चार।
0: दो मिले बंद हो गई हैं और दो में हड़ताल चल रही है।
1: अरे तुम्हारे चाचा के पास तो बंद पड़ी हुई घड़ी भी नहीं है। जानती हो लीना, मेरे चाचा जी 2 साल पहले अहमदाबाद के मेयर थे।
0: तभी से अहमदाबाद में पानी आना बंद हो गया है।
1: चुप करो रेखा, मैं कहता हूँ चुप करो। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे घर आ रही है
0: तो कोई नई बात नहीं है, लोक लाज के लिए भी रिश्तेदारों के घर जाना पड़ता है। बड़े मिल वाले बनते हैं, एक पैजामे का कपड़ा भी कभी मिला है आज तक हमें?
2: अरे अरे कोई दरवाजा तो खोलो। अच्छा तो मैं ही खोल देती हूँ।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, तुम रहने दो लीना। देखो तुम ऐसा करो, अंदर के कमरे में जाकर बैठो, कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल गई है तो। जाओ ना।
0: बिल्कुल नहीं, इधर बैठो। तुम्हारे चाचा बड़े हैं तो क्या मेरी भांजी ऐसी वैसी है?
3: ये हुई ना बात, तुम्हारा खून खून है और हमारा क्या पानी है।
1: ओहो, तुम लोग अपनी बकबक बंद करो, चुपचाप बैठी रहो, मैं खोल देता हूँ। अरे वीरेंद्र तुम?
4: ओह थैंक गॉड, लीना तुम यहाँ हो।
3: तुम क्या समझे मैं ट्रेन के नीचे जाकर खुदकुशी कर लूंगी? आई एम नॉट दैट कावर्ड।
4: प्लीज प्लीज लीना, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, आखिर सोचा तुम यही होगी।
3: तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए? मेरी जासूसी कर रहे हो? शर्म नहीं आती? बेशरम
0: लीना, तुम होश में तो हो, ये क्या बोल रही हो?
3: गेट आउट, आई से गेट आउट।
4: लीना प्लीज बिहेव योरसेल्फ, यहाँ कोई और भी है, इसका तो ख्याल करो।
3: ये लोग कोई पराए नहीं है, मेरे मौसा और मौसी है।
1: चलो ये वीरेंद्र के जूते ही डाले लेता हूँ।
0: ये तो क्या कर रहे हो?
1: ये बूट बूट बूट
4: ये बूट तो मेरे हैं।
1: मुझे मालूम है, यूं ही जरा ट्राई कर रहा था।
0: कुछ ट्राई वाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ बैठ जाओ चुपचाप। देखते नहीं घर में मेहमान आई है।
4: व्हाट आर यू टॉकिंग मौसी, मैं तो घर का ही आदमी हूँ।
3: अब तुम्हारा इस घर से कोई संबंध नहीं, ये लोग मेरे मौसा मौसी है।
4: तो मैं कौन सा ना कह रहा हूँ?
3: ना करोगे तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी।
0: लीना वीरेंद्र बैठो ना, क्या बात है यूं अचानक तुम दोनों?
4: अरे, बात बात कुछ नहीं मौसी, थोड़ी देर पहले हम बाग में घूमने गए थे। डार्लिंग, ये आज अचानक तुम्हारा बाग में घूमने का मन कैसे हुआ?
5: बस यू ही, जस्ट फॉर द चेंज। जिंदगी में मुझे हमेशा कुछ ना कुछ चेंज चाहिए।
4: अच्छा, शादी के बाद तो ऐसा कुछ नहीं चाहोगी ना? ए, चुप क्यों हो?
5: सारा दिन क्या बोलती ही रहो?
4: सारे दिन मत बोलो, मगर अभी तो बोलो।
5: क्या बोलो?
4: कुछ भी, तुम बोलती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
5: ये क्या कर रहे हो? अरे पापा, हम बाग में बैठे।
4: तो क्या हुआ, हमारी शादी होने वाली है।
5: माय डियर, अभी तक लर्निंग लाइसेंस ही है, पक्का लाइसेंस अभी तक मिला नहीं।
6: आए ले लो बाबू, मैं लाया हूँ चने मजेदार, चना जोर गरम। बाबूजी चना लीजिएगा?
4: नो no.
6: एकदम अच्छा है बाबूजी, गरमा गरम है।
4: अरे कह दिया ना नहीं चाहिए।
6: अच्छा अच्छा अच्छा, गुस्सा काय को करते हो? लो मैं
4: इसीलिए मैं यहाँ आने से मना कर रहा था, देखो यहीं बैठ गया।
5: जाने दो, बैठने दो उसे, उसमें अपने बाप का क्या जाता है?
4: अरे बाप का कुछ नहीं जाता, मेरा जाता है, मैं किसी और की हाजिरी में रोमांस नहीं कर सकता।
5: जब भी हम अकेले में मिले तो क्या रोमांस करना जरूरी है?
4: अरे यही दिन है रोमांस करने के लीना, बाद में तो घर गृहस्थी के चक्कर में इस तरह फंस जाएंगे कि बस मत पूछो। ए चने वाले, तुम जरा उस तरफ बैठो ना।
6: हाँ क्यों?
4: क्योंकि ये लो 10 का नोट।
6: कितने का दूं बाबूजी?
4: अरे कितने का भी नहीं, तुम वहां बैठो जाकर।
6: वहां बैठने का 10 रुपया?
4: हाँ हाँ,
6: बहुत अच्छा साहब, ये तो बहुत अच्छा धंधा है, मैं दूसरे को बेचता हूँ।
4: नॉनसेंस। चलो किसी होटल में चलते हैं।
5: प्लीज यही बैठो ना, मुझे यही अच्छा लगता है।
4: ऑल राइट, एज यू विश।
7: माफ कीजिएगा, आपको जरा डिस्टर्ब कर रहा हूँ।

0: पटक गया हूँ।
1: स्याही खत्म हो गई?
0: नहीं, मेरी समझ खत्म हो गई।
2: इंटरेस्टिंग, आप बैठिए ना।
0: मेरे नाटक का हीरो अमर कवि है, कलाकार है, बड़ा भावुक आदमी है। बिजली के तार पर बैठने की आदत हो जाने वाले पक्षी को जिस तरह वृक्ष की डाल पर बैठना पसंद नहीं, उसी तरह अमर को जीवन में सुखी होना पसंद नहीं। वह दुख को मानता है, सुख को सहन करता है।
1: हाँ, जैसे इस तरह हम सहन कर रहे हैं।
0: आपके रंग में भंग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आ गया।
2: आप जरा भी संकोच न करें वीरेन, इफ यू डोंट माइंड।
1: डार्लिंग, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है।
0: मैं आगे बढ़ूं?
2: ओह श्योर।
0: यू सी, अमर के पास सब कुछ है, लेकिन वह ऐसे जीता है जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। वह बड़े शर्मीले किस्म का है। उसकी किसी दूसरे गांव में ट्रांसफर हो गई है। नए वातावरण में वो अटपटा सा महसूस करता है, कुछ बुझा सा जाता है। उसकी सृजन शक्ति कुंठित सी हो जाती है। अचानक नए गांव में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, सुनीता।
1: और वो उसे प्यार करने लगता है, यही ना?
0: नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि अमर और लोगों से बिल्कुल अलग किस्म का है, और उसे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। वो बरसों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे अपना सुख देकर उसका दुख खरीद सके।
2: सुनीता बहुत खूबसूरत थी।
0: देखने में नहीं, लेकिन दिल की बहुत सुंदर थी। अमर सुनीता से मिलता है तो उसे महसूस होता है उसकी बरसों की खोज आज पूरी हो गई, युगों की प्यास आज बुझ गई। वह सुनीता के सानिध्य में रहकर एक अमर काव्य की रचना करना चाहता है।
2: फिर?
0: लेकिन अचानक सुनीता अमर से बोलना छोड़ देती है।
2: पर क्यों?
0: बस इसी का कारण मैं दे नहीं पा रहा हूँ।
2: एक आइडिया, बस आप यू दिखा दीजिए कि अमर सुनीता से कुछ नामुमकिन मांग करता है और सुनीता गुस्से से उसके साथ बोलना बंद कर देती है।
0: नहीं, अमर का करेक्टर ऐसा नहीं है।
1: तो फिर सुनीता अमर से कुछ बड़ी रकम की मांग करती है और अमर के ना देने पर वो रूठ जाती है।
0: दोस्त, इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं।
2: तो सुनीता के अहम को धक्का लगे ऐसा कुछ अमर ने किया होगा।
0: एग्जैक्टली, लेकिन उसने ऐसा क्या किया होगा, यही तो मेरी पहेली है।
1: सॉरी, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता।
0: अरे किसी को भी कुछ सुझाई नहीं देता, मैंने कितनों से पूछा।
1: अरे कुछ भी वजह बता के नाटक पूरा कर डालिए ना।
0: ऐसा नहीं किया जा सकता।
1: क्यों?
0: क्योंकि अमर सुनीता के बगैर जी नहीं सकता।
1: अब ये तो आपके हाथ में है ना, आप नाटक में थोड़ा अदल बदल कर दीजिए।
0: नाटक होता तो जरूर कर देता।
2: मतलब ये नाटक नहीं है?
0: नहीं, अमर आत्महत्या करने की सोच रहा है।
2: आत्महत्या?
0: हाँ, आज ही।
1: आज ही से क्या मतलब? वो तो आप लिखेंगे तभी ना करेगा।
0: लिखूंगा तभी नहीं, करूंगा तभी।
2: यानी कि?
0: यानी कि मैं ही अमर हूं।
1: अरे अरे सुनिए तो, अरे कहां जा रहे हैं आप?
2: अरे कहां गया? माय गॉड, कमाल का आदमी था ना।
1: मुझे तो कोई पागल लगता है, सभी लेखक थोड़े बहुत पागल होते ही हैं। जाने दो, सारा मूड बिगाड़ दिया इसने।
2: लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है कि उन दोनों के बीच दरार पड़ गई?
1: ओफो, स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक छोटी चिंगारी भी आग बन सकती है।
2: रियली?
1: हाँ, अगर दोनों ना समझ हो तो।
2: मान लो हम दोनों के बीच कभी ऐसा हो गया तो?
1: हो ही नहीं सकता, हम दोनों इतने नादान थोड़ी हैं। तुम तो बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी समझदारी पर तो मुझे नाज है, दैट्स व्हाई आई लव यू डार्लिंग। तुम भी कहो ना आई लव यू। अरे कहो ना। अरे कहो ना, तुम भी मुझे चाहती हो।
2: अरे इसमें क्या बोलना,
1: एक बार, बस एक बार कह दो ना आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है।
2: मुझे इस तरह का छिजलापन पसंद नहीं। वी आर नॉट टीनेजर्स, वी आर मैच्योर्ड।
1: ओके ओके, ये तो जस्ट मेरे मन की शांति के लिए।
2: प्लीज, मुझे इस तरह बोलना नहीं पसंद।
1: अरे भले ही ना पसंद हो, लेकिन क्या मेरे खातिर तुम नहीं बोलोगी?
2: अरे लेकिन शादी के पहले सब बोलने में क्या रखा है?
1: अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ?
2: बेकार की जिद मत करो।
1: मतलब तुम नहीं बोलोगी?
2: नहीं।
1: मैंने कहा इसलिए नहीं बोल रही हो या तुम्हें पसंद नहीं इसलिए नहीं बोलना चाहती?
2: मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैं ये नहीं बोलने वाली।
1: ऑल राइट, लेट अस कॉम्प्रोमाइज। मुझसे नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, बात बात में कहती जाओ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अच्छा एक काम करो, इस पेड़ से कहो।
2: वीरेन, लगता है तुम पागल हो गए हो।
1: हाँ, तुम्हारे प्यार में।
2: चलो अब हम चलते हैं।
1: तो क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी?
2: मुझे इस तरह की दादागिरी बिल्कुल नहीं पसंद।
1: अरे मगर इसमें दादागिरी की क्या बात है?
2: सिर्फ दादागिरी ही नहीं, जबरदस्ती है जबरदस्ती। तुम मुझे अपनी गुलाम समझते हो? I hate you, I hate you, I hate you.

0: बीना मेरी बात तो सुनो। अरे
1: उसके बाद रास्ते में तो ये जो मुंह में आया वो कहने लगी। मैं कुछ कहूं इससे पहले ही टैक्सी में बैठकर निकल गई। टैक्सी में बैठकर मुझसे पता है क्या कहा? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हमारे संबंध खत्म। उस हरामखोर लेखक ने सारी आग लगाई है।
2: लेखक को नहीं, अपने आप को गाली दो।
1: तुम ही कहो ना मौसी, आई लव यू कहने में इसका क्या जाता है?
2: जब देखो तब लव लव लव मत करो, मैं नहीं बोलने वाली।
3: लीना लीना ये झूठी जिद है।
2: आप तो उसी का पक्ष लेंगे क्योंकि आप भी मर्द हैं ना।
1: ओहो, इसमें मर्द औरत के संबंध की बात कहाँ से आ गई? अरे ये तो आपस में रिलेशन की बात है।
2: रिलेशन की नहीं, तुम्हारे बेकार की मांग की।
1: देखो लीना, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती।
2: मगर इतना याद रखो कि एक हाथ से तमाचा जरूर पड़ सकता है।
1: तुम लड़ाई झगड़े की भाषा में बात मत करो, जरा शराफत सीखो।
2: मैं ये किसी भी जन्म में नहीं बोलने वाली। अगर शादी से पहले तुम अपनी मनमानी करवाना चाहते हो तो मुझे भूल जाओ।
1: अरे लीना लीना, हेलो, अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो?
4: दोनों पागल हैं।
3: तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं।
4: तुम्हारे रिश्तेदार अब तक कैसे नहीं आए?
3: फोन करके देखूं चाचा जी जहाँ उतरने वाले हैं। हाँ, वो नंबर है तुम्हारे पास?
4: मेरे पास कहाँ होगा।
3: अब कहाँ जा रही हो भाई?
4: देखो तो सही, ये लोग क्या कर रहे हैं।
3: अरे उनके रूम का दरवाजा बंद करके चली आओ, थोड़ी देर में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
4: क्या तुम भी? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
5: आप सुन रहे थे नाटक आई लव यू का भाग पहला, जिसके मूल लेखक थे प्रवीण सोलंकी। हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था सुनंदा नाइक ने। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस तरह से है: मनोहर अजय कश्मीरी, रेखा कामिनी कौशल, लीना भारती कानड़े, वीरेंद्र भूपेंद्र सिंह, जगमोहन राजदीप, रमा लक्ष्मी शर्मा, और लेखक की भूमिका में थे प्रमोद दुबे। निर्माण सहयोग मेधा पिल्लई का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थी तनुजा कानड़े। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।
6: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
7: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
6: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
7: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
6: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
7: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
6: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये

0: इस गाने के साथ ही अब आज का हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रांची मेलोडीज संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR और दूरदर्शन न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावा आपत्ति की सुनवाई की जा सकती है। इसी कड़ी में आज जामताड़ा जिले के नाला और जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में विशेष शिविर लगाकर मतदाताओं के दावा आपत्तियों की सुनवाई हुई। जिले के उपायुक्त आलोक कुमार ने शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची से छूटे नहीं, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने आज नगड़ी स्थित EVM वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था, CCTV की कार्य

0: शीलता तथा संपूर्ण परिसर की निगरानी व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ईवीएम वेयर हाउस के संचालन और सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों के अनुपालन का निर्देश दिया। रांची जमशेदपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर आज नामकुम थाना क्षेत्र के पुराना रामपुर के पास दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डिवाइडर पर उगी घास की कटाई कर रहे मजदूरों को तेज रफ्तार एक मालवाहक वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक महिला और एक पुरुष मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य मजदूर घायल हो गए। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालीन पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों में रामगढ़ और सरायकेला खरसावां जिले में कई हिस्सों में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवा और वज्रपात होने की संभावना है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आ रही थी तो माने समझा रेडियो बज रहा है।
2: हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ रेडियो ही बजता था हर वक्त। एज अ चाइल्ड आई वॉज एक्सपोज टू रेडियो। रेडियो क्योंकि टीवी हर घर में तब नहीं होता था, और होता भी था तो यू नो, अब जॉइंट फैमिली है, 30 लोगों का परिवार है, तो टीवी दादाजी के कमरे में है जहाँ पे सारे लोग जुटते थे टीवी देखने। और वो महाभारत का टाइम चलता था उस समय, लोग महाभारत देखते थे बैठ के, वो हमको याद है। बट टीवी पे और कुछ एक्सेस नहीं था हमारे पास, पर रेडियो एक ऐसी चीज थी। और आपकी इतनी खूबसूरत आवाज है, उस समय भी इतनी खूबसूरत आवाज से आवाजें आती थी अंदर से कि आप सुन रहे हैं विविध भारती और ये है चित्रपट संगीत।
1: क्या बात है?
2: मेरे लिए मेरा एक्सपोजर म्यूजिक के साथ अगर हुआ है तो उसमें विविध भारती, अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है। टू नो व्हाट इंडियन फिल्म म्यूजिक इज ऑल अबाउट।
1: कितनी सुंदर बात आपने कही दीपाली। वो घटना याद कीजिए जब माँ ने समझा रेडियो बज रहा है पर गा रही थी दीपाली, और वो भी एक प्रार्थना गा रही थी।
2: जी आपको पता है जब हमको तो ऑनेस्टली याद नहीं है, पर मेरी याददाश्त वैसे अच्छी बहुत है, हमको बहुत कुछ याद रहता है। बट वो हमको वो इंसिडेंट याद है जब हम घर आए थे, स्कूल में सिखाया गया था गाना, और घर आए थे और हाथ जोड़ के आंख बंद करके, है मालिक तेरे बंदे हम, तब भी ऐसे ही यू नो, पर एक 3 साल की बच्ची के अंदर से ऐसी आवाज, और आवाज तो मीठी प्यारी सी थी बचपन में ही। तो माँ सो गई थी काम करते करते, उसको लगा कि रेडियो ऑन छूट गया है, तो वो हमको वो मंजर याद है। ये शायद मेरी माँ को भी विश्वास नहीं होगा कि जब वो पलट के हमको देखी थी, क्योंकि उसके पीछे बैठ के हम कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे, और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है, और वो पलट के हमको देखी, उसके बाद का हमको कुछ भी नहीं याद है। क्योंकि अपेरेंटली मेरी माँ ऐसा कहती है कि वो कूद के बिस्तर से उठी और हमको गोद में उठा के बहुत रोने लगी, वो याद नहीं है हमको। बट आई रिमेम्बर मी रिहर्सिंग दैट सॉन्ग, क्योंकि अगले दिन स्कूल में बोला गया था कि अच्छे से याद करके आना, हम लोग सुनेंगे। तो मेरी माँ को पता चला कि अच्छा, ये तो मेरे पेट से जो निकली है इसको म्यूजिक मिला है, वरदान में मिला है। क्योंकि मेरे घर में मेरे पिताजी पुलिस वाले, मेरे दादाजी पुलिस वाले, हमारे यहाँ मेरे जैसी लड़की इज मोर फोकस्ड कि हमको बाइक चलाना आ जाए और गाड़ी ड्राइव करना आ जाए। ये मेरी लाइफ का यू नो, आई एम वेरी, हमको IPS ऑफिसर बनना था, बट हमको एक गिफ्ट ये मिला था जो मेरी माँ को पागल कर चुका था, ये आवाज। तो मेरी माँ को लेकिन नहीं पता था कि म्यूजिक कैसे सिखाएं, क्या करें। स्कूल से बातें आने लगी, डायरी में रिमार्क्स आने लगे कि आप अपने बच्चे को म्यूजिक सिखाइए। वहां से मेरी माँ का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरे पापा मम्मी दोनों को रेडियो सुनना बहुत पसंद था, तो वो तो हमारे साथ चल ही रहा था, बट उनको भी नहीं पता था कि वो रेडियो जब चल रहा था तो उनकी खुद की बच्ची क्या सुन के क्या पकड़ रही थी। सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट वे।
1: रेडियो एक अंतरधारा की तरह चल रहा था जीवन में, चारों तरफ पुलिस वाले लोग थे
2: जी।
1: और बाइक वाइक चलाना भी सीख लिया था?
2: जी बिल्कुल, आई थिंक हम 6th class में थे तभी हम बाइक चलाने लगे थे।
1: 6th class में?
2: 6th class
1: पैर वैर पहुंच रहे थे?
2: नहीं पहुंचते थे, तो एक दिन चुरा के भागे। वो उस समय साइड स्टैंड पे बाइक लगाना पता चल गया था कि ये मतलब मेन स्टैंड पे अगर किसी ने नहीं लगाया है तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि वो बाइक लेके तो दीपाली भागेगी
1: भाग जाएगी
2: चाबी चुरा के,
1: एक्सीडेंट का डर नहीं।
2: हाँ तो डर तो बड़े होने के बाद आता है ना, बचपन में तो कहाँ पता है आपको। अब जब हम बाइक लेके निकल गए और फील्ड में घुमाने लगे गोल गोल, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया।

0: तो अब रोकना ही नहीं आता है।
1: अरे भगवान,
0: रोके कैसे, चलाना तो आता है, रोके कैसे। फिर हंगामा होने लगा, पड़ोसी चिल्लाने लगे, अरे ये छोटी बच्ची किसकी है, क्योंकि वो सरकारी एरिया था, सारे क्वार्टर्स थे और बीच में बड़ा सा मैदान था, वहां पे बाइक घुमा रहे थे। मेरे चाचा आए चिल्लाते हुए, बना किए थे इसको बाइक लेके जाने के लिए, ये इसको आप क्यों नहीं समझाती हैं। बेचारे वो रोकते रोकते बाइक भी उनके ऊपर गिरा, हम भी गिरे। तो ऐसा था मेरा बचपन में, हम सिक्स्थ में, हमको बचपन में सपने आते थे कि हम गाड़ी ड्राइव करने लगे, पता नहीं क्यों था। मेरे
1: गाड़ी मतलब
0: फोर व्हीलर,
1: प्रॉपर वो तो, लाल बत्ती वाली
0: नहीं नहीं नहीं मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फीमेल ड्राइविंग अ कार, जैसे बचपन हाँ, में हम लोग जब फिल्में देखते थे, वो एक आजादी का, वो हमको नहीं पता कि मेरे अंदर इतना ज्यादा क्यों था, इतना ज्यादा उसकी इच्छा इतनी ज्यादा क्यों थी, ये हम नहीं जानते। मे बी आई वॉज, जैसे कुछ लोग जन्म से ही यू नो एक लेवल तक वो शायद पिछला कुछ लेके पहुंचे हुए होते हैं, उनको और आगे बढ़ने की जल्दी बहुत होती है, चाहे वो एक्सपोजर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कोई फीलिंग हो। आप एक छोटा बच्चा जो महसूस कर सकता है जब जब उसको प्रेम होगा 12, 13, 14 की उम्र में, हमको ऐसा लगता है हमको ये सच चीजें थोड़ी जल्दी एहसास होने लगी थी, कुछ एक्सपीरियंसेस हमको जल्दी महसूस होने लगे थे, तो हम थोड़े जल्दी में रहते थे बचपन में, हर चीज पा लेने के, समझ लेने के, सीख लेने के, जीत जाने के।
1: क्या बात है। इस घटना के बाद फिर बाइक से नाता बना रहा या?
0: बना रहा, और बहुत फिर देवी की कृपा से हम लंबे भी हो गए धीरे धीरे,
1: तो पैर पहुंचने,
0: क्योंकि फिर तब साइकिल्स मिल गया, स्कूल जाने के लिए परमिशन मिल गया कि अब तुम साइकिल से स्कूल जा सकती हो, तुम सिक्स स्टैंडर्ड में आ गई हो। उनको ये भी लगा होगा कि इसको साइकिल में फंसाओ, नहीं तो ये आए दिन किसी दिन बाइक लेके उलट जाएगी कहीं पर। तो भाई सिक्स से लेके एट्थ नाइन्थ तक, मतलब ट्वेल्थ तक हम साइकिल से ही स्कूल कॉलेज गए, लेकिन तब तक लंबाई भी हो चुकी थी। और 16 की उम्र में पापा प्रॉमिस किए थे कि तुम 10th का एग्जाम दे दोगे तब गाड़ी चलाना, क्योंकि हम 8th से ही चलाना शुरू कर दिए थे, गाड़ी सिखा दो। बट 10th के एग्जाम के बाद फिर गाड़ी चलाना सीख लिए। उसके बाद क्योंकि मेरे पिताजी सिर्फ पुलिस वाले नहीं है, काफी ईमानदार टाइप के पुलिस वाले हैं, तो हम उनको बोलते भी थे कि किसको पता चलेगा मेरा लाइसेंस बनाए कि नहीं बनाए, आ गया तो चलाने दो। लेकिन बिकॉज, और वो डरते भी थे कि अगर वो पकड़े गए तो ज्यादा उनके ऊपर बदनामी आएगी कि ये पुलिस वाला होके अपनी बच्ची को गलत सिखा रहा है, तो इसलिए हमको 18 तक का वेट करना पड़ा गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन तब तक मुंबई आ चुके थे हम रियलिटी शो की वजह से, और फिर पापा ने यहीं पे गाड़ी खरीद दी।
1: क्या बात है। मुझे ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई का क्या चल रहा था, और पढ़ाई लिखाई में किस तरह का मामला था?
0: हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, जेन्युइनली बहुत अच्छे थे। मेरा अप्रोच बहुत बचपन में ही, क्योंकि बिहार में पैदा होने का एक फायदा ये होता है दैट आपकी पढ़ाई पे आपका ध्यान रहेगा ही,
1: एजुकेशन पे फोकस
0: है, और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मतलब हम इसको बहुत सिर्फ पॉजिटिवली नहीं देखते हैं। आई थिंक दैट यू नो ये जो आयाम है बहुत सारे, इसका एक्सेस नहीं था हमारे पास, इसलिए एजुकेशन पे फोकस था। अगर किसी एक छोटे बच्चे को ये पता चल जाए कि इफ शी इज गुड एट म्यूजिक या स्पोर्ट्स, और उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मिल रहा है जो उसकी तैयारी के लिए चाहिए, या उसके माँ बाप को पता चल जाए कि ये यहाँ पे है, स्कोप है, तो पढ़ाई का इतना जोर नहीं होगा बिहार में। बिहार में प्रॉब्लम ये था कि कुछ उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं जिस पे हम लोग रिलाय कर सके कि हाँ चलो इसमें बढ़ जाओ तुम, तो पढ़ाई ही इकलौता था। अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो हम पढ़ने में अच्छे थे, और हमको बचपन से ये, मेरे दादाजी, मेरा रॉब बहुत था, बहुत लीडर टाइप के थे हम, तो मेरे दादाजी को लगता था कि ये ज़रूर आईपीएस ऑफिसर बनेगी। तो ये बोलते बोलते बच्चा कैसे सुनते सुनते उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ हाँ हमको तो आईएएस मिलेगा तो भी आईपीएस लेंगे। ये लोगों के बोलने से दिमाग में बैठ गया था कि हमको तो वर्दी ही पहनना है, एंड आई मेंट फॉर दैट। और हमको ऐसा लगता भी है कि अगर ये मेरा लाइफ टर्न नहीं लेता तो हम शायद बहुत खूंखार आईपीएस ऑफिसर होते अगर तो
1: क्या बात है। अच्छा, संगीत की तालीम का क्या चल रहा था?
0: तो म्यूजिक के जो पटना में टीचिंग का जो पद्धति है, म्यूजिक हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल, वो इतना गहरा नहीं है जितना जैसे सदर्न इंडिया में जो बात है ना, जो वो उनके घर घर में, वो कल्चर में, या इवन फॉर दैट मैटर बंगाल में, जबकि हम निकले बंगाल से ही है, बट समहाउ बिहार के अंदर टीचिंग, म्यूजिक टीचिंग का इतना जोर नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली कल्चरली भी कितने लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे एज अ टीचर, जब पता है कि स्टूडेंट्स बहुत नहीं मिलने वाले आपको, योग्य स्टूडेंट्स जो उसमें फ्यूचर देख सके। तो मेरे टीचर्स काफी बदलते रहे थ्रू आउट, बचपन से लेकर के मुंबई आने तक। एक टीचर मिले जो कुछ समय के लिए लास्ट तक टिके, बट आई वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ टीचर्स, म्यूजिक टीचर्स, क्योंकि कभी, क्योंकि ज्ञान नहीं होने की वजह से क्या होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है. जब आपको ज्ञान नहीं होता है तो ऐसा लगता है ये तो कुछ सिखा ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है. लेकिन आपकी खुद की कमी है, माँ बाप को नहीं पता है म्यूजिक क्या होता है, तो किसी तरह से आई थिंक. और तब ना पटना में बहुत मेरे स्कूल से रिप्रेजेंटेशन होता था मेरा, हम जहां भी जाते थे हर जगह भेजा जाता था, सब जगह से प्राइज लेके आते थे. पटना वुमेन्स कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई, मेरा इंटरमीडिएट जो है 11 12th वो पटना वुमेन्स कॉलेज से हुआ.
1: बहुत ही रेपुटेड,
0: बहुत बहुत बड़ा रेपुटेशन है उस कॉलेज का, बहुत इज्जत है, मान है. मतलब हमको बताया कि मेरी माँ के जमाने में जिस लड़की का बायोडेटा में आ जाता था कि वो पटना वुमेन्स कॉलेज की, उसकी शादी तय हो जाती थी बिना देखे.
1: मतलब इतनी
0: काबिलियत, इतनी काबिलियत थी उस कॉलेज के नाम पे. और वहां से आई वाज सेंट टू, यहाँ मुंबई में मूड इंडिगो फेस्ट होता है IIT का, तो जब हम वहां गए और वहां पे जब नाम कमा के आए तो यू नो,
1: मूड इंडिगो में नाम कमाना आसान बात नहीं है.
0: नहीं है, नहीं.
1: क्योंकि मूड इंडिगो एक बहुत बड़ा फेस्ट होता है, बॉम्बे IIT का एक बड़ा आयोजन जिसमें बहुत कॉरपोरेट कंपनियां शामिल होती हैं और बड़े बड़े कलाकारों की जब शामें होती हैं,
0: राइट,
1: तो नशा होता है संगीत का वहां.
0: करेक्ट. तो उसी समय मेरे लाइफ में एक्टिंग भी एक्सप्लोर हो गया था. सो हमने एक वन एक्ट प्ले किया, उसमें आई वाज प्लेइंग द लीड एक्टर. और वन एक्ट प्ले आपको पता होगा कि वो बहुत, मतलब एक ही सुर में चलने वाला, टायरसम और टायरलेसली चलने वाला प्ले होता है. और उसको अनुपम खेर जी जज कर रहे थे, तो वी गॉट द फर्स्ट प्राइज इन दैट कैटेगरी. सोलो सिंगिंग में आई रीच्ड द फाइनल्स. और तब जो आज मेरे दोस्त हैं, तब वो वहाँ के जजेस थे, राहुल वैद्य और प्राजक्ता शुक्रे, वो लोग जजेस थे उस शो के. आज मेरी उनसे पहचान है क्योंकि हम खुद उस शो से निकले. तो इट वॉज आई थिंक मुंबई आना कॉलेज की तरफ से, जितना भी हम सीख रहे थे अपने घर पे म्यूजिक, यहाँ आके थोड़ा सा एक होता है ना स्टैंप लग गया कि हाँ ठीक है तुम सही जा रही हो, ये समझ आया.
1: आने से पहले मन में पूरा विश्वास था या थोड़ा सा भय था?
0: नहीं, मूड इंडिगो के लिए तो पूर्ण विश्वास था कि जीत के आएंगे, पता नहीं क्यों था. और पता नहीं हमको बचपन से, हमेशा से, हम कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे, या अच्छा. तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे. हारेंगे शब्द कभी आता भी नहीं था, या तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे. तो जब खबर आई कि आपका ये रियलिटी शो का ऑडिशन होने वाला है, तो पता नहीं क्यों हमको लगता था कि हम फाइनल्स तक पहुंचेंगे.
1: क्या प्यारी बात है, बहुत बढ़िया. यहाँ एक गाने की जगह बनती है, क्योंकि इस बातचीत में हमको नियमित रूप से बीच बीच में गानों के अंतराल लेने हैं, तो यहाँ कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: आप बताइए, आपको पुराने गाने तो आपको पसंद हैं ये?
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो दीपाली की पसंद के गाने बजाए जाएंगे.
0: ओके, तो चलिए हम वो सुना देते हैं जो, जिसको गाने की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था उस ऑडिशन में.
1: बिल्कुल बिल्कुल.

0: दीपाली, बातें ये हो रही थी कि एक तरफ संगीत चल रहा है, दूसरी तरफ बाइक भी चल रही है और पढ़ाई भी चल रही है, ये सारी चीजें चल रही थी। और इसमें कभी ये हुआ कि रेडियो के लिए गाने की कोशिश की गई?
1: नहीं, ये एक कमाल की बात है कि रेडियो के लिए गाना, जैसे हम सुनते थे कि दादी नानी के ज़माने में बहुत बड़ी बात होती थी कि ये आर्टिस्ट रेडियो, इन्होंने रेडियो के लिए गाया है। बट मेरा ज़माना आते आते ये जो नया कल्चर आया था, एक एक किताब आती थी कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, जो आई
0: थिंक
1: CSR हर बच्चे ने पढ़ी होगी, UPSC की तैयारी वाला हर बच्चा उसको पढ़ता। पर मेरा जमाना जब आया, जब हम 7th-8th में आए, तो एक उसके साथ एक सप्लीमेंट किताब आती थी जिसमें वोकेशनल कोर्सेज, नया शब्द हम सुने थे, उसके अंदर एक कॉलम था, एक पेज था जिसपे लिखा था RJ। वो बहुत आकर्षित करता था हमको, रेडियो जॉकी, क्योंकि जैसा हम बताए आपको ना, बचपन से रेडियो सुने हैं, तो मेरा जीवन का पहला 10 साल जो है वो रेडियो सुनने के लिए, एक बच्चे को रेडियो में फंसाने के लिए वो RJ ही है जो उसको फंसा सकता है। क्योंकि संगीत तो वो यहाँ नहीं सुन रहा है तो वहां सुन रहा है, वहां नहीं सुन, कहीं से तो आ ही रहा है, बट उसका ध्यान खींचने के लिए कि अब आप सुनेंगे त्रिवेणी, ये बात एक बच्चे को फंसाने के लिए वो आवाज बड़ी आकर्षित करती थी। और आपकी, आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आप जब बोल रहे हैं तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि आप रुकें, खूबसूरत आवाज है आपकी,
0: शुक्रिया।
1: तो हमको हमेशा ऐसा लगता था कि RJ हम बन सकते हैं। और जब हम इंडियन आइडल में गए और हमसे पूछा गया कि आप जीवन में आप क्या बनना चाहती है, एंड आई सेड RJ, सो दे मेड मी एन RJ फॉर एन एपिसोड, और आई वाज टॉकिंग टू पीपल लाइक अ रेडियो जॉकी। रेडियो पे उसमें RJ के क्वालिफिकेशंस में लिखा था दैट इफ यू हैव अ म्यूजिकल सेंसिबिलिटी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो हम हमेशा सोचते थे कि गाना तो आता ही है, म्यूजिक समझ आता ही है, और RJ भी बन जाएंगे, जीवन सेट है मेरा उसके बाद।
0: क्या बात है, बहुत ही सही है, बहुत ही सही है। पटना में कितना नाम कमा लिया था स्कूल कॉलेज के जमाने में?
1: पटना में आई वॉज रिलेटिवली फेमस, मतलब ये था कि एक स्टेज ऐसा आया था कि किसी भी कंपटीशन में जहाँ पे हम एंट्री ले चुके हैं वहाँ पे बात हो जाती थी कि गया ये जीत जाएगी। और एंड इट हैपेंड काफी लेटर स्टेज में ये होने लगा, मतलब ऐसा 3-4 साल ही ऐसा रहा होगा, ऐसा नाम बना होगा, क्योंकि तब तक फिर आई वाज टू यंग और यहाँ ऑडिशन हो गया तो हम आई शिफ्टेड टू मुंबई।
0: ये इंडियन आइडल वाला मामला किस तरह से आया था?
1: ये इंडियन आइडल पहला सीजन जो आया था जिसमें अभिजीत सावंत जीते थे, वो तो आई थिंक हर बच्चा उस सीजन को जानता है, तो वो देखने के बाद हमको लगा कि ये तो हम भी कर सकते हैं, कि क्या है, स्टेज पे जाना है, गाना गा देना है, तो ये तो हम भी कर सकते हैं क्योंकि हम तो यहाँ प्राइज भी जीतते हैं। बट उस

0: साल मेरे 10th के बोर्ड्स थे, तो पापा मम्मी ने बोला बेटा 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट, मत करो. ठीक है चलो, माफ किया, छोड़ दिया हमने. इंडियन आइडल 2 आया तो फिर बोले बेटा 11th का एग्जाम है, मत करो. तो हम बोले तुम लोग तो ऐसे हमको पूरा जीवन बेवकूफ बनाते रहोगे. इंडियन आइडल 3 में 12th के एग्जाम्स थे. हम बोले या तो तुम हमको लेके जा रहे हो ऑडिशन पे, या हम घर छोड़ के भाग रहे हैं. मेरे माँ बाप को 12th के एग्जाम के दौरान,
1: वेरी गुड.
0: सो हमको याद है हम ऑडिशन देने के, ट्रेन पकड़ने के पहले हम अपने कॉलेज से एग्जाम दे के निकले थे, 12th का एग्जाम मार्च, और ट्रेन से उतर के स्टेशन से वापस हम भाग के गए थे. मेरे कॉलेज का बहुत सपोर्ट रहा कि यू नो मेरा कुछ भी गड़बड़ नहीं हो. भाग्य से उस डेट को एग्जाम भी नहीं था, जस्ट क्योंकि गैप होते हैं ना,
1: बीच में गैप्स होते हैं.
0: उसी गैप में ऑडिशन का डेट भी पड़ा था. आई वॉज लकी, वेरी वेरी लकी. और मेरे माँ बाप को भी समझ आ गया था कि इसके अंदर अभी अग्नि प्रज्वलित हो गई है, इसको रोकना सही होगा नहीं.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: और मेरा ऑडिशन उधर हुआ, इधर 12th के एग्जाम्स आए, हम यहाँ भी टॉप कर गए और वहाँ भी यू नो जब आइडल में थे तब रिजल्ट्स आए थे. और वहाँ पे आई वाज हर दिन आई वाज क्रॉसिंग एंड फाइनल्स तक पहुँचने का वो टाइम चल रहा था मेरा.
1: कितना मुश्किल था इंडियन आइडल का ये पूरा सफर, जहाँ आप ऑडिशन देने घुसी पहले दिन, वहाँ के एक्सपीरियंस से लेके फिर थोड़ा आगे बढ़ने तक का मामला बताइए.
0: मेरे लिए ऑनेस्टली इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट एज फार एज माई सिंगिंग वॉज कंसर्न्ड, क्योंकि हमको बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम अच्छा गाते हैं और हम बहुत मेहनत भी करते थे, बहुत मेहनत करते थे, तो हमको उसमें डाउट नहीं था. बट द ओनली प्रॉब्लम आई फेस्ड वॉज दैट पीपल, लोगों के दिमाग में बिहारी का एक बहुत ही अजीब सा इमेज बना हुआ था. तो जब हम आए यहाँ पर मुंबई, जब 150 लोग 200 लोग पूरे हिंदुस्तान से एक छत के नीचे जमा हुए, जब हम लोगों को सुने तो पता चला कि हम कुएं के मेढक थे. कितने खूबसूरत सिंगर्स हैं इस धरती पे जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे मेरा सामना नहीं होता है. और उसके अलावा लोगों का एक्सपोजर इतना बड़ा था. हम कभी यू नो टीवी पे हमने पिज्जा और बर्गर के फोटोज और वीडियोज देखे थे, बिहार में नहीं था मैकडॉनल्ड्स का बर्गर या किसी भी पिज्जा, हमने नहीं देखा था. तो मेरा एक्सपोजर उस लेवल का नहीं था, बट यहाँ पे लोग काफी आगे बढ़े हुए थे, उनको बहुत कुछ पता था. तो मेरे लिए एज अ पर्सन वो ज्यादा बड़ा स्ट्रगल था. ऑल्दो अंग्रेजी में बात करना हो या कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखनी हो उसमें प्रॉब्लम नहीं था, पर लोगों के दिमाग में यह था कि ये बिहारी होके इतना कैसे बोल लेती है, इतनी अच्छा. अंग्रेजी इसको कैसे आती है. और रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा बहुत सादा, क्योंकि मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो जो दिखते थे और जो थे उसमें सामंजस्य नहीं मिल बैठ पा रहा था लोगों के लिए. वो स्ट्रगल मेरे लिए ज्यादा था, टू लोगों को ये बताना कि हम बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हम लोग भी होते हैं. हमारा अक्सर ये डायलॉग फेमस हो गया था, बिहारी है तो सिंह नहीं होगा मेरा. तुम बिहारी हो, लगती नहीं हो.
1: अच्छा,
0: ये हम अपने पूरे जीवन सुनते आए, अब नहीं सुनते हैं.
1: इतना बड़ा पूर्वाग्रह चला
0: इतना
1: रहा.
0: बड़ा. और वो यू नो तब समझ नहीं आता है कि वो कितना डीपली आपको अफेक्ट कर रहा है. जब हम उस समय में थे तो हमको समझ नहीं आता था कि हम क्यों बेचैन रहते हैं. पर वही बेचैनी थी जो बाद में समझ आया कि मेरा काम है गाना गाना और तुम्हारा काम है हमको उसके बेसिस पे जज करना. कहाँ से आते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या पहनते हैं, मायने नहीं रखता है. बट वो एक स्ट्रगल हमको, जिसको स्ट्रगल शब्द तो अच्छा नहीं लगता, पर वो एक चैलेंज था जो आई हैड टू गो थ्रू.
1: और वो पूरा आपने एक एक करके पार किया. और दरअसल जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाती हैं, मामला थोड़ा मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि वहां सिर्फ गाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है.
0: करेक्ट.
1: बाकी तमाम चीजें भी धीरे धीरे मायने रखने लगती हैं. तो कितना डिफिकल्ट रहा?
0: बहुत डिफिकल्ट था. आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ माई प्रेजेंस. हमको एक ही चीज पे भरोसा था कि मेरे पास अच्छी आवाज है और हम गा सकते हैं. हमको कुछ भी दे दो हम गा देंगे, तैयार करके गा देंगे. बट मेरे पर्सनालिटी की जहां तक बात है, वो मेरे ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम इन लोगों को यू नो जैसे एक होता है आप मन से झुके हुए हैं, लेकिन जब आप तन से झुकने लगते हैं तो मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है.
1: इसकी भरपाई कैसे की और ये कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया?
0: ये आई थिंक ये कॉन्फिडेंस सर तब आता है ना, व्हेन यू डोंट हैव अ फियर टू लूज एनीथिंग. आप जब आपके पास कुछ हारने को बचा ही नहीं है तो आपके अंदर डर भी मर जाता है.
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बड़ी बात है
0: जी. तो इंडियन आइडल करने के बाद अगला यू नो वो तो मेरे लिए मुश्किल था, वो जब हम एलिमिनेट हो गए ना, एक फ्रीडम मिल गया हमको। अच्छा, अब तो आउट हो चुके हैं।
1: नहीं, लेकिन एलिमिनेट होने के पहले बहुत सारे चैलेंजेस क्रॉस किए आपने। हाँ। और अपनी पर्सनालिटी में बदलाव किए, इन लोगों के इक्विवेलेंट आने के लिए अपने आप को थोड़ा खड़ा किया।
0: राइट।
1: वो संघर्ष क्या था? क्योंकि वो उस संघर्ष के बारे में अमूमन कहीं कोई बात नहीं करता है। कि लेकिन ये इस पूरी यात्रा का एक मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि जो आप हैं वो आप हैं, पर जो आपको दिखाना है वो बहुत डिफिकल्ट है।
0: तो देखिए, जैसे अभी इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम करके बोल रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। हमको ये पता है कि शायद आपको थोड़ा या फिर जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा अचंभा हो कि ये हम कितने लोग। तो वो जो टाइम पीरियड था ना, मेरे अंदर क्या हो गया कि हमको हो गया इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स।
1: अरे भगवान,
0: कि हम तो इनके जैसे ना, मेरे पास कपड़े हैं, ना कॉन्फिडेंस है, ना अंग्रेजी इतनी अच्छी है, और हम तो हम करके बात करते हैं, तो चलो इसको छुपाते हैं। और इसको छुपाने के लिए हमने बात करनी शुरू कर दी, मैं दीपाली सहाय, मैं दीपाली। बट आपको क्या है, जब जीवन के बेसिक्स सॉर्टेड होते हैं ना, तो बड़े काम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे में ही उलझे रह जाएंगे तो अपना बड़ा सपना देखने का भी टाइम नहीं है आपके पास। तो ये जो संघर्ष है ना, ये पूरे टाइम टू प्रूव देम के अरे भाई, हम बिहार से हैं तो हम अंग्रेजी में भी बात कर सकते हैं। आई कम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, आई हैव यू नो, आई हैव दैट, आई ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश एंड डू माई मॉर्निंग प्रेयर। वो हम उसमें उस जद्दोजहद में फंस गए थे और अंदर से ये मान चुके थे कि एक लड़की तो इंडियन आइडल कभी नहीं बन सकती।
1: ये भी मान चुकी,
0: ये भी माने हुए थे हम कि हम तो लड़की है, मेरा तो काम है बस फाइनल्स तक पहुंच जाना, इसके आगे तो हमको कोई जीतने भी नहीं देगा। इसलिए हम हार गए।
1: अरे बाप,
0: हम इसीलिए हार गए क्योंकि हम जानते थे कि हम हारेंगे या जीतेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, पर हम जानते थे कि हम नहीं जीत सकते। एक लड़की इंडियन आइडल नहीं बन सकती है,
1: ये ख्याल कहां से आया था?
0: ये जो चल रहा था समाज में, इंडियन आइडल बन गया, टू गया, काफी काबिल लड़कियां नहीं आगे बढ़ी। पैरेलली सारेगामा भी एक रियलिटी शो चलता था, उसमें भी कोई लड़की नहीं जीत रही थी, एक लड़की ने जीता था, अदरवाइज लड़के ही जीतते थे। और हम बिहार से हैं, ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है कि उन्होंने सिर्फ दो बेटियां पैदा की और तीसरी बेटी गलती से नहीं हो गई बेटे के चक्कर में। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनमें तीन बच्चे हैं और तीनों बेटी हैं और फिर रुक गए हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं कि दो बेटी है और एक बेटा भी है जो शायद 10 साल बाद आया हो। ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है, ये उनका प्रोग्रेसिव सोच है कि वो दो बेटियों पर रुक गए। मेरे माँ बाप के अंदर जो चीज नहीं थी, पर ऐसा तो नहीं है कि वो उस समाज में नहीं रह रहे थे जहां ये चीज नहीं थी, वो तो थी। तो हम बचपन में अक्सर सुना करते थे कि बेटियों को बेटा बनाने की कोशिश मत करो। मेरे माँ बाप को लोग समझाते थे कि ये नहीं, यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट, इनके दहेज जमा करो, इनको इतना महंगी महंगी पढ़ाई मत करवाओ, देखो कि दहेज में, मेरे पास तो एक बेटी है, हम तो अपना जेवर दे देंगे उसको, तुम्हारे पास तो दो दो है, कहां से लाओगी जेवर।
1: हे भगवान,
0: हम उस माहौल में पल बढ़ रहे थे। वहां पे मेरी माँ झंडा गाड़ के बोलती थी, नहीं बेटा, तुम लोग की पढ़ाई पे खर्चा करेंगे हम, तुम लोग काबिल बनो, दहेज नहीं हो सकता, हम नहीं दे सकते हैं, हमारे पास नहीं है इतने पैसे, तुम काबिल बनो, पढ़ के काबिल बनो। तो हमारे ऊपर ना थ्रू आउट कॉन्स्टेंट माँ का पापा का बहुत पुश था कि तुम लोग अच्छा करो, पर रह तो उसी समाज में रहे थे ना।
1: पता है दीपाली, मुझे जब आप ये सारी बातें बता रही हो तो मेरे दिमाग में एक गाना गूंज रहा है भिखारी ठाकुर का,
0: बताइए, बेटी बेचवा।
1: क्योंकि बिल्कुल ये तमाम बातें जो है उस दिशा में जा रही थी, वो गाना सुनना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: बाबूजी।
1: कितना मार्मिक है। बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो भोजपुरी नहीं समझते
0: जी,
1: उनके लिए थोड़े से में इसका अर्थ भी बता।
0: पहले वो जमाना ऐसा था जिस, ये संभिखारी ठाकुर का लिखा हुआ है।
1: बिल्कुल, और बहुत ही प्रसिद्ध कवि,
0: बहुत प्रसिद्ध
1: जी।
0: वो उस समय वहाँ के समाज की कुरीतियों पर गाना लिखते थे, जिसमें से एक कुरीति ये उस समय चलती थी कि बाप पैसे की कमी की वजह से, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, दहेज का प्रेशर इतना होता था कि दहेज ना देना पड़े क्योंकि नहीं है उसके पास पैसे, तो एक बूढ़ा आदमी से उसकी शादी करा दी जाती,
1: जो गंगा मैया में भी होता है,
0: जो गंगा मैया में भी होता है,
1: उसकी कहानी भी यही है। पीरी चढ़ाई वो फिल्म की हम बात करें,
0: उसमें भी यही कहानी है
1: जी।
0: तो ये दहेज का पैसा बचाने के लिए एक बूढ़ा आदमी तो जवान छोटी बच्ची चाहेगा ही अपने लिए, वो पैसे नहीं लेता था शादी करने के लिए। और ये गाना उस बच्ची के मन का दर्द है कि एक हम तो माँ की नौकरानी की तरह रहते थे, हम सारा छिपली लोटा धो के रखते थे, घर साफ रखते थे, हमसे क्या गलती हो गई बाबूजी, क्यों मेरी शादी करा दी बूढ़े से।
1: कितना मार्मिक है।
0: तो ये हम कभी ये जीवन नहीं जिए, पर हमको उनके लिए बहुत खराब लगता है जिन लड़कियों ने ये जीवन देखा है। और आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो नहीं सोच भी नहीं सकती है कि फ्रीडम क्या होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: आई एम वेरी लकी।
1: बिल्कुल, भिखारी ठाकुर ने जिस जमाने में ये लिखा है तब से हम बहुत आगे आ गए, लेकिन अभी भी
0: है
1: जी। बिल्कुल,
0: और ये बहुत पेनफुल है। जब हम मुंबई में रात को 3 बजे गाड़ी चला के घर लौटते हैं शूट से, तो हम सोचते हैं कि कितने लोगों का, कितनी लड़कियों का ये ख्वाब भी नहीं आता होगा उनको ये
1: जी,
0: कि एक ऐसा जीवन हो सकता है।
1: बहुत बड़ी बात बोली है।
0: उनको ख्वाब भी नहीं, आप ख्वाब भी वही देखते हैं ना जो आप दुनिया में इधर उधर नजर में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हैं। और हम उस समाज से निकल कर आ रहे हैं।
1: ये कितना ज्यादा मार्मिक, कितना ज्यादा मुश्किल था कि ऐसे पूरे दौर से निकल कर आई एक लड़की, इंडियन आइडल के मंच पर खड़ी, अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रही है कि मैं इन सबसे जूझ के आगे निकलूंगी। अपने मन को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए दीपाली क्या करती थी?
0: दीपाली बचपन से कभी भी नेगेटिव हुई ही नहीं है। ये हमको लगता है ये भी एक अच्छा क्वालिटी है जिसके साथ कोई पैदा होता है। तो हम ना बहुत किताबी थे, जैसे किताब में अगर लिखा है कि चीटिंग इज रॉन्ग है ना, या फिर स्टीलिंग इज रॉन्ग, अगर किताब में वो लिखा है और माँ ने पढ़ के बता दिया चीटिंग इज रॉन्ग, आप विश्वास करिए मेरा, हम बचपन में कभी चीटिंग किए ही नहीं है। मेरा पूरा कभी कभी हमको अफसोस होता है कि वो बच्चा जो बच्चा बन के रहना चाहिए, हम इतने सीरियस थे जीवन को लेके, यू नो, अपने लक्ष्य को लेके, कि हमको लगता था कि, और तब अब बड़े होके समझ आता है कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है चीजें, ये जो बीच का ग्रे वाला शेड है ना,
1: वो भी
0: वो है जीवन।
1: हाँ।
0: जीवन वो है,
1: बिल्कुल
0: ब्लैक एंड व्हाइट तो जन्म और मृत्यु है, पर उसके बीच जो ग्रे का शेड है वो ही जीवन है, वो ही प्रेम है, ये बहुत बड़े होके समझ आता है। तो दीपाली जो बचपन में जो बच्ची थी वो कभी नेगेटिव नहीं होती थी, क्योंकि किताब में लिखा था कि नेगेटिव होना गलत बात है। अब दीपाली बहुत खुशी से नेगेटिव होती है, बहुत जोर से दिल टूटता है, बहुत दम लगा के रोती है, 4 दिन सल्क भी करती है, और फिर वहां से बाहर भी आती है। और हमको लगता है वो होना बहुत जरूरी है, वो एहसास होना बहुत जरूरी है। आज अगर किसी को मेरा गाना पसंद आता है तो वो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि वो जो एहसास महसूस कर रहा है वो हम कर चुके हैं। अगर हम वो नहीं करते तो वो उस तक नहीं पहुंचा सकते हम।
1: बिल्कुल, मुझे उस दिन के बारे में बताइए जब आप इंडियन आइडल से एलिमिनेट हुई थी।
0: वो दिन बहुत कठिन था मेरे लिए, जब हम स्टेज पर अनाउंस हुआ कि दीपाली आज एलिमिनेट,
1: लेकिन ताकत पूरी लगाई थी,
0: पूरी
1: परफॉर्म बहुत बेहतरीन किया,
0: और वो मतलब सोचिए हम कितने कमाल के एक्टर हैं, आज भी हम सोचते हैं। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि हम बैठ के चीख चीख के रोएं, बट कैसे, यू नो, किताबी बच्चा थे हम। रोना, सबके सामने रोना कमजोरी की निशानी, पता नहीं कौन सी किताबों में पढ़ के रखा था ये सब हमने, पर ये हमने इस वजह से पब्लिकली हम कभी नहीं खुल पाते थे। आज मेरे लिए एक सुंदर बच्चे को खेलते देख के रोना बहुत आसान है, बट उस समय वो फेज जो था, वो जो दीपाली थी वो बहुत कड़क थी,
1: अपनी कमजोरी दुनिया के सामने
0: कमजोरी दुनिया के सामने नहीं आ सकती है चाहे कुछ भी हो जाए।
1: हाँ।
0: तो ये वो जो दौर था, वो जो दिन था, वो बहुत कठिन था मेरे लिए।
1: अंदर बहुत तूफान चल रहा है,
0: तो तूफान,
1: लेकिन ऊपर सब कुछ स्थिर है।
0: ऊपर ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है, लाइफ विल गो ऑन, पर असल में दिल के अंदर सब कुछ टूट गया था। लगा था अब यहाँ से कहाँ, अब क्या होगा लाइफ में।
1: और जब मिनी ने कहा कि आप बहुत नाम कमाएंगी,
0: हाँ, तो लगा था हाँ ठीक है, मन रखने के लिए तो कोई भी
1: आपको लगा नहीं था कि ये होगा, कि एक दिन दुनिया आपके गाने गुनगुनाएगी, ये कहा था मिनी ने,
0: ये कहा था उन्होंने, दीज वर एक्चुअली एग्जैक्टली यही शब्द थे उनके।
1: हाँ।
0: और तब हमको लगा था ठीक है, अब तो निकल रहे हैं तो क्या ही कोई बोलेगा, कोई थोड़ी बोलेगा कि अच्छा हुआ तुम एलिमिनेट हो गई। तो वो मेरा मन रख रही है, हम भी छोटे थे, 17-18 साल के थे, मिनी माथुर इज वेरी सेंसिटिव एज ए ह्यूमन, तो वो कर रही है जो उनको करना है, पर जो वो कह रही है वो तो पॉसिबल नहीं है। बोले ना, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं आप जो मेरे साथ इस वक्त घटित हो रहा है, मेरे सपने में भी वो नहीं आ सकता था। तो उसके बाद, लेकिन काफी चैलेंजिंग था क्योंकि फिनेंशियली परिवार मिडिल क्लास परिवार।
1: नहीं, मुझे पहले एक बात बताइए
0: जी,
1: वहां से लौटने के बाद,
0: हाँ,
1: मन का बांध टूटा
0: बहुत। स्टेज से उतरते ही जैसे ही 100% श्योर हो गए कि कैमरा कहीं भी नहीं है।
1: अच्छा, पहले ये तस्दीक
0: हो गई। पहले था, हाँ हाँ, क्योंकि वो रियलिटी शोज में हर जगह कैमरा लगे होते हैं, आपको कभी भी कोई भी कहीं भी धर सकता है अपने कैमरे से। तो जैसे ही हम आरके स्टूडियो में शूट कर रहे थे, और बड़ा सा एक आरके रूम है वहां पे, अब तो नहीं है,
1: अब नहीं
0: स्टूडियो
1: है।
0: नहीं है, पर तब बहुत बड़ा एक आरके रूम होता था, कॉटेज। तो हम वहां से निकले, वहां पे कैमराज होते थे, वहां से भागे दूसरे कमरे में गए, वहां पे प्रॉपर्टीज रखी होती है, आपने कभी देखा, एक कमरा है जो पूरी प्रॉपर्टीज है, जो राज कपूर साहब की फिल्मों में वो उनका जोकर वाला ड्रेस या वो नरगिस की बिकिनी, वो सब है उस प्रॉपर्टी रूम में। यहाँ हमको पता था कैमरा नहीं आएगा, घुसे कोने में गए और 15 मिनट तक इतना रोए हम कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या है, धरा ही क्या है, ये स्थिति थी।
1: और कौन था जो संभाल रहा था?
0: नहीं, उस वक्त हम तो कोई भी नहीं था जो आई वुड नॉट लेट एनीवन, कोई मेरे पास भी नहीं आ सकता था अगर हम दुखी हैं तो, या क्योंकि कोई जान ही नहीं सकता है कि हम दुखी हैं, किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा कि
1: मतलब
0: हम दुखी
1: हैं। अकेले कमरे में
0: रो के पूरा दुख निकाल के उस कमरे से बाहर निकले हंसते हुए कि अरे कोई बात नहीं यार, पार्ट ऑफ लाइफ है।
1: गजब।
0: पर अभी जब हम सोचते हैं 17-18 साल और माँ बाप नहीं है, माँ बाप के मतलब मेरे जीवन के बहुत बड़े आधार, और हमेशा हम वो बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाना चाहती थी कभी भी, क्योंकि स्कूल में हम बहुत ब्राइट थे, पढ़ने में अच्छे, चीटिंग नहीं करती है, गंदी बातें नहीं बोलती है, ना बोलती है ना बोल सकते हैं आप उसके आसपास, यू नो, लड़कों से तो दूर क्योंकि हम गर्ल्स स्कूल में थे, लड़कों से दूर, बॉयफ्रेंड वाली लड़कियां गंदी होती हैं, बहुत आइडियलिस्टिक बच्ची दीपाली सहाय। तो मेरे दोस्त नहीं थे बचपन में, तो हम स्कूल जाते थे और हम सारा काम करते थे, सारे एक्टिविटीज, स्कूल का रिप्रेजेंटेशन, बट मेरा कोई दोस्त नहीं था, कभी भी नहीं था। तो मेरे जीवन का आधार मेरे माँ बाप ही थे, वही मेरे दोस्त थे। तो जब भी हम स्कूल जाते थे तो मेरे स्कूल में घुसने के बाद घड़ी देखते थे और सोचते थे 4 बजे का तो जीवन शुरू होगा, क्योंकि तब पापा मम्मी मिलेंगे या माँ मिलेगी घर पे, वो बच्ची जो हर दिन निकालती थी इस भरोसे की बस ये स्कूल अभी जाना

0: पड़ रहा है, शाम को तो माँ मिलेगी। वो बच्ची उस मोमेंट पे जब बिल्कुल अकेले पड़ गई थी, मुंबई में माँ बाप नहीं थे जब हम एलिमिनेट हुए, और यू नो क्योंकि हम बोले ना, हम कभी किसी को दिखाते नहीं थे कि हम दुखी भी हो सकते हैं। सो वो जो दो दिन था टू लिव इन मुंबई एलिमिनेटेड, और अपने को कंटेस्टेंट्स को यू नो हौसला देना कि या बधाई देना कि आप चलो आप आगे बढ़ो, हम तो निकल गए, अब हम तो घर जा रहे हैं। इट वॉज द मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट टू डेज ऑफ माई लाइफ, मोस्ट डिफिकल्ट।
1: और उसके बाद वापस लौटना और अपने माँ बाप को बताना,
0: उनके गोद में महीनों रोना, महीनों, क्योंकि जब आपको एक्सपोजर नहीं है तो आपको ज्ञान भी नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कि रास्ता, ये रास्ता तो हमने चुना नहीं था ना भैया कि हमको, हम जाएंगे प्लेबैक सिंगर बनेंगे। हम तो कॉम्पिटिशन्स में प्राइज और ट्रॉफी लेके आते थे, इंडियन आइडल का ग्लैमर का वो क्वोशेंट हमें खींच के लेके चला गया। करनी तो पढ़ाई थी। अब लेकिन एक 18 साल की बच्ची रातों रात पूरे देश में फेमस हो गई, वो वहां से वापस आ जाए सब कुछ छोड़ के, वहां कोई उसको रख नहीं रहा है क्योंकि उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। यहाँ हर कोई इस उम्मीद में कि अब ये हमारी बच्ची जाएगी और कुछ बड़ा कर रहेगी। अब तो
1: बीच में तो एक भंवर है कि अब क्या करें।
0: अब जो बीच का ये जो समय है, और वो भी एक कम उम्र की बच्ची, एक माँ बाप जो बहुत सादे हैं, बहुत ईमानदार, मतलब एक होता है ना स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, मेरे माँ बाप नहीं है वैसे, तो उनको भी नहीं पता है कि क्या करना है। तो वो जो दो तीन महीने जो बीते हैं निकलने के बाद, हर कोई क्लूलेस है, हर कोई आ रहा है आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है क्योंकि उसकी नजर में आप बहुत बड़े हो गए, पर उसके जाते ही आपको लग रहा है कि करना क्या है, यहाँ से आगे जाना कैसे है, मुंबई जाएंगे कैसे, वहां तो इतना महंगा है, वहां रहेंगे कैसे, करेंगे क्या। गाना जावेद अख्तर तो हमारे शो के जज थे, पर वो तो नहीं बोले कि बेटा हम तुमको गाना गवाएंगे। अब करेंगे क्या, एक साल का ड्रॉप भी हो गया बिकॉज ऑफ इंडियन आइडल, ट्वेल्थ के बाद जो कॉलेज ज्वाइन करना था
1: वो नहीं किया,
0: वो नहीं हो सकता। तो एकदम मतलब नैया, जीवन की नैया जो मझधार में फंसी थी उस वक्त, कि
1: कैसे एक एक दिन बीत रहा होगा।
0: बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, मेरे से ज्यादा कठिन मेरे माँ बाप के लिए होगा आई एम श्योर, क्योंकि उनके लिए तो उनकी यही दोनों बच्चियां थी जो उनका यू नो वो पूरा जीवन हम ही लोगों को बनाने में लगा दिए हैं। अब हम दोनों 18-20 साल के हो चुके हैं।
1: आपकी बहन कितना बड़ा सपोर्ट थी?
0: ओ माय गॉड, हमको नहीं लगता है इफ इट वाज नॉट, क्योंकि ना बचपन से हम आई वाज द स्टार। एक वो बच्ची होती है ना जो आती है तो पार्टी में रौनक आ जाती है,
1: सब मुड़ के देखते
0: हैं, सब मुड़ के देखते हैं, ये गाना गाती है, ये बहुत फेमस है, ये बहुत
1: कलाकार है
0: ये। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सिबलिंग होता है वो भी तो बच्चा है ना, वो भी छोटा है, उसका कोई भाव नहीं है क्योंकि उसके घर में एक स्टार पैदा हो गया,
1: वो पर्दे के पीछे है,
0: वो पर्दे के पीछे है। जो मेरे रोज के रियाज हैं, जो सबसे बोरिंग, जो मेरे जीवन का सबसे गंदा एस्पेक्ट है, जितनी हम लड़ाई करते हैं उसके साथ, जितना चिल्लम चिल्ली हो रहा है, झेल वो सब रही है, लेकिन जब बाहर निकल रहे हम दोनों तो स्टार हम हो जा रहे हैं,
1: और वो ओझल है,
0: वो ओझल है, वो कहीं भी नहीं है। बट ये सपोर्ट होता है, वो ओझल होके भी खुश थी, ये उसका बड़प्पन है, ये इतना ताकत नहीं है मेरे में।
1: हम समझ सकते हैं कितनी संवेदना के साथ, कितने प्यार के साथ आप अपनी इस बहन के योगदान को याद करें, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत प्यारी बात है
0: जी।
1: और दुनिया के सब लोग सुने कि कैसे एक कलाकार के बनने में
0: सबका,
1: उसके भाई बहनों का कितना बड़ा योगदान
0: होता है, सबका सैक्रिफाइस होता है, और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस उसके भाई बहन का होता है, खासकर जब आप एक ही उम्र के हैं,
1: हाँ,
0: दो तीन साल के अंतर पर।
1: इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कलाकार नहीं है, क्योंकि वो तो भाई बहन है।
0: वो सबसे कठिन उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि जब हम बड़े हुए तो हमको रियलाइज हुआ, और हम उसको, हमको लगता है आई थिंक आज से 10 साल पहले एक दिन हम उसको फोन करके और बहुत रोए, हम उसको बोले आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो फेमस, क्योंकि तुम तो थी ही नहीं कहीं भी, तुम तो कभी हमसे कुछ बोली भी नहीं। मतलब अभी अपने छोटे कजन्स को देखते हैं, भाई बहन आपस में लड़ाई करके किताब में लिख देते हैं, ये मर जाए, मेरा छोटा भाई मर जाए, मम्मा उसको ज्यादा प्यार करती है, इस तरह की कहानियां हम बहुत देख रहे हैं अपने आसपास, करते होंगे लोग। पर ये कैसी लड़की थी, ये इस मेरा सौभाग्य था या उसका दुर्भाग्य था कि वो मेरी बहन थी, हम नहीं समझ पाएंगे। उसके अंदर भी तो वही सारी फीलिंग्स चलती होंगी जो मेरे अंदर चलती हैं।
1: जब आप बहुत लोगों का आकर्षण हासिल कर रही हैं, फोकस हासिल कर रही हैं, उस वक्त वो कहाँ होती थी?
0: वहीं होती थी, और स्माइल के साथ वही

0: रहती थी, और हमको इतना दुख हो रहा है इस वक्त ये बोलने में कि हमको याद भी नहीं है कि वो कहाँ रहती थी, पड़ी भी नहीं थी हमको। हम अपनी अपने ताली बटोरने में इतने बिजी थे कि हमको फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो कहाँ है, हमको सिर्फ आगे दिखता था, हमको सिर्फ सीढ़ी दिखता था। मेरी माँ कहती है जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो कौन भारती है जिनकी जिन्होंने अर्जुन के ऊपर कोई किताब लिखी है। मेरी माँ किताबें बहुत पढ़ती है, तो वो पढ़ रही थी अर्जुन का विश्लेषण, अर्जुन के कैरेक्टर के ऊपर किसी ने एक किताब लिखी थी, मेरी माँ पढ़ रही थी। अर्जुन एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत लुभाता है, मतलब अच्छा बुरा तो पर्सपेक्टिव है पर लुभाता बहुत है। मेरी माँ पढ़ती थी अर्जुन को जब हम उसके पेट में थे। तो जब हम आए एग्जिस्टेंस में तो मेरा ना रवैया भी कुछ वैसा ही था, हमको और कुछ नहीं दिखता था,
1: सिर्फ
0: अपना लक्ष्य दिखता था हमको आसपास। अर्जुन में तो इतनी भी संवेदना थी कि वो युद्ध के पहले गांडी उतार दिया था, मेरे में तो वो भी नहीं था।
1: तो वो अर्जुन को पढ़ रही थी, तो बहन की बात चल रही है,
0: तो मेरी बहन उस अर्जुन को देख रही थी, और ये अर्जुन भूल गया था कि इसके आसपास, भूल गई थी कि इसकी बहन को किस चीज से गुजरना पड़ता होगा। हमको नहीं पता है कि वो कैसे उस बात को महसूस करती होगी। और जब हम उसको सॉरी बोले आज से 10 साल पहले, तो वो रोते रोते हंसते हंसते बोली, पर तुम तो पैदा ही स्टार हुई थी ना, तुमको अगर सपोर्ट नहीं करते तो तुम वो तो बनती नहीं जो तुम हो, तुम तो पैदा ही हुई थी चमकने के लिए, तो तुम हमको थैंक यू मत बोलो। ये उसका बड़प्पन है सर, ये सब उसका बड़प्पन है, ये कोई छोटी बात नहीं है।
1: दीपाली, हम इतने जज्बाती मूड पर हैं कि आपने मुझे भी रुला दिया। यहाँ अपनी बहन के नाम पर एक गाना डेडिकेट कीजिए।
0: अगर आप बिना रोए गा दिए तो समझिए कि कमाल ही हो जाएगा आज, कोशिश करते हैं। फूलों का तारों का सबका कहना है,

0: क्या बात है। मुझे लगता है कि जितने लोग सुन रहे होंगे वो सब भी इस मोड़ पर बहुत जज्बाती हो गए होंगे, क्योंकि जीवन जो है ना वो केवल सफलताओं की कहानी नहीं है, जीवन इन जज्बात में छिपा हुआ होता है। जीवन हमारे इन आंसुओं में, हमारे हमारी इन फीलिंग्स में छिपा हुआ होता है। तो जिस तरह से आपने अपनी बहन को सलामी दी है वो बहुत अनमोल है। मुझे लगता है ये हमारी इस बातचीत का एक बहुत ही प्यारा सा मोड़ है।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। दोस्तों, ये दिलचस्प बातचीत जारी रहेगी, अगले हफ्ते भी जरूर सुनिएगा इस बातचीत का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। हमारे शुरू की घड़ी में 5 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों AIR तथा दूरदर्शन न्यूज की वेबसाइट पर किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। श्री मरांडी ने रांची के अरगोड़ा इलाके में खूंटी पुलिस की छापेमारी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए आरोप लगाया कि बिना FIR और सर्च वारंट के पुलिस ने घर में प्रवेश करने का प्रयास किया। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री को आगाह करते हुए कहा कि पुलिस को नसीहत दिया जाए कि वर्दी कानून से ऊपर नहीं है। गिरडीह पुलिस की पहल आपका मोबाइल फिर से आपका के तहत आज जिले भर के 112 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन वापस सौंपे गए। इस दौरान मोबाइल धारकों ने गिरडीह पुलिस के प्रति आभार जताया है। इस मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि अब तक सैकड़ों लोगों के उनके मोबाइल वापस लौटाए जा चुके हैं, जिससे लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस आई है। देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। केंद्र सरकार के जारी निर्देश के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने राज्य के सभी सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेजों और जिला सर्विसेज पदाधिकारियों को अलर्ट कर रहने और संक्रमण की निगरानी रखने का निर्देश जारी किया है। बाबा नगरी देवघर में आज से भादो मेला शुरू हो गया है। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भादो मेले के सफल संचालन को लेकर कल सरदार पंडा धर्मरक्षिणी सभा तथा तीर्थ पुरोहित समाज के प्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन ने बैठक कर श्रद्धालुओं की सेवा सुविधा और सुरक्षा निश्चित करने पर बल दिया। इधर राजकीय श्रावणी मेले के समापन के बाद आज से बाबा बैद्यनाथ धाम में अर्घा को भी हटा दिया गया है, जिससे श्रद्धालु अब बाबा को सीधे स्पर्श कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।

कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में स्वीकार करें श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज आइए हम करते हैं फिल्म लम्हे के इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: जब जब फूल खिले, आइए इस फिल्म से हम आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की।

आपने ट्यून किया 102.1 मेगाहर्ट्ज। इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, आवाज किशोर कुमार की।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म से आइए हम आपको सुना रहे कार्यक्रम का अगला गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और अभिजीत की।

थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं ग्रामीण भाई बहनों को संबोधित हमारा अगला कार्यक्रम खेती बाड़ी।

कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के एक कार्यक्रम में स्वागत है, जोहार है, प्रणाम है। और आज देखा कि आज हम इन चर्चा करें धान के फसल के ध्यान देवे योग्य बातें एवं सावधानी के बारे में। यानी कहे के मतलब है कि धान के खेती में हम इन अगर कुछ छोट छोट बात के ध्यान दिए तो अपन उत्पादन बढ़िया से बढ़ा सको। ये जैसे कि अभी हम धान के रोपाई तो सब किसान भाई बहन कर ले लिए है न। सबसे बड़ा बात है कि धान के रोपाई के साथ में एक एक चीज़ के हमेशा हमें ध्यान रखे चाहिए। जैसे हमें धान के रोपाई जैसे कर ले लिए, अब एक में करना का है, सबसे पहला है कि एक पानी के प्रबंधन हम कैसे करिए। जैसे हमें यहाँ जो भी धान लगवो है, हम इनके यहाँ पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र के चलते पानी खेत में ना रहे, तो प्रत्येक दिन या सप्ताह में 2-3 दिन जरूर खेत में जाए चाहिए। सबसे पहले खेत के जैसे मेड़बंदी जो करो है ओकर में देखो खोखरा चूहा जो छेद करके पानी सब बहा देती है। अगर तू प्रत्येक दिन देख रेख करवा तो एक तुहर धान बहतो ना है, पहला काम है ना पानी ना बहतो। और जब पानी के बचाव होते तो तुहर देखा खर पतवार एकर में कम होते। खेत में कोशिश करिए धान के खेत में हमेशा पानी के जैसे बचाव करे खातिर हमें एक बात के हमेशा ध्यान दिया है कि खेत में 2 से 3 दिन में एक बार जरूर खेत में जाए के चाहिए और मेड़बंदी बढ़िया से करे के चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज है कि अगर खर पतवार हो गए है तो ओकरा नियंत्रण हाथ के द्वारा निकाय गुड़ाई के माध्यम से या रासायनिक दवा के द्वारा भी नियंत्रण करल जा सको है। तो सबसे पहला कि धान के अच्छा फसल बुआई मतलब लिए खातिर हमें करे का हो कि धान के सबसे पहले हो कि पहला यूरिया जो हमें ड्रेंचिंग करो ये रोपाई से ठीक तीसरा सप्ताह यानी 15 से 20 दिन के अंदर में यूरिया के 1 से 1.5 किलो प्रति कट्ठा के हिसाब से यानी 4 डिसमिल में ओकरा छिड़काव करे के चाहिए किसान के। और जैसे ही तोहर जब 5वां हफ्ता चाहे जाओ 5वां 6ठा हफ्ता तो ओकर में यूरिया और पोटास यानी कि 1 किलो यूरिया आधा किलो पोटास मिला के खेत में छिड़काव करे से 2 फायदा हुआ। सबसे पहला है कि जैसे 15 से 20 दिन में जब पहला छिड़काव कर रहा तो एक में कहा कि मुआर जो कल्ला जो निकलो है वो अधिक संख्या में कल्ला निकलतो और कल्ला के बढ़ावार थोड़ा ज्यादा हुआ। अगर कल्ला का और बढ़ावार लिए हो तो ओकर में का करना रूट मास्टर प्रति एकड़ में यानी कि ओकरा जैसे हमें यानी प्रति एकड़ या प्रति कट्ठा जैसे 200 ग्राम और अमरीकाना 200 ग्राम यूरिया 1 किलो के साथ ड्रेंचिंग करोगे तो सबसे पहला कि ओकर में मुआर की संख्या अधिक हो तो मुआर जो हो तो मजबूत हो तो एकड़ में एक बड़ा फायदा हुआ है। आज ठीक जो हम बोल लियो कि तुम्हारा 35 से 40 दिन यानी कि 5वां से 6ठा हफ्ता में यूरिया का दूसरा ड्रेंचिंग जो करे हो ओकर में किसान के करना का 1 किलो यूरिया आधा किलो पोटास एक से कहा हुए कि पौधा के बढ़ावार में सही रहतो। और जब धान का सृजन हुआ है ओकर में बाली जे तो बढ़िया है तो वो खोखला यानी खाली ना हो तो खखरी ना हो तो ये छोट छोट बात के अगर तू ध्यान दबा तो धान के उत्पादन बढ़िया हो तो। अब रह गए कि धान में एक अर्ली ब्लाइट हो यानी कि देखो काला काला लेके एक बार में स्टेम बोरर तरी फूटे लगो है धान करिया करिया हो जाए तो ओकरा हमें बोले का गोबर फूटो है तो ओकर से बचे खातिर ले जैसे धान फूटे से 15 से 8 दिन पहले जैसे कि तुहर धान 50-60 दिन का हो समझे धान फूटे का अवस्था में आए तो 60 दिन में तो ओकर में किसान के का करना है 60 से 70 दिन के बीच में जैसे ओकर धान हमें 3 तरह से लगवे एक धान 100 दिन के हो एक धान 110 से 20 दिन के हो एक धान 130 से 40 दिन के हो। जैसे कि 130 से 40 दिन के हो तो ओकरा 70 से 80 दिन

में ब्लू कॉपर के छिड़काव करबे आ जे धान के फुटवार जे 110 से 15 दिन में हुआ है ओकरा 60 से 65 दिन में ब्लू कॉपर के छिड़काव करे जो 100 दिन में धान फुटो है ओकर में मतलब जे है से हम 50 से 55 दिन में छिड़काव करबे ब्लू कॉपर एकर एक छिड़काव करे से का हो है कि धान में जे काला काला फूटे ओकर शिकायत ना आए तो पहला चीज। दूसरा चीज हो कि एकरा जे डोज जे मात्रा है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से किसान के छिड़काव खेत में करे के चाहिए। कभी कभी खेत में तू अभी का देखवा कि मतलब सफेद सफेद मतलब होवे लगो धान तो सफेद को थे बाकी ले बाकी ओकर में कीड़ा के प्रकोप ज्यादा हो है तो किसान के कीड़ा से बचे खाती ले ओकर में 2 तरह से हम उपाय कर सकते। सबसे पहला स्प्रे दवा के भी कर सको कीटनाशक के या दूसरा जैसे एक जैविक तरीका से नीम वगैरह और अथी करंज के खली और महुआ खली से अगर बनाइए दवाई ओकर से भी छिड़काव करके हम इन कीट नियंत्रण कर सको है। और दूसरा में सबसे आसान है कि जैसे कि अगर हम ना छिड़काव कर पा रहे मशीन से तो हम ये करना का बालू में मिला के फ्यूराडान यानी कि 1 एकड़ में 5 से 6 kg बालू में मिला के और खेत में पानी बंधाई कर देवे और छिड़काव कर देवे ओकर छिड़काव करे से का हो कि तना में तना छेदक कीड़ा लगल रहती तो जहां भी तना छेदक कीड़ा लगल रह तो किसान भाई बहन वहां देखिए कि सफेद सफेद दाग हो या धान लाल हो जाए बीच बीच में दादी बोले ना धान में लाल हो गए या सफेद हो गए बीमारी लग गए तो ओकर से बचाव के सबसे आसान तरीका फ्यूराडान 4 से 6 kg प्रति एकड़ के हिसाब से और छिड़काव करती तो ओकर से हम इन बचाव कर सको। अगर छोट छोट बात के ध्यान दिए धान के बढ़िया उत्पादन ले सको। अब रह गए कि धान में एक और बहुत बड़ी बात हम बतेबो कि जैसे किसान बहुत ऐसा गलती का करो धान ठीक फूटे लो तो यूरिया के मतलब छिड़काव करो वैसा स्थिति में धान के यूरिया के छिड़काव ना करे चाहिए आगे पीछे धान फूटे लगो है तो किसान के कभी भी यूरिया के ड्रेंचिंग रोपाई से 1 से 2 से 3 हफ्ता में पहला यूरिया का ड्रेंचिंग और दूसरा 6ठा से 7वां हफ्ता में यूरिया के ड्रेंचिंग किसान के करे चाहिए। अगर छोट छोट बात के अगर हम ध्यान दिए धान के बढ़िया हम उत्पादन ले सको है। एक अलावे देखा कि धान में जैसे कि चूहा मूसा ज्यादा प्रकोप करो थे तो किसान के एक बात हम बता दें धान ठीक तोहर फूटे शुरू हुआ चूहा के ज्यादा प्रकोप खेत में हुआ तो चूहा के प्रकोप से बचे खाती ले सबसे एक आसान हो जो पहले रील रू रील उरा खेत में बांधा जब हवा चल भर भर के आवाज करते तो ओकर से चूहा खेत में ना रहते भाग जो पहला चीज। दूसरा चीज अगर कहीं अगर खेत में चूहा लग भी गलो तो वहां कोशिश करेगा कि चूहा नाशक या जो भी दवा वगैरह हो दे के कंट्रोल करा कहे कि हम धान के उत्पादन के करीब 7 से 8% जो है 9% 10% चूहा और चीरा ये सब खा जाती तो एक से बचावे के बहुत ही आसान तरीका है कि जो पहले कैसेट रो ले कैसेट के पूरा और खेत में बांध देते जब हवा दोनों ओर दो छोर से हवा जैसे से चलते भर भर के आवाज करते तो एक से चूहा खेत में ना तो दिमाग में ये है कि आदमी के हलचल हमेशा होते जेकर चलो खेत में चूहा के प्रकोप ना हो तो अब बहुत तरह के भी उपाय है जैसे कि जहाँ चूहा ले गलू जो हल्का सा धुआं कर धार बंद कर दो छेद तो वहां से भी चूहा निकल के भाग जतो तो अगर इस सब बात के ध्यान दिया तो हम इन अपन खेत में चूहा लगे से बचा सको ये। अब जैसे खोखरा की बात है खोखरा के सबसे बड़ा बात है कि एक ऐसा चीज हुई एकरा हम जब तक देख के अगर ना मारवा तो हर जगह खेत में छेद कर दो खेत में और जब खेत में आयर मेढ़ में छेद कर दो तो पानी स्वतः होकर बह जतो तो कुछ छोट छोट बात के ध्यान दिया तो हम इन पानी बहाव से अपन बचा सको ये है ना। तो खेत में अगर पानी रहते तो धान उत्पादन अच्छा हो तो किसान भाई बहन के हमेशा एक बात के हमेशा ध्यान रखे चाहिए अपन अच्छा उत्पादन लिए खाती ले धान में हमेशा मतलब किसान के अगर ध्यान रखे चाहिए कि पानी के बंधाव बहुत जरूरी है। जैसे कि एक हफ्ता तुम्हारे खेत में पानी अगर भरल हो तो फिर एक बार पानी सुखा दा 1-2 दिन खाते फिर पानी भर दा तो से का मार भी अच्छा लतो और धान के बाली अच्छा हो तो अच्छा उत्पादन हो तो इस बात के अगर ध्यान दिया हम धान का उत्पादन बढ़िया ले सको। एक अलावा धान में है कि बहुत तरह के बीमारी हो तो बतेवे कर लियो लेकिन आज एक हम एक जानकारी लेकर आवा लियो जे कि बहुत ही अच्छा जानकारी हो। अब जो समय आगलो है अगस्त के बाद जो मतलब सितंबर महीना आगलो है तो एक में किसान के आलू आगात आलू किस्म के रोपाई के समय आ गए हैं तो देखा कि आगात आलू के रोपाई के बारे में जब बतवे थथिन मतलब गौरिया कर्मा ICR गौरिया कर्मा हजारीबाग के हथिन वहाँ पद स्थापित डॉक्टर विजय बहादुर सिंह तो इनकर जानकारी के सुने और इनकर से बात करके वीरेंद्र साहू तो ये जानकारी भरल बात के सुनो ही और समझो ही।

0: इसमें आलू की खेती के बारे में। तो आज किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं ICR कोरिया कर्मा हजारीबाग, और हमारे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक है डॉक्टर विजय बहादुर। तो सबसे पहले सर आपको कार्यक्रम में स्वागत है, जोहार है।
1: जोहार
0: डॉक्टर साहब, हम लोग जो अभी चर्चा करेंगे आगाम किस्म आलू की खेती की उन्नत खेती, इसका हम खेत को कैसे तैयार करेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे।
1: ठीक है, देखिए खरीफ आलू का खेती की तैयारी करने के लिए पहले तो हम मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करेंगे, उसके बाद जो है दो तीन जुताई जो कल्टीवेटर से करके मिट्टी को जो है बहुत ही अच्छी तरह से भुरभुरी बना लेंगे जो है। ठीक है, और इसके बाद हम उनको जो है फ्लैट पे नहीं लगाएंगे, हम आलू को रीत पे लगाएंगे, जो मेड़ बोलते हैं ना उस पे बना के लगाएंगे, जिसकी ऊंचाई लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई होगी उस पेड़ की, जो है रीत की, उस पे हम आलू को लगाएंगे। और जो आलू का जो साइज होगा लगाने के लिए, सबसे बढ़िया माना जाता है कि 30 से 40 ग्राम का अगर हो उसका वेट जो है वजन, वो सबसे अच्छा माना जाता है। और जिसका व्यास जो है डायमीटर जो है 3.5 से 5 सेंटीमीटर के आसपास हो तो वो सबसे आइडियल है जो है लगाने के लिए जो है। और उसको जो स्पेसिंग बोलेंगे लगाने के लिए, तो जो रो हम बनाएंगे जो है वो जो है
0: 45
1: सेंटीमीटर के आसपास रखेंगे। और जो आलू का जो टुकड़ा लगाएंगे या सीधा आलू लगा रहे हैं जिसका वजन 30 ग्राम के आसपास है, तो बिना काटे ही लगाएंगे उसको, तो उसको हम 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक एक करके लगाते हुए जाएंगे।
0: चलिए, तो आप आलू लगाने के बाद के बेड तैयारी करने के बाद, इसमें सबसे पहला कि आलू के मुख्य प्रभेद कौन कौन से होते हैं?
1: देखिए आलू की जो खरीफ सीजन की जो इसमें जो सबसे अच्छी मानी जाती है, उसमें है कुफरी ज्योति, कुफरी पुखराज, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी पहाड़, कुफरी हिमानी और कुफरी सूर्या। ये किस्में जो है आप खरीफ सीजन में बहुत अच्छे से लगा सकते हैं।
0: अब डॉक्टर साहब, ये जितने जो आप बताया बीज, खास करके हमारे जो उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड में है, कौन सा आलू का बीज ज्यादा सुटेबल है?
1: देखिए जहाँ तक झारखंड की बात है, तो मुझे ऐसा किसानों से भी बात करके मैं मालूम हुआ कि यहाँ के किसान जो है कुफरी ज्योति और कुफरी पुखराज जो है बहुत अच्छे से जो है खरीफ सीजन में लगाते हैं जो है।
0: चलिए, तो बहुत अच्छी बात बताएं। अब हम इसमें जानना चाहते हैं कि आलू की खेती में खाद प्रबंधन इसको हम कैसे करेंगे, प्रति हेक्टेयर में कितने गोबर का हम यूज करेंगे, कितना मतलब आपका रासायनिक खाद का यूज करेंगे, इसका बारे में आप संक्षेप में जानकारी दें।
1: तो देखिए गोबर की खाद जो है जो अच्छी सड़ी जो हो, वो जो है जिसको हम FIM बोलते हैं, वो जो है 15 से 20 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से, वो जब हम खेत की तैयारी करेंगे उससे पहले ही खेत में बहुत अच्छी तरह से मिला देते हैं छिटक के जो है उसमें, ताकि जब हम खेत की तैयारी करें तो अच्छे से मिल जाए, उसको हम पहले ही डालना होता है जो गोबर की खाद होती है। बाकी आपको देखा जाए तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस की अगर बात करें, तो लगभग इन एवरेज मान के लिए कि 125 kg नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है 100 kg और 125 kg पोटेशियम जो है पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको उसमें खेत में डालते हैं। अगर एक वेरी करता है खेत जो है, तो कहीं कहीं के जो है नाइट्रोजन 180 के आसपास भी डाल देते हैं जहाँ पे अगर उपलब्धता नहीं होती है। तो इसका डालने का जो तरीका ये होता है कि जो हाफ नाइट्रोजन है वो जो है आपको खेत की तैयारी और फुल फॉस्फोरस और पोटेशियम जो तैयारी के टाइम ही डाल देते हैं, और बाकी जो नाइट्रोजन का आधी बची हुई मात्रा है उसको जब हम पहली बार जब आलू लगाने के बाद जब 20 से 25 के बाद जब खरपतवार निकालते हैं जो है लगभग 30 दिन बाद, तो उस टाइम खरपतवार निकालने के बाद जो है हाफ जो डोज है उसको दे सकते हैं, या आप पूरा भी दे सकते हैं, या उसका भी जो आधा बचा हुआ है आधा वहां पे दे सकते हैं, और जो आधा बचा हुआ उसको जो है 45 दिन बाद मतलब दूसरी बार जब आप खरपतवार निकालेंगे तब भी दे सकते हैं।
0: जी, ये तो खाद प्रबंधन की बात थी। अब आलू जब हम लगाते हैं, इनमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए कि जिससे बीमारी क्या क्या लगता है, इसको हम कैसे निजात पाएंगे?
1: देखिए पहली बात तो कि जब हम खरीफ आलू लगाएंगे तो हमें ध्यान ये देना है कि जो बीज हम लेते हैं ना वो जो है जो रबी में आलू उत्पादन किया गया रहता है उसी को यूज मिलाते हैं, तो हमें ध्यान ये देना है कि आलू की जो डारमेंसी होती है वो 8 से 10 महीने तक होती है। तो जो आलू मान लीजिए जो रबी में लगा हुआ है वो आपको अब मिल जाएगा आपको जनवरी में या फरवरी तक, कोई कोई मार्च तक भी लोग करते हैं, तो अगर तुरंत उसको लगाएंगे तो डारमेंसी गिरे में रहेगा,

0: करना, तो जो एवरेज जो इसका है कि 8 से 10 जो है मंथ वीक जो है, सॉरी वीक जो है डायमेंड सी पेड होता है, तो उसको में ध्यान देना है। और आलू को डायमेंड सी पेड करने के लिए आपको जो है आप उपचारित कर लेंगे तो बेटर रहेगा, जैसे 1% जो है थाई यूरिया और प्लस 1 BKM जो है GA3 जो है एक घंटे के लिए उसको घोले जो है डुबा के रख देंगे और फिर उसको लाइट में कहीं पे कहीं छाया में जो है रख देंगे उसको जो है, और ऐसा करके आलू को फैला करके 10-15 दिन तक रख देंगे तो उसका जो डायमेंसी पेट वो खत्म हो जाएगा और उसका जो है स्प्राउटिंग जो है ना बहुत ही अच्छा होगा जो है,
1: उसका जनरेशन। हाँ,
0: बाकी जो है इस सीजन में जो है आपका लेट ब्लाइट जो मेजर जो डिजीज है पोटैटो की वो भी आती है जो है, तो उसके लिए आपको जो है मेंटोजेब जो है 0.2% का जो है आप स्प्रे जो है कर सकते हैं या रेडोमिल का जो स्प्रे कर सकते हैं, जो कि आपको लगाने के 45 दिन बाद या और 60 दिन बाद जो है करने से बेहतर होगा। और इसके अलावा बैक्टीरियल बिल्ट भी इस टाइम देखा जाता है, तो बैक्टीरियल बिल्ट के लिए ब्लीचिंग पाउडर जो है लगभग 25 से 30 kg पर एक्टर के हिसाब से आप जो है उपयोग कर सकते हैं। और रही बात जो है कीड़े लगने का, तो कट बर्न जो है ज्यादा देखा जाता है इस टाइम जो है खरीफ में, तो उसके लिए आप 4-8 जो है 10 GM 15 kg पर एक्टर के हिसाब से आप जो है प्लांटिंग टाइम जो है दे सकते हैं जो है।
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात बताया कि आलू में हम कैसे इसको बचाव करेंगे, कौन कौन सी बीमारी लगता है, लेकिन आलू जब हमारा तैयार होता है वो कितने दिन में तैयार हो जाता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे वो मैच्योर हो गया कोड़ने लायक?
0: देखिए उसमें आपका जो है पत्तियां जो है थोड़ा सा जो है जो हरापन उसका जो है उसमें जो है कम होने लगेगा धीरे धीरे, जो बिल्टिंग जो है ना सूखने टाइप के हो जाएंगी पत्तियां। और इसमें जो है मान लीजिए आपको 75 से 90 दिन में जो है खरीफ में जो है ना ये सिम्टम जो है आपको दिखेगा जो है, तो आप जो है उस टाइम हार्वेस्टिंग से जो है लगभग 10 से 15 दिन पहले आपको जो ऊपर का जो पार्ट है ना जो प्लांट पौधा है तो उसका जो पत्तियां वाला पार्ट है जो है उसको जो है स्टेम से जो हम कट करके हटा देंगे, उसके जो है 3-4 दिन बाद ऐसे ऐसे छोड़ देंगे उसको, इसके बाद जो है हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ये लगभग मान लीजिए कि आपको 75 से 90 दिन बाद जो है आपको आलू जो है खुदाई के लिए तैयार हो जाएगा।
1: चलिए, तो हम खुदाई तक की बात की, अब हम एक और चर्चा करेंगे मुख्य तौर से 1 हेक्टेयर हमारा आलू में लगाने के लिए कितना बीज की आवश्यकता पड़ता है?
0: हाँ, 1 हेक्टेयर जो है बीज लगाने के लिए मान के लिए आपको 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको जरूरत पड़ेगा जो है।
1: अच्छा, तो ये 15 से 20 क्विंटल के जो आप जिक्र किए वो 30 से 40 ग्राम आलू का बीज का आप जिक्र किए?
0: हाँ, वो बेहतर साइज जो है 30 से 40 ग्राम पर रहेगा साइज, तो वो बेटर है, उससे अच्छा आइडियल है जो है लगाने का।
1: अच्छा, अब जैसे कि ज्योति और कुखराज की बात की है, तो ये जो बीज है इसका हम लोग पहचान कैसे करेंगे?
0: हाँ, ज्योति को जो आप जो कट करेंगे उसको देखेंगे जो उसका जो गूदा है जो है वो सफेद क्रीमी सफेद कलर का होगा जो है, और जो पुखराज होगा जो है उसका जो पीलापन भी हुआ होगा।
1: अच्छा अच्छा,
0: हाँ,
1: तो ये दोनों का पहचान है आलू का बीज का।
0: और ये जो ज्योति जो है आपका अंडाकार शेप में होगी जो है, और पुखराज जो है गोल से लेते हुए अंडाकार शेप में होगा। ठीक है,
1: चलिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत मूल्य समय दिया और अच्छा जानकारी दिए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो देखा कि अभी हमने बहुत अच्छा जानकारी सुन ली है डॉक्टर विजय बहादुर से आलू के आगात किस्म के बारे में, तो अच्छा तरीका से भी जानकारी दलथिन है। और अब एक सुनो ही आज एक जरूरी संदेश और एक लोक गीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

तो देखा कि अभी कितना बढ़िया, एक जरूर संदेश के साथ में एक मनोरंजन खातिर एक लोकगीत भी सुन लिए हैं। और अब बिना देर कुबेर कर ले, सबसे पहले आज हम इन जानवे आज के बाजार भाव, खास करके हमारे हजारीबाग क्षेत्र में जो आज सब्जी के रेट हले ओकर बारे में हम इन चर्चा करवे। अभी भाई लाल आलू 18 से 20 रुपया प्रति किलो, सफेद आलू 13 से 15 रुपया प्रति किलो, प्याज 30 से 35 रुपया प्रति किलो, फूलगोभी 50 से 60 रुपया प्रति किलो, पत्ता गोभी 25 से 30 रुपया प्रति किलो, पटल 30 से 35 रुपया प्रति किलो। और देखा कि भिंडी 20 से 25 रुपया प्रति किलो, नेनुआ 15 से 20 रुपया प्रति किलो, कद्दू 15 से 20 रुपया प्रति किलो, हरा मिर्च 50 से 60 रुपया प्रति किलो, शिमला मिर्च 60 से 70 रुपया प्रति किलो, गाजर 25 से 30 रुपया प्रति किलो, बीट 30 से 35 रुपया प्रति किलो, सेम 80 से 90 रुपया प्रति किलो, बीन 30 से 35 रुपया प्रति किलो, मूली 15 से 20 रुपया प्रति किलो, धनिया पत्ता 100 से 120 रुपया प्रति किलो, अदरक 90 से 110 रुपया प्रति किलो, खीरा 15 से 20 रुपया प्रति किलो, टमाटर 20 से 25 रुपया प्रति किलो, लाल साग 15 से 16 रुपया प्रति किलो, पालक साग 12 से 15 रुपया प्रति किलो। तो आज के बाजार भाव इस प्रकार से रह है सब्जी के। और देखा कि आप मौसम की बात करिए, देखा अभी बादल छावल रहते हैं और पानी बीच बीच में गिरते रहते हैं। सबसे पहले अधिकतम तापमान आज हले 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान जे हले कम से कम 22 डिग्री सेल्सियस, और जरा आर्द्रता कहल जा है 80%। और कल का मौसम पूर्वानुमान है 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। तो आज के ई रहले मौसम और ई रहले बाजार भाव। और अब एक जानकारी के तरफ हम इन आवो है, सबसे पहले कि बरसात के मौसम में सब्जी में लगने वाले प्रमुख कीट एवं उनका रोकथाम। कहे का मतलब है कि बरसात के मौसम में 3-4 तरह से कीट ज़्यादा लगो, एक जाली जब बना के कीड़ा वह से एक तना छेदक, एक फल छेदक, एक सबसे बड़ा कारण ज़्यादा नमी के चलते कीड़ा के प्रकोप ज़्यादा खेत में देखल जा है। तो किसान भाई बहन के हमेशा एक बात की हमेशा ध्यान रखे के चाहिए कि जब थी तुहरा जो हो कीड़ा के प्रकोप ज़्यादा देखो हा, तो जैसे कि अभी नीम के तेल से भी तू अपन कीड़ा के प्रकोप के रोक सको हा, तो उग्र प्रकोप के रोके खातिर सबसे पहले किसान के करे कहो से हम बता दे। सबसे पहला कि कभी भी प्रकोप हो वो है कीड़ा के, तो उग्र किसान में सबसे बड़ा बात है कि अगर नीम तेल अगर हम इन कम से कम 2500 PPM से ऊपर लिए, 5000 PPM के अगर 5000 PPM है, तो उग्र 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में शैम्पू के साथ मिला के छिड़काव करिए, तो एक कीड़ा कम

सकते हैं, चूंकि ये जैविक तरीके से कीड़ा के मारल जा सकू है। एक अलावे जैसे कि अभी दवाई तीन तरह से उगले, अगर रासायनिक दवा बात करें तो कॉन्टैक्ट हुआ, एक सिस्टमेटिक हुआ, फंगीसाइड हुआ, तो फंगीसाइड के भी प्रकोप से मतलब सब्जी में नुकसान हुआ है, और देखा कि मतलब कीड़ा के भी प्रकोप से सब्जी में नुकसान हुआ है। तो देखा कि अगर कीड़ा से हम बचावे खातिर जैसे कि सेमोडेस के अगर प्रयोग करिए, 1 ml मतलब 1 लीटर पानी में मिला के अगर छिड़काव करिए और 10 से 12 दिन के अंतराल में एक हम छिड़काव करबे, तेकर से का होते कि तुहर में फल छेदक कीड़ा या जाली वाला कीड़ा तुहरा प्रकोप ना बने। तो एकर अलावे देखा कि जैसे कि तुहरा फंगस लग जाए, पत्ता जले लगो है, पत्ता सिकुड़े लगो है, तो एकर में का करते हैं इन्फिनिटो और देखा एलियट मिला के अगर छिड़काव किसान करते हैं या सैक्टिन, तो एक से कहा कि पत्ता जले से तुहर पौधा में बच, तो इससे फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर में ज़्यादा पत्ता जले के शिकायत अभी पानी में हो, तो कारण पानी गिरुआ है, कुहासा भी गिरुआ है, पानी बेतहासा पानी के चलते भी अनेकों तरह के बीमारी सब्जी में लगे लगो है। किसान भाई बहन अगर छोट छोट बात के ध्यान दे तो अपन सब्जी के बढ़िया उत्पादन हमें ले सको। एकर अलावे देखा कि अभी बहुत जब टमाटर रोपाई भले तो कर जड़ गलन के शिकायत सबसे ज़्यादा तोहरा मिलतो, तो ऐसा स्थिति में किसान के जो रिडोमिल गोल्ड या क्रेलैक्सिल जो भी उपलब्ध हो, जैसे रिडोमिल गोल्ड हो, तो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 8 से 15 दिन के अंतराल में एक बार जरूर किसान के छिड़काव करे के चाहिए। तेकर से का हुए कि तोहर फसल में नुकसान ना हो तो और फल अथी जो जड़ गले की शिकायत हो वो तोहरा ना मिलतो। अगर छोट छोट बात के अगर तू ध्यान दे है अपन तो तोहरा कर में जो जड़ गलन के शिकायत ना मिलतो। और देखा कि कार्यक्रम किसान बारी से जा खेती बारी से जाकर बेरा हमारा वीरेंद्र का अनुमति दा जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबाड़ी
1: के समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR तथा दूरदर्शन न्यूज की वेबसाइट पर किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू संगठन की मजबूती और पार्टी का जनाधार की मुहिम में लगातार जुटे हुए हैं। उन्होंने आज रांची के ओरमांझी स्थित आवास पर खिजरी विधानसभा की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी संगठन को विधानसभा क्षेत्र में धारदार बनाने और समसामयिक विषयों के अलावा भावी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में दोबारा परीक्षा लिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सुनवाई के बाद मामले में मुख्य सचिव को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने मामले की जांच CID को सौंपने और समय सीमा में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर रांची के गांधीनगर में इंटर स्टेट पारा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान पारा फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मुकेश कंचन ने कहा कि इस खेल में पहली बार वैसे दिव्यांग खिलाड़ी शामिल हुए हैं जो दिव्यांग के साथ साथ मानसिक रूप से भी कमजोर हैं। ओडिशा के मयूरगंज जिले में हो रही लगातार बारिश का असर पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में भी दिखाई देने लगा है। जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश को से खरकई और स्वर्णरेखा नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कर।
1: एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रमिक भाई बहनों को संबोधित हमारा अगला कार्यक्रम मेहनत कश।

कार्यक्रम मेहनतकश सुन रहे आप सभी श्रमिक भाई बहनों को श्वेता का सप्रेम नमस्कार जोहार। स्वागत है आप सबका आज के इस कार्यक्रम में। बरसात के इस मौसम में आप रहें स्वस्थ, सुरक्षित और बिल्कुल निरोग। इसके लिए जरूरी है घर का ही बना खाना खाएं, पानी उबालकर पिएं और ढककर ही पिएं। बासी सड़ी गली चीजें और हरे पत्तेदार साग सब्जियों को खाने से परहेज करें, क्योंकि कई सारे छोटे बड़े कीट पतंगों का ये प्रजनन काल होता है और ऐसे में कई सारे छोटे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो हैं वो पत्तों में अंडे छोड़ जाते हैं अपने या लार्वा दे जाते हैं। तो ऐसे में अगर उन सब वैसे साग सब्जियों को आप खाएंगे तो आपको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, इसीलिए आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाने से बचें। साथ ही बारिश के पानी में भीग जाने पर घर आकर जल्दी से कपड़े बदल लें, सिर को सूखे तौलिए से जरूर पोंछ लें ताकि आप सर्दी जुकाम से बच सकें। और श्रमिक भाई बहनों, रोजाना काम करके पैसे कमाकर परिवार की जरूरतों को पूरा करना आसान नहीं होता, ऐसे में घर के कामकाजी व्यक्ति का स्वस्थ और सुरक्षित रहना बहुत मायने रखता है ताकि घर की स्थिति संतुलित बनी रहे। इसीलिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और खासकर बाहर के जो रेहड़ी पर ठेले पर जो मिलने वाले खाद्य पदार्थ हैं उन्हें आप खाने से बचें। और इस मौसम में जो जूस मिलते हैं जूस के दुकान पे, फलों के जूस, उसे भी आप ना पिएं, क्योंकि कई बार होता है कि लोग साफ सफाई नहीं रखते हैं ठीक से, तो हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से भी कई सारी पेट से संबंधित बीमारियां होने की संभावना इस बरसात के मौसम में होती है। तो आप इन बातों का जरूर रखें ध्यान और रखें खुद को स्वस्थ और परिवार आपकी खुशी बरकरार रहे आपके परिवार में, ऐसी कामना के साथ ही बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। शाम के इस वक्त को आइए बनाते हैं और भी सुखद इस गीत के साथ।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: गीत और जरूरी संदेशों के बाद आपका एक बार फिर से कार्यक्रम मेहनत कश में स्वागत है। श्रमिक भाई बहनों, जीवन जीने के लिए बेसिक जरूरतों के साथ ही बेहतर जीवन के प्रयासों के लिए दैनिक मजदूरी के अलावा भी अगर स्वरोजगार से जुड़कर अपनी आमदनी को बढ़ाया जाए तो हमारी तसल्ली के साथ साथ परिवार की खुशियां भी दोगुनी हो जाती हैं। आज रोजगार के तमाम अवसर उपलब्ध हैं, बस जरूरत है तो अपनी रुचि और समर्पण के साथ स्वरोजगार को अपनाने की। श्रमिक भाई बहनों, आज सरकार, गैर सरकारी संस्थान और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसी अन्य सुविधाएं भी हमारे बीच मौजूद हैं जो हमें हमारी

रुचि के अनुरूप स्वरोजगार का प्रशिक्षण और बाजार की तरकीबों से हमें रूबरू करवाती हैं। भारत के हर कोने में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय जरूरतों के हिसाब से विभिन्न तरह के उद्यम और उद्यम के अवसर मौजूद हैं। ये अवसर हर वर्ग के व्यक्ति के लिए हो सकते हैं, फिर चाहे वो बुनकर हो सकते हैं जो पीढ़ियों और कारीगरी को बचा रहे हैं, पीढ़ियों से जो कारीगरी को अपनी बचा रहे हैं, ऐसे बुनकर हो सकते हैं, एक छोटे निर्माता जो वैश्विक बाजार को सेवा दे रहे हैं, एक महिला उद्यमी जो अपना व्यवसाय बना रही है, या फिर एक युवा नवपरिवर्तनकारी जो स्टार्टअप खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से वर्ग हैं, छोटे व्यवसायी हैं या बड़े व्यवसायी हैं, सभी के लिए उद्योग के अवसर उपलब्ध हैं। लघु उद्योग केवल व्यवसाय या माध्यम नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाली शक्ति है। ये उद्योग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लाखों परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं, नवाचार को बढ़ावा देते हैं और देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में लघु छोटे और मध्यम उद्यम आज भारत की आर्थिक प्रगति की रीढ़ बन चुके हैं। सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी योजनाओं से इस क्षेत्र को नई ऊर्जा और नई दिशा मिली है। लघु उद्योग न केवल स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों को अवसर दे रहे हैं बल्कि वोकल फॉर लोकल के माध्यम से हमारे परंपरागत उत्पादों को वैश्विक पहचान भी दिला रहे हैं। आपका परिश्रम भी ही भारत को आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बनाने का आधार हो सकता है। उद्योगों के लिए सरकार की पहल भी है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लंबे समय से चीन से सौर पैनलों के आयात का मुद्दा लंबित था और भारतीय उद्योग जगत उपयुक्त प्रोत्साहन की मांग कर रहा था ताकि भारत में सौर पैनलों का निर्माण शुरू हो सके और लोग इस सौर पैनलों के निर्माण में भी स्वरोजगार को अपनाकर आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें और देश की अर्थव्यवस्था में अपना एक छोटा सा योगदान दे सकें। वहीं स्टार्टअप के लिए भी प्रोत्साहन सरकार देती है। सभी क्षेत्र में स्टार्टअप विशेष रूप से महामारी के बीच विकास की पहचान दे रहे हैं। हमने कोरोना काल को भी देखा जब बाहर अपने गांव घरों से दूर जाकर के बड़े बड़े शहरों में कई युवा काम कर रहे थे, अपने घर परिवार की आर्थिक स्थिति को संभाल रहे थे। ऐसे में जब महामारी का समय आया, कोरोना काल का जब समय आया, तो सभी बेरोजगार लगभग होने को हो गए और ऐसी स्थिति में स्टार्टअप जो है, छोटे छोटे उद्योग धंधे जो होते हैं, लघु उद्योग क्षेत्रीय स्तर पर, वे उनके फिर से जिंदगी को शुरू करने का एक अवसर प्रदान कर रहे थे। तो इस तरह से भी देखें तो स्टार्टअप्स जो हैं वो बहुत बड़ी एक सहारा है जो स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं लोग उनके लिए। बाकी बातें अगर हम करें तो विदेशी कंपनियों को भी प्रतिस्पर्धा देने के लिए देश के भीतर ही वस्तुओं का उत्पादन करना बेहद जरूरी होता है। अगर हम देश के लोगों की जरूरतों के सामानों का उत्पादन हम अपने ही देश में करते हैं तो लोकल फॉर वोकल का एक जो प्रधानमंत्री जी की आह्वान है उसे भी हम फुलफिल कर सकते हैं, भरपाई कर सकते हैं उसकी, और कई सारे रोजगार के सृजन हो सकते हैं ऐसे में। और विदेशों में हमारे जो पैसे अपने देश के चले जाते हैं उनके सामानों को खरीदने के बाद, तो वे पैसे भी हमारे अपने ही देश में रहेंगे और इससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था जो है वो काफी मजबूत हो सकती है। तो ऐसे में लघु एवं कुटीर उद्योग जो है वो भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, चाहे वो घर परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना हो या देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत करना हो, आत्मनिर्भर बनाने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे होते हैं।

0: सरकार और उद्योग जगत को आगे बढ़कर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करने जरूरी हैं। सरकार की ओर से बहुत सारे नीतिगत बदलाव किए गए हैं और उद्योग जगत ने भी वास्तव में कड़ी मेहनत की है, लेकिन कुछ चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं जिन पर काम करना जरूरी है ताकि हम उन चुनौतियों से पार पा सकें और उद्योगों को बड़ा आकार दे सकें। लघु और कुटीर उद्योग स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करके भारत को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बना सकते हैं, गांवों का विकास कर सकते हैं। ये उद्योग ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में घर के पास ही काम के अवसर पैदा करते हैं और पलायन में भी कमी लाते हैं। लोग जो अपने घर को परिवार को छोड़ करके बड़े शहरों में चले जाते हैं या विदेशों में जाकर के पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा आधार है लघु कुटीर उद्योग। स्थानीय स्तर पर आमदनी होने से युवाओं को रोजगार के लिए बड़े शहरों की तरफ पलायन नहीं करना होगा या फिर विदेशों में जाकर के जो बसे लोग हैं उनके लिए भी स्टार्टअप इंडिया जैसे जो रोजगार के अवसर हैं वे भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कला संरक्षण में भी लघु एवं कुटीर उद्योगों का बहुत बड़ी भूमिका होती है। हथकरघा, हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाएं इन छोटे उद्योगों के लिए बहुत अच्छे जरिया है जिनके जरिए जो है भारत की विभिन्न कोनों तक जो कलाएं हमारी क्षेत्रीय कलाएं फैली हुई हैं उनके लिए ये संरक्षित करता है लघु कुटीर उद्योग। कम लागत में भी इन उद्योगों को शुरू किया जा सकता है और कम पैसों और स्थानीय सामान की जरूरतें जो हैं वो उन्हें बनाई जा सकती हैं। स्वदेशी अपनाने से देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और लोकल फॉर वोकल का संकल्प जो है वो भी पूरा हो सकेगा। स्थानीय उत्पादन बढ़ने से विदेशों से सामान मंगाने की जरूरत कम पड़ेगी और इस तरह से हमारे देश की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ हो सकती है। तो आप भी अपने क्षेत्र में अपनी रुचि के अनुसार स्वरोजगार अपनाने की कोशिश करें और अपना काम जो होता है वो काफी सकारात्मक तरीके से अगर आप करें तो उसमें संतुष्टि और बढ़ोतरी दोनों होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप भी स्वरोजगार से जुड़ें, अपने घर परिवार को सुखी संपन्न रखने की कोशिश करें। बातें और भी करेंगे अगर समय रहा तो। फिलहाल कार्यक्रम में आगे वक्त है एक भेंटवार्ता का। भेंटवार्ता के जरिए आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक वार्निंग के साथ इलेक्ट्रिक वायरिंग के क्षेत्र में रोजगार के अवसर, इस बारे में विस्तार से जानकारियां दे रहे हैं। मोहम्मद खालिद और इनसे हमारी ओर से बातें कर रहे हैं अली शब्बीर।
1: हौसलों से जज्बे को उड़ान मिलता है, हौसलों से जज्बे को उड़ान मिलता है, किसी को जमीन किसी को आसमान मिलता है। श्रोताओ, जिसने अपने हौसले और लगन से मेहनत से काम किया है यकीनन कामयाबी ने उसके कदम चूमे हैं और यही नहीं बल्कि उसने अपने इलाके में अपने क्षेत्र में जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे होते हैं ऐसे लोगों ने बहुत सारी मिसालें कायम की हैं और बड़ी सफलतापूर्वक बड़ी कामयाबी के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। इसी ताल्लुक से आज हम बात कर रहे हैं, हमारे बीच हैं इलेक्ट्रिक वायरिंग करने वाले एक बेहतरीन मिस्त्री, बेहतरीन कारीगर जिनका हम नाम भी जानेंगे और उनके अनुभव हैं वो सब हम आपसे शेयर करेंगे। पहले जानते हैं उनका नाम, क्या नाम है आपका?
2: जी नमस्कार, मेरा नाम खालिद इकबाल है।
1: खालिद इकबाल हैं आप? खालिद जी, आप इलेक्ट्रिक वायरिंग का आप काम कर रहे हैं, ये काम आप कितने दिनों से कर रहे हैं?
2: लगभग ये काम हम 22 साल से कर रहे हैं।
1: 22 साल का तजुर्बा आपका है, तो ये काम ऐसा है जिसमें थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी होना, जानकारी होना भी हम समझते हैं कि जरूरी समझा जाता है। इस ताल्लुक से आपने पढ़ाई लिखाई कितनी की है?
2: हम पढ़ाई लिखाई मैट्रिक तक किए हैं।
1: मैट्रिक आपने किया है, मैट्रिक कब किए थे?
2: मैट्रिक 2006 में किए।
1: 2006 में आपने मैट्रिक पास किया, उसके बाद उसी जमाने से ही आप लगता है काम कर रहे हैं।
2: जी,
1: तो इस इलेक्ट्रिक वायरिंग की तरफ आपका झुकाव कैसे आया?
2: इस इलेक्ट्रिक वायरिंग की तरफ झुकाव, पहले तो हम 10 साल के थे

0: तब से हम केबल वाला काम करते थे,
1: डिस्क का
0: काम। उसको देखते देखते फिर मेरा गांव में ट्रांसफार्मर लग रहा था, तो मिस्त्री लोग जान पहचान का था, तो उन लोग के साथ आना जाना लगा हुआ था, एक लगाव सा बन गया। वही लोग के जरिए हमको वही लोग आगे बढ़ाते थे।
1: मतलब ट्रांसफार्मर जब आपके गांव में आया पहली बार, तो वहां से उसके तरफ आपका, उस काम की तरफ आपका दिलचस्पी बढ़ गया, और उसके जो कारीगर थे उन लोगों से आपने अपना संबंध बनाया और जानकारी वहां से लेना शुरू की।
0: जानकारी लेना शुरू किए तो वही लोग फिर हमको आगे बढ़ाने लगे कि ये काम करो ये काम करो, तो धीरे धीरे उन्ही लोग के साथ रहते रहते ये काम में हम आगे बढ़ते चले गए हैं।
1: तो मतलब इलेक्ट्रिक का जो घर में वायरिंग का जो काम होता है, इसमें आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। बिजली मिस्त्री जो लोग पहले जो होते थे, उन लोगों से आपने तजुर्बा लिया, कुछ काम सीखा, तो अपने पैर पर ये काम करना, अपनी जिम्मेदारी से ये काम आप कितने दिनों से कर रहे हैं?
0: अपना जिम्मेदारी से हम लगभग ये काम 10 साल से कर रहे हैं।
1: 10 साल से आप कर रहे हैं। तो खाली जी बताएंगे कि इलेक्ट्रिक का जो वायरिंग का काम होता है, इसमें खास तौर से किस चीज की मैंने जानकारी रखनी होती है?
0: इलेक्ट्रिक वायरिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है इसका न्यूट्रल।
1: अच्छा,
0: न्यूट्रल और स्विच पॉइंट। अगर इन दोनों में से कोई भी मिस्टेक हुआ तो आपका वायरिंग पूरा जल जाएगा।
1: अच्छा, तो क्या ध्यान रखना होता है उसमें?
0: इसमें ध्यान है कि देखिए, हम जैसे तार अंडरग्राउंड वायरिंग है, तो उसमें तार अगर डाल रहे हैं तो कौन सा लोड कौन सा तार लेगा, उसी के हिसाब से चलना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: बहुत से लोग होते हैं कि चलो 20 रुपया बचेगा, जहाँ 1.5 mm का तार लगना है वहाँ हम 1 mm का डाल दे रहे हैं।
1: अच्छा।
0: तो उससे एक तो बदनामी भी है, तो इससे बेहतर है,
1: कहीं शॉर्ट सर्किट भी होने का संभावना होता है, लगता है उसी के कारण।
0: इससे बदनामी भी है, तो इससे बेहतर है कि हम 10 रुपया कम ही कमाएं, लेकिन काम एकदम बढ़िया करके
1: पब्लिक को, कस्टमर को हम काम अच्छा देंगे, तो हमको उससे अच्छा और भी अच्छा काम मिलेगा और ज्यादा काम मिलेगा। तो ये ध्यान रखना होता है कि हमको कितना एमएम का तार कहाँ कैसे लगाना है।
0: जी,
1: एक ये बात हो गई।
0: जी,
1: और उसके बाद?
0: उसके बाद फिर आ जाइए, जितना रूम है उसका सर्किट बांट दीजिए।
1: अच्छा।
0: प्लस जैसे एक बिल्डिंग में 8 रूम है, तो 8 रूम का 8 सर्किट बनाइए।
1: और सर्किट क्या होता है?
0: सर्किट मान लीजिए 16 एम्पियर का MCB लगता है, और MCB के जरिए ही उस रूम में करंट दौड़ता है। तो जैसे मान लीजिए कि शॉर्ट सर्किट हो गया रूम में, तो आपका वायरिंग सेफ रहेगा, शॉर्ट हुआ तो वहाँ MCB ऑफ हो जाएगा,
1: खुद MCB ऑफ हो जाएगा।
0: जी।
1: अच्छा, कहते हैं वोल्टेज जो अप डाउन होता है, उसका कंट्रोल कैसे करते हैं?
0: इसका तो ये वोल्टेज फ्लक्चुएट का परेशानी,
1: अच्छा,
0: मेन पावर हाउस से होता है।
1: अच्छा, वहाँ से होता है।
0: जी,
1: तो यहाँ हम लोग जो मीटर वगैरह लगाते हैं, वहाँ कुछ उसका कोई व्यवस्था
0: नहीं
1: होता है?
0: उसका कोई व्यवस्था नहीं।
1: तो ये हुआ, आप तो कहाँ से कैसे उसको करंट को आप दौड़ाते हैं, और शॉर्ट सर्किट जो अगर होता है तो हम उसको, उससे कैसे हम बचाव कर सकते हैं, जो MCB पहले आपको ऑफ हो जाता ही आपने बताया। अब उसके बाद आती है हमको काम करने के संबंध में, जैसे आप जो काम लेते हैं किसी भी बिल्डिंग का, आप काम लेते हैं, तो उस तरह में किस तरह से आप काम लेते हैं, उसमें किस तरह से आपका मुनाफा होता है?
0: बिल्डिंग का काम लेते हैं, जिनका बिल्डिंग होता है उनसे पहले मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद फिर बातचीत चलता है कि इतना रूम है, क्या लेना है, क्या देना है। तो अपना
1: आपका अपना हो गया, बातचीत हो गई।
0: हाँ।
1: किसमें कितना लोगों ने तय किया है उसके हिसाब से। जैसे आप तो फिर रूम आपने लिया है, तो कितने दिनों में आपको समय लगता है उसको कंप्लीट करके वायरिंग दे देने में, किस तरह से आप उसको पूरा करते हैं?
0: जैसे मकान मालिक रूम हमको मांग रहा है कि हमको 10 दिन में तैयार चाहिए, तो उसको हम 9 ही दिन में दे देंगे।
1: अच्छा, उसके लिए मतलब क्या?
0: उसके लिए है कि मेहनत लगता है थोड़ा, तो मेहनत के बाद फिर हो ही जाता है।
1: आप अकेले काम कर रहे हैं, आपके साथ कुछ हेल्पर भी हैं?
0: नहीं, हम अकेले करते हैं।
1: तो अकेले करने में जैसे दीवार वगैरह कटिंग करना होता है, या फिर तार का भी आपका कटिंग वगैरह करना होता है, कहाँ से कैसे, ये कैसे संभव हो पाता है अकेले?
0: हो जाता है। ज्यादा लड़का लोग को रखने से परेशानी है, एक तो काम ढंग से होगा नहीं, चार अगर 2 से 4 लड़का रखे हैं तो उधर गप मारे हुए, उधर मारे हुए, इसलिए अकेले काम करने का मजा ही कुछ और है।
1: तो खुद जिम्मेदारी के साथ एक आदमी अगर काम कर रहा होता है, तो पूरा उसको ध्यान भी रहता है कि हमको कहाँ कैसा क्या करना है, और काम सक्सेसफुली वो सही साफ सुथरा उतरता है। तो खाली जी, हम ये जाने जैसे 2 रूम या 4 रूम का है, तो उसमें आपने खैर बता दिया कि 10 दिन का हमने टाइम लिया है, तो हमको 9 ही दिन में दे देते हैं, है ना? अच्छा, इसमें कुछ औजार की भी जरूरत पड़ती है ना?
0: जी।

0: जैसे दीवार के अंडरग्राउंड वायरिंग होता है तो कटर मशीन चाहिए, छेनी हथौड़ी, अच्छा यही सबसे कटता है दीवार।
1: दीवार काटते हैं और कुछ औजार की जरूरत होती है?
0: नहीं और कुछ नहीं।
1: ना ना। तो अगर कोई नए लड़के अगर हैं इस लाइन में अगर आना चाहेंगे जानकारी अगर तो इलेक्ट्रिशियन का वायरिंग का काम अगर करना चाहेंगे तो उसको किस तरह से आना पड़ेगा इसमें आ सकते हैं?
0: इसमें पहले तो उसको कुछ दिन एक आध महीना साथ में उसको रहना पड़ेगा,
1: किसी अच्छे कारीगर के साथ उसको रहना पड़ता है
0: और देखना पड़ेगा कौन चीज वो कहाँ कर रहे हैं, वो चीज कैसे हो रहा है, उस पर उसको ध्यान देना पड़ेगा।
1: ये इसको उसमें मेहनत करना है और उसको ध्यान देना है। तो अगर जो लड़के हैं नए इस लाइन में कराना चाहेंगे तो क्या उसके लिए भविष्य इसमें कैसा है दिखता है?
0: इसमें भविष्य बहुत सुंदर है। अगर वो चाहे आना तो एकदम शौक से आइए,
1: है ना, उसमें अच्छा आमदनी है, अच्छा मतलब रोजगार का ये जरिया है, बन सकता है
0: रोजगार, बहुत बढ़िया रोजगार है।
1: तो खाली जी आपने इलेक्ट्रिक वायरिंग के संबंध जो बातें हमको बताई इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, विषय था इलेक्ट्रिक वायरिंग के क्षेत्र में भी है रोजगार का बढ़िया अवसर। इस बारे में विस्तार से जानकारियां दे रहे थे खालिद इकबाल, इनसे बातें कर रहे थे अली शब्बीर। तो श्रमिक भाई बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी जानकारियां भी आपके लिए लाभप्रद जरूर होती होंगी और आप भी अपने रोजगार के अवसर को तलाशते रहिए। और महिलाओं से भी हम कहना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए भी घर बैठे बहुत सारे ऐसे रोजगार होते हैं जैसे पापड़ बनाना, सिलाई कढ़ाई करना और अचार बनाना, ये सब जो छोटे छोटे काम हैं जो जिसे घर बैठे ही किया जा सकता है, वैसे कामों को महिलाएं जरूर करें। इससे समय भी ठीक ठाक कटेगा और दो पैसे की आमदनी भी आपके लिए बहुत मायने रखेगी। आप जब अपने पैसे कमाएंगे तो आप में आत्मनिर्भरता आएगा, आप में एक आत्मसंतुष्टि आएगा और आप बेहतर फील कर पाएंगे, बेहतर महसूस कर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम से विदा लेने का वक्त हो चला। दीजिए कार्यक्रम मेहनत का से श्वेता को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रमिक भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम मेहनत कश। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

एक दूजे के लिए। इस फिल्म से आइए हम करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, आवाजें लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसे

0: मंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: और अब कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवा रहे हैं हीरो फिल्म का ये गाना, अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास के युगल स्वरों में।

आपने ट्यून किया है 102.1 MHz और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। सोनू निगम और श्रेया घोषाल को आइए सुनते हैं फिल्म थ्री इडियट्स के इस गीत में।

उदित नारायण की आवाज में गाए फिल्म डर के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। प्रादेशिक समाचार और फिर जिले में आजकल के लिए आइए हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के राज्य केंद्र। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
3: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें।

0: के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
1: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
0: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा पर झारखंड उच्च न्यायालय सख्त, मुख्य सचिव को प्राथमिकी दर्ज कराने और सीआईडी को जांच सौंपने का निर्देश। राज्य में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट जारी, अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड चिन्हित करने का निर्देश। राज्य के कई इलाकों में 31 अगस्त तक गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना, वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन, रांची में इंटर स्टेट पारा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, हजारीबाग में 3 दिवसीय प्रमंडलीय खेल की शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR तथा दूरदर्शन न्यूज की वेबसाइट पर किया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज ICAR से संबद्ध भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक डॉ सुजय रक्षित ने रांची स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान रांची सहित राज्य भर में कृषि अनुसंधान, फसलों की गुणवत्ता में सुधार सहित कृषि से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि अन्नदाताओं को सहयोग और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और इसमें संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के केंजरा टोला में भूमि विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। तीनों शवों का आज जमशेदपुर स्थित MGM अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री मुंडा ने घटना की निंदा करते हुए राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया।
1: शासन को ऐसे मामले पर जो जिस टोंटो में जैसे जमीन के बारे में कहा गया, तो लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि जमीन के लिए रेवेन्यू मिनिस्टर वहां के हैं, तो उनको उनका क्षेत्र है, उनको खुद देखना चाहिए।
0: माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में दोबारा परीक्षा के लिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।

0: जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सुनवाई के बाद मामले में मुख्य सचिव को प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने मामले की जांच सीआईडी को सौंपने और समय सीमा में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की वार्षिक आम चुनाव की प्रक्रिया आगामी 31 अगस्त से शुरू हो रही है। इसके तहत 12 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। चैम्बर के चुनाव को देखते हुए अलग अलग गुटों में और व्यापारियों में चुनाव सरगर्मी बढ़ रही है। चैम्बर चुनाव में हिस्सा ले रहे तुलसी गुट के प्रमुख तुलसी पटेल ने आज रांची में प्रेस वार्ता में अपनी भावी रणनीति का जिक्र किया।
1: व्यापारी एकदम खुले दिल से रात भर दिन बंद क्या 24 घंटा आवागमन निर्भय रूप से करें, इस तरह का हमारा प्रयास रहेगा। और जब कानून व्यवस्था के चलते कुछ बड़ी इंडस्ट्री नहीं आती है तो हमारा प्रयास है पहले कानून व्यवस्था सुधरे।
0: देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। केंद्र सरकार के जारी निर्देश के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को अलर्ट रहने और संक्रमण से निपटने के लिए अस्पतालों में कम 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड चिन्हित करने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची में कल विभिन्न आदिवासी संगठनों की ओर से रैली का आयोजन किया गया है। गुमला जिला भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष छोटेलाल उरांव ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि परिसीमन होना एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में आदिवासी समाज का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन को लेकर कुछ संगठनों द्वारा आदिवासी समाज में यह भ्रम फैलाया जा रहा है।
2: हमारा सीट घटे या बढ़े ये परिसीमन तय करेगा कि हमारा सीट बढ़ेगा या घटेगा। ये पहले से ये फैसला कर ले रहे हैं कि हमारा सीट घट रहा है, ये औपचारिक बात नहीं है। औपचारिक बात ना होने के कारण हमारे आदिवासी समाज क्षुब्ध हैं।
0: इधर आदिवासी छात्र संघ ने जनगणना में सरना धर्म कोड का विकल्प नहीं होने पर परिसीमन और जनगणना दोनों का बहिष्कार करने की घोषणा की है। संघ के केंद्रीय संयोजक डॉ सुशील कुमार मिंज ने आज रांची में प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर वर्ष 1961 में आदिवासी धर्म कोड को षड्यंत्र के तहत हटाने का आरोप लगाया।
3: कि सरना नहीं तो जनगणना नहीं, अगर 2027 में जो जनगणना होगी उसमें हम विरोध करेंगे, अगर हमारा कॉलम नहीं रहेगा तो हम जनगणना को बैकआउट करेंगे। और दूसरी बात है कि हमारा परिसीमन आदिवासी छात्र संघ का ही आवाज है।
0: गिरडी पुलिस की पहल आपका मोबाइल फिर से आपका के तहत आज जिले भर के 112 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन वापस सौंपे गए। इस दौरान मोबाइल धारकों ने गिरडी पुलिस के प्रति आभार जताया है। इस मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार ने बताया कि अब तक सैकड़ों लोगों को उनके मोबाइल लौटाए जा चुके हैं, जिससे लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस आई है।
4: इस वर्ष हम लोगों ने 424 मोबाइल इस वर्ष का हम लोगों ने लोगों तक वापस कर चुका है अभी तक। और इसके पहले 2025 में कुल मिला के हम लोग जब से ये हमारा चल रहा है ये आपका मोबाइल फिर से आपका कार्यक्रम, इसमें करीब 850 से ज्यादा लोगों को मोबाइल उनके हाथ तक पहुंचा है।
0: राज्य के कई इलाकों में आगामी 31 अगस्त तक गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि आज कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। कल दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, खूंटी, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो और धनबाद में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। वहीं 31 अगस्त को गुमला, रांची, खूंटी, लोहरदगा और लातेहार जिले में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

0: राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर रांची के गांधीनगर में इंटर स्टेट पारा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान पारा फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मुकेश कंचन ने कहा कि इस खेल में पहली बार वैसे दिव्यांग खिलाड़ी शामिल हुए हैं जो दिव्यांग के साथ साथ मानसिक रूप से भी कमजोर हैं।
1: ये प्रतियोगिता जो आज कराई जा रही है राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर फुटबॉल, और ये फुटबॉल जो कैटेगरी आप देखेंगे इसमें अस्थि बाधित भी है, डिफ एंड डम जो बोल सुन नहीं सकते हैं, और इस बार हम लोगों ने पहली बार इसमें शामिल किया है ऐसे दिव्यांगजनों को जिसे हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, ऐसे बच्चे भी यहाँ पर खेल रहे हैं।
0: राष्ट्रीय खेल दिवस पर हजारीबाग में 3 दिवसीय प्रमंडलीय खेल महोत्सव का आज से शुरू हो गया है। महोत्सव का उद्घाटन सांसद मनीष जायसवाल, विधायक प्रदीप प्रसाद, अमित यादव और उपायुक्त हेमंत सती ने संयुक्त रूप से किया है। इसमें हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो और धनबाद के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा पर झारखंड उच्च न्यायालय सख्त, मुख्य सचिव को प्राथमिकी दर्ज कराने और सीआईडी को जांच सौंपने का निर्देश। राज्य में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट जारी, अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड चिन्हित करने का निर्देश। राज्य के कई इलाकों में 31 अगस्त तक गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना, वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। रांची में इंटर स्टेट पारा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, हजारीबाग में 3 दिवसीय प्रमंडलीय खेल की शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अंक में आप सुनेंगे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे देवघर संवाददाता।
1: बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन का महामेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। सावन खत्म होते ही बाबा नगरी में भादो मेले की शुरुआत हो गई है। प्रतिपदा के दिन ही मंदिर में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। सुबह से ही जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की लाइन में लगे हैं। सदर SDO रवि कुमार ने बताया कि सावन की तरह ही भादो मेले में भी व्यवस्था रहेगी। भीड़ नियंत्रण, पेयजल, स्वास्थ्य और साफ सफाई की वही व्यवस्था जारी रहेगी और दंडाधिकारी सुगमता से श्रद्धालुओं को जलाभिषेक कराएंगे।
2: माधव मेले में सिस्टम चेंज हो रहा है, मतलब अभी तो स्पर्श दर्शन चालू हो गया, लेकिन हम लोग पुरोहितों के साथ वार्ता में भी हैं कि हम लोग अर्घा वगैरह का सिस्टम जो है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है, धक्काओं की बहुत भीड़ होती है, तो लिमिटेड डेज में ही जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो हम लोग अर्घा का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जैसा कि सर ने बताया था कि हम लोग बाहरी अर्घा का भी परमानेंट कैसे चला सकते हैं, स्पर्श दर्शन भी चल रहा है तो बाहरी अर्घा कैसे चला सकते हैं उसके बारे में प्रयास कर रहे हैं। कुछ बनवाना पड़ेगा बाहरी अर्घा, मेटल वगैरह में इंजीनियरिंग का थोड़ा सा वर्क है। उसके अलावा जो मंदिर की टीम पहले मजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस फोर्स जो परमानेंटली पोस्टेड और होमगार्ड्स पोस्टेड है, वो वापस से एक्टिवेट हो जाएंगे।
1: वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी सावन मेले में जवानों के बेहतर और तरीके से काम किए जाने पर राहत की सांस ली है। प्रवीण पुष्कर ने बताया भादो मेले में भी इसी तरह की मुस्तैदी होगी और पूरा ट्रैफिक व्यवस्था भी और बेहतर किए जाएंगे।
2: एक सुगम तरीके से सभी श्रद्धालुओं का जलार्पण हुआ और इस सावन के बाद हम ये सौभाग्य भी मानते हैं हमारा और पूरी टीम का और जितने भी पुलिसकर्मी जो इस ड्यूटी में थे कि उनको मौका मिला कि बाबा की सेवा में वो एक अपना योगदान दे सके। तो तैयारियां चल रही है, उसकी प्लानिंग चल रही है और कल से भादो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो क्राउड कंट्रोल और विधि व्यवस्था को मेंटेन करना ये हमारी सर्वप्रथम जिम्मेदारी है।
1: नगर निगम भी अपने बेहतर काम के लिए लगा हुआ है। नगर आयुक्त सुलोचना मीना ने कहा कि नगर वासियों को और बेहतर सुविधा मिलेगी और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा लेकर जाए, यह मेरी व्यवस्था है।
3: हो रहा है, साथ में भादो मेला शुरू हो रहा है। श्रावण माह में चैलेंजिंग था, काफी भीड़ थी और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जा रही थी, लेकिन शॉप वालों ने, श्रद्धालुओं ने, पब्लिक ने, लोकल्स ने, पंडितों के द्वारा, सभी के द्वारा काफी सपोर्ट मिला है और मुझे लगता है इसीलिए नगर निगम काफी इफेक्टिवली अपना काम कर पाया है। और भादो मेला में भी सेम ही स्ट्रैटेजी रहेगी जैसे कि पहले सुपरवाइजर्स थे, सुपर जोनल थे, जोनल्स थे, जो कि हर एरिया को, एक छोटी छोटी गली को भी देख रहे थे। तो इस बार भी भादो मेला में भी वही रखा जाएगा क्योंकि अब पेरीमीटर बहुत कम हो गया है, मंदिर क्षेत्र के आसपास है, तो और इफेक्टिवली काम करने की कोशिश की जाएगी। परंतु जैसे हम सभी को पता है कि मंदिर के आसपास काफी छोटी छोटी गलियां हैं और संडे मंडे को वहां पे कोई गाड़ी भेजना भी जो कूड़ा उठाने के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, तो इस बार वापस से ठेला गाड़ी का प्रयोग किया जाएगा और जितना हो सकेगा उतना काम किया जाएगा। पानी की सप्लाई इस बार अनइंटरप्टेड रही, पूरे महीने में पानी की सप्लाई काफी अच्छी रही। उसके अलावा बाकी जितने भी चापनरिया लाइट से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी सबका निष्पादन 24 आवर्स में किया गया।
1: सावन ने दिखाया आस्था का सैलाब, अब भादो में भी गूंजेगा बोलबम और जय बाबा बैद्यनाथ का जयघोष। श्रद्धालुओं के साथ पर्यटनों का आना लगातार देवघर में जारी है। इसके साथ ही व्यवस्था में भी लगे सभी लोग ने कहा कि यहां से बेहतर व्यवस्था लेकर लोग जाएं, यही हमारी कामना है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
0: अभी आप सुन रहे थे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है करियर सलाह पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम नवचेतना। विषय है, संकलन एवं वाचन है अंजना बाखला का। प्रस्तुत करता है राजीव कुमार और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं विक्रम कुमार रंजन।

0: हमारे आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम नव चेतना सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को अंजना का नमस्कार। दोस्तों, लोगों की ये सोच होती है कि भाग्य से ही जीवन चलता है और भाग्य के भरोसे ही उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है। ऐसा होता है, जीवन में कुछ घटनाएं संयोगवश हो जाती है, लेकिन उस पल का इंतजार करना और ये सोचकर बैठे रहना कि सब कुछ अपने आप होगा, तो यह सिर्फ समय की बर्बादी है। सफलता हासिल करनी है तो कुछ बातों को गांठ बांध लेनी चाहिए, जैसे भाग्य पर भरोसा ना कर अपने इरादे पक्के करना, सोच सकारात्मक हो और हर परिस्थिति का सामना करते हुए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी विफलताओं से निराश ना होकर उससे अच्छा करने की सोच को मजबूत करना। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आज हम लेकर आए हैं जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड परीक्षा से जुड़े कुछ खास जानकारी। इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं अचीवर्स क्लासेस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अजय ठाकुर सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, साथ ही आपको हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड क्या है, इस प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को कितनी बार अवसर मिलते हैं।
1: जेईई मेन और जेईई एडवांस इंडिया की मुख्य इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा है। जेईई मेन एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है और जे एडवांस आईआईटीज द्वारा आयोजित की जाती है। पहले जेई मेन की बात करूं तो इस एग्जाम के थ्रू मेनली एनआईटी, ट्रिपल आईटी जिसको बोलते हैं, आईआईटी एंड जीएफटीआई और केंद्रीय और राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग संस्थानों में एडमिशन होता है। जे एडवांस मेनली आईआईटीज में एडमिशन के लिए होता है। आईआईएससी बेंगलुरु में भी अब एडमिशन जेई एडवांस के ही थ्रू हो रहा है। पहले जेई मेन की बात करूं तो वर्तमान व्यवस्था के अनुसार साल में दो बार एग्जाम होता है, सेशन वन और सेशन टू। सेशन वन जनवरी में होता है, सेशन टू अप्रैल में होता है और कोई भी स्टूडेंट 3 साल तक दे सकता है इस एग्जाम को।

को, जैसे मान लीजिए कोई अगर 10th और 12th के बीच में कोई गैप नहीं है तो अपीयरिंग 12th में भी एग्जाम दे सकता है, 12th के जस्ट बाद दे सकता है, उसके एक नेक्स्ट ईयर भी दे सकता है, यानी 3 साल, यानी कुल मिला के बोले तो 6 सेशन एग्जाम दे सकता है। वहीं जेई एडवांस की बात करें तो वो स्टूडेंट शामिल हो सकता है जो जेई मेन के थ्रू निर्धारित कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं। जनरली 2.5 लाख के आसपास हर साल जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया जाता है बच्चों को जेई मेन के थ्रू, और फिर वो एग्जाम देता है। उसमें जेई एडवांस एग्जाम में अधिकतम लगातार 2 वर्षों तक दे सकता है। उसमें भी वही बात सेम बात है कि 10th के बाद कोई गैप ना हो तो जिस साल वो 12th का एग्जाम लिखता उस साल, और 12th के एक साल बाद एग्जाम वो दे सकता है जेई एडवांस का। जेई मेन की बात पहले करूं तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 बी और बीटेक के लिए होता है और पेपर 2 बीआर के लिए होता है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स बी और बीटेक पेपर 1 ही देता है। पेपर 1 में कुल 75 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 25 फिजिक्स, 25 मैथमेटिक्स और 25 केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री ऑप्शनल है, उसके जगह पे कोई और भी पेपर सब दे सकता है, बहुत सारा पेपर है उसमें ऑप्ट करके आप दे सकते हैं। लेकिन जे एडवांस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कॉम्बिनेशन रखना ही है तो इसके बाद हायर स्कोरिंग भी है, केमिस्ट्री में ज्यादा स्टूडेंट्स मार्क्स लाते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन को ही ऑप्ट करता है, जिसमें 25-25 क्वेश्चन रहते हैं, 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन रहता है न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। टोटल 3 घंटा का एग्जाम होता है और फुली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जिसमें मार्किंग स्कीम है कि अगर सही आपका जवाब है आंसर है तो 4 मिलेंगे मार्क्स, और अगर गलत आंसर अगर आपने ऑप्ट किया तो -1 मार्क्स, और कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो 0 मार्क्स, यानी कुल मिलाकर 100 मार्क्स का ईच पेपर होता है, टोटल 300 मार्क्स का होता है। वहीं जे एडवांस की बात करें तो जे एडवांस जो IITs के 7 जोनल कोऑर्डिनेटिंग के द्वारा किया जाता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 भी आपका 3 घंटा का होगा और पेपर 2 भी 3 घंटा का होगा। पेपर 1 में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें अलग अलग सेक्शन होता है, ठीक उसी तरह से पेपर 2 में भी वैसे अलग अलग सेक्शन होता है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मार्क्स पूछे जाते हैं। तीनों में इक्वल मार्क्स रहता है और एग्जाम पैटर्न वही MCQ, ओनली 1 चॉइस और मोर देन 1 चॉइस भी रहेगा इसमें। अब इसमें थोड़ा न्यूमेरिकली जो क्वेश्चन जो होता है न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चन वो तो रहेगा ही, साथ साथ कम्प्रिहेंशन भी रहेगा, मैट्रिक्स मैच भी रहेगा, एसर्शन रीजन भी रहेगा, मतलब क्या रहेगा सर्टेनिटी के साथ नहीं बोला जा सकता है। इसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है। IITs जे एडवांस के एग्जाम में कोई नहीं बता सकता कि इस पैटर्न का रहेगा, उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह के एग्जाम इस साल पूछा गया है। दूसरी बात जो आप पूछे हैं कि इसमें तैयारी करने के लिए कम से कम कितना समय देना चाहिए, तो जहां तक मेरा राय है कि बच्चे को इसका जो पैटर्न देखिएगा, सिलेबस 11th-12th बेस होता है, तो जब 11th और 12th बेस इसके सिलेबस है तो डेफिनेटली आपको कम से कम 2 साल तैयारी करना ही चाहिए, और उसको डेप्थ मतलब आपका जो NCERT है उसको अच्छा से पढ़िए ही, और साथ साथ इसके जो कंसेप्ट जो डेप्थ जो होगा कुछ जो आपके बुक्स और भी हैं हेल्पिंग बुक्स उसका मदद लेना चाहिए। दूसरी बात और इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि जे एडवांस 3rd साल भी रखा है बच्चों को एग्जाम देने के लिए। अगर कोई स्टूडेंट्स अगर आपका 2 साल में नहीं हो पाया अच्छा से, क्योंकि ये बहुत टफ एग्जाम है जे एडवांस, तो उसमें आप 1 साल और टाइम लेकर के अच्छा से जो भी आपके गाइडर है मेंटर है उससे अच्छा से एडवाइस लेके अच्छी बुक्स को फॉलो करके डेप्थ नॉलेज लेकर के और 1 साल और भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो उसमें मैं टाइम नहीं कहूंगा, टाइम बॉन्डिंग जो खुद जेई मेन और जे एडवांस दिया है वो पर्याप्त भी है और उसको फॉलो करना भी चाहिए। मैंने अभी 11th और 12th की बात किया, चूंकि जेई मेन और जे एडवांस के जो सिलेबस है 11th-12th बेस आधारित है, जो NCERT के पाठ्यक्रम है उसी बेस्ड आधारित है। लेकिन जहां तक बात है कि आज का जो जे एडवांस के जो लेवल है उसमें तो बच्चे 9th-10th के क्लास 6 से लगे रहते हैं, कुछ बच्चे जिसके मम्मी पापा भी IITian है तो उसका तो क्लास 6 से पहले से ही उसको भरा जाता है कि तुमको IIT में टॉपर बनना है, तो जितनी पहले से तैयारी करते उतना अच्छी बात है। लेकिन आज के बच्चे को देखा जाए तो 9th-10th से बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, बट 11th-12th जो उसका मेन है पाठ्यक्रम वो तो आपको तैयारी करना ही चाहिए। तो 11th और 12th और साथ साथ 12th के बाद अगर किसी बच्चों को मान लीजिए अच्छा रैंक नहीं आया और वो चाहता है कि मैं और बेस्ट कॉलेज में जाऊं, इसके लिए और अटेम्प्ट लूं, तो उसके लिए जे एडवांस दे रखा है कि आप उसके बाद भी 1 साल आप तैयारी करके और जे एडवांस जैसे जो टफेस्ट एग्जाम इंडिया का है उसमें भी क्वालिफाई करके आप मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज जो IIT है उसमें आप एडमिशन ले सकें, उसका वो प्रावधान अपना टाइम दिया है। तो इस तरह से टाइम जितना जेई मेन और जे एडवांस दिया है वो सफिशियंट है। बच्चे अगर ऑनेस्टली थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ अगर वो तैयारी करे जेई मेन और जे एडवांस जो बच्चे अच्छा कर ले। मॉक टेस्ट की जो बात आपने कहा ये बहुत जरूरी है,
इसमें तीन घंटा जो आप पेपर सॉल्व करता है बच्चा, उसमें स्पीड डेवलप होता है पहली बात। इसके बाद दूसरा बात होता है क्या कि टाइम मैनेज।

0: जजमेंट, क्वेश्चन सिलेक्शन, मतलब कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन सा क्वेश्चन मेरे को उस एग्जाम के दरमियान सिलेक्शन करके बनाना चाहिए, तो ये सब बेहतर होता है। सिलेक्शन मोड आपका स्ट्रांग होगा, बार बार प्रैक्टिस से एक्यूरेसी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका वीक जोन पता चलेगा कि मेरा वीक जोन क्या है, जिसे आप सुधारने में हेल्प होता है कि जो वीक जोन है किस कारण से हो रहा है मेरा, या तो नेगेटिव जो नंबर आ रहा है, या तो मेरा कैलकुलेशन के कारण हो रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक, सिंपल मिस्टेक है, या कॉन्सेप्ट की कमी है, तो वो सब आप डिफाइन कर पाते हैं जब आप मॉक टेस्ट आप देते हैं। तो मॉक टेस्ट देना भी चाहिए, और स्टूडेंट जितना भी मॉक टेस्ट देगा उससे उतना उसको फायदा मिलेगा, और जो जो कमियां होगी उसको सॉर्ट आउट करने में मॉक टेस्ट बहुत ही मददगार साबित होगा। देखिए, सुरक्षित स्कोर की बात कहा तो थोड़ा ये टफ है, लेकिन फिर भी 170 प्लस अगर मार्क्स आते हैं तो मान के चलिए कि 99% प्लस आता है। ये चूंकि कम्पिटिटिव एग्जाम है, और कम्पिटिटिव एग्जाम में स्कोर से ज्यादा मायने रखता है आपका रैंक, और 99% प्लस में बच्चे, जैसे मान लीजिए बहुत टफ कोई पेपर आ गया, मैंने आपको बोला कि जेई मेन के सेशन वन में भी 10 पेपर होते हैं, तो उसमें कोई पेपर टफ आ गया तो वहाँ पे आपके 140-50 में परसेंटाइल, 90% 99 प्लस आना शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आपका जब ईजी पेपर है तो 180 पे आपका 99 प्लस जाएगा। तो ओवरऑल अगर कहा जाए से 170 प्लस अगर जो बच्चे लाते हैं तो ठीक ही स्कोर है, अच्छा स्कोर है। हाँ, जी मेन के लिए अच्छा होगा। एनसीईआरटी बुक्स को कंसेप्ट से पढ़ें, थ्योरी के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग को थोड़ा ज्यादा जोर दें, रिवीजन मस्ट है, पीवाईक्यू सबसे जरूरी, पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसको बहुत ज्यादा अच्छा से बनाइए, मॉक टेस्ट मस्ट है, उसको एनालिसिस करना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नेगेटिव मार्क्स से बचें, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा हो, और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जिसको बार बार पूछा जाता है, जिसमें हर साल पूछा जाता है क्वेश्चंस, उसको अच्छा से पढ़ें और इजी टॉपिक को बिल्कुल ना छोड़ें। ऑफकोर्स IIT इंडिया का जो इंस्टीट्यूशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सबसे बेस्ट माना जाता है, फिर NIT और फिर GFTI। लेकिन बात ये भी उठती है कि मान लीजिए कोई IIT जो नया IIT है और उसमें आपके ब्रांच भी बहुत अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो उसे बहुत बेहतर NIT हो जाता है।
1: JEE मेन और JEE एडवांस एग्जाम को लेकर आपने जो एक मार्गदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण बातों को हमारे साथ साझा किया, इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: इन खास जानकारियों के बाद हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स में आइए जानते हैं देश दुनिया में घटित घटनाक्रमों को, जो आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले 3 भारतीयों ने 7 अगस्त 2026 को लीबिया के बेंगाजी में ऐतिहासिक स्काई डाइविंग का कारनामा किया और 65 अंतर्राष्ट्रीय स्काई डाइवरों के साथ मिलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने RK-251 नामक एक स्मार्ट कैंसर दवा विकसित की है, जिसे मुख्य रूप से कैंसर कोशिकाओं के भीतर सक्रिय होने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे पारंपरिक कीमोथेरेपी की तुलना में स्वस्थ उत्तकों को होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। 21 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रारंभिक स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने वाले विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य लीगल प्रैक्टिस की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के पुस्तक निर्माण उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 में 7 पुरस्कार जीते हैं। इसमें पुस्तक के, व्यापारिक पुस्तक के, पत्रिकाएं, बाल प्रकाशन और कला कॉफी टेबल पुस्तक के सहित विभिन्न श्रेणियों में 4 द्वितीय पुरस्कार और 3 तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। केरल की रहने वाली केजिया लिजमेजो ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। करंट अफेयर्स के बाद आइए डालते हैं उन विज्ञापनों पर नजर, जिनके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया इन दिनों चल रही है। भारतीय डाक विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भारतीय डाक ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन भर्ती अनुसूची 2 जुलाई 2026 पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। कुल 25,000 से अधिक पद उपलब्ध हैं। पंजीकरण 31 अगस्त 2026 से शुरू होगा। उम्मीदवार 19 सितंबर 2026 तक पंजीकरण कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 2 सितंबर 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार 21 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU ने अपनी

आधिकारिक वेबसाइट पर गैर शिक्षण पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती 55 पदों के लिए है। आईआईटी बीएचयू आवेदन फॉर्म 25 अगस्त 2026 से शुरू हो गए हैं और उम्मीदवार 24 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 26 से 35 वर्ष और अधिकतम आयु 40 से 55 वर्ष है, जो 1 जुलाई 2026 तक मान्य होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 13 सितंबर 2026। श्रोताओं, आपसे निवेदन है, आवेदन करने से पहले इन रिक्तियों से संबंधित जानकारी समाचार पत्रों या वेबसाइट से मिलान अवश्य कर लें। आपको हमारा आज का अंक कैसा लगा? कार्यक्रम नव चेतना के लिए आप अपने विचारों को हमसे साझा कर सकते हैं। इसके लिए हमारा छोटा सा पता नोट करें, कार्यक्रम नव चेतना द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हजारीबाग, पिन कोड है 825301। श्रोताओं, कार्यक्रम नव चेतना के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन। अब आज के इस अंक के साथ दीजिए अंजना को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे करियर सलाह पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम नवचेतना। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: गच्छ लगाओ गच्छ बचाओ।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सब भाई और बहन मन के रोरवन के रेडियो संगे मनोज और
0: विष्णुकर
1: जोहार। और ये कार्यक्रम को प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: तो विष्णु भाई, क्या हालचाल है, किसन खेती बारी मन चलत है?
0: एकदम नगदे है मनोज भाई, रौरे कर कहो कैसन हाल समाचार है?
1: एकदम बढ़िया है, देखो निखन बरखा पानी भी ठीक होलक और खेती बारी करत थी, और संगे संगे देखो नी सब्जी मन भी उगा थी, और देखो बगल में हमरे कर खेत कर बगल में जंगल झाड़ मन भी है, वहाँ से रुकड़ा खोखरी मन ढेर भिटा थे, तो खूब हमरे मन खाए की खेती बारी करत थी।
0: और देखो आयर कर बगल में अगर गाछ वृक्ष जैसे लीची मन हो गलक, आंबा जामुन हो गलक, ये सब लगाव तो कते बेस रही।
1: सही बात है भाई बहन, देखो हमरे कर अगर कोनो ठाव ऐसा बाचल है तो गाछ वृक्ष में लगाए के चाहिए। और देखो सबसे बड़ बात है कि हमरे के गाछ वृक्ष में नहीं, सरकार देन से ध्यान भी देवे ना, और गाछ वृक्ष में फ्री भी देवे ना, है कि नहीं? उकर हमरे मन के फायदा उठाए के चाहिए।
0: एकदम उठाए के चाहिए भाई।
1: और देखो फल वृक्ष अगर बात करे ला तो हमरे मन देखो आम लीची जैसा बहुत सा अमरूद हो गलक, ऐसा बहुत सारा ऐसा फल है जेके हमरे मन लगाए के एक तो आमदनी भी कमाए के सकेला और संगे संगे खाए के भी भेटाई है कि नहीं,
0: और इकर से पर्यावरण कर संरक्षण भी हुई।
1: सही बात है। तो देखो विष्णु भाई, आज कर कार्यक्रम में काका जुगाड़ है, तने बता दे उन्हें हमरे कर भाई बहन मिले।
0: हाँ बता दे, आज कर बात में हमरे मन फल वृक्ष कर रोग नियंत्रण कैसे करे के इके हमरे मन जानब, और इके बतावे विशेषज्ञ डॉक्टर हेमचंद्र लाल, और इनकर से गोठियाए हैं।

0: हमरे कर प्रभु शरण जी।
1: और इकर बाद हमरे मन सुनब कृषि विकास गीत में कालिंदी कुमारी और संगे मन कर गावल गीत। और देखो रोजे बेरा रोरो मन के नवा नव किसान से भेंट मुलाकात करवाते रहेला, इसने आज रोरो मन के भेंट मुलाकात करवाब मशरूम उत्पादक किसान बिक्की कुमार से, है कि नहीं? तो विष्णु भाई देखो हमरे मन जैसे की फल वृक्ष कर बात कर रहे थे तो इकर बारे में हमरे के विस्तार से जाने के चाहे, चूंकि देखो बहुत सारा किसान मन ऐसा है नी कि खेती बाड़ी तो करे ना है लेकिन जानकारी कर अभाव में बहुत सारा नुकसान भी हो जाएगा।
0: एकदम सही बात के कह ली। तो देखो फल वृक्ष मन कर देख रेख कैसे करे है और इकर में जो रोग मने लग जाएला उके कैसे नियंत्रण करे है तो इके हमरे मन आज कर बात में जानब। और इके बताता है विशेषज्ञ डॉक्टर हेमचंद्र लाल और इनकर से गोठियाए हैं प्रभु शरण जी।
2: चलो तो सुनी ले। नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर हेमचंद्र लाल, अध्यक्ष पौधा रोग विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची। और आज हम बात करने जा रहे हैं फल वृक्षों के बारे में, फलों के बारे में। झारखंड राज्य में अधिकांशतः यह देखा गया है कि जो प्रमुख फल हैं जिनकी खेती की जाती है यहाँ, उसमें आम है, अमरुद है, पपीता है, नींबू है, इसी तरह के फल प्रायः लोग इसकी खेती करते हैं और ये मार्केट में उपलब्ध भी कराया जाता है। तो इन फल वृक्षों का, बगानों का, या जो शौकिया भी इन फलों का उत्पादन करते हैं तो उसमें रोग नियंत्रण किस प्रकार किया जाए, इसी के संबंध में हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: नमस्कार किसान भाई जोहार।
2: अगर हम आम की बात करें तो इसमें प्रमुख कौन कौन से रोग लगते हैं और उनके लक्षणों के बारे में भी बता दें।
3: जी किसान भाई, आम में, पौधे में, वृक्ष में
2: जी
3: मुख्य रूप से जीवाणु जनित झुलसा और कैंकर रोग है, दूसरा चूर्णी लाश्ता है, तीसरा बीमारी जिसको कि हम एंथ्रेक्नोज के नाम से जानते हैं। और देखते हुए होंगे कि आम का जो ऊपर वाला भाग है वो कभी कभी काला पड़ जाता है जिसको कि हम ब्लैक टिप भी कहते हैं मैंगो में। ये इसके अलावा एक और बीमारी है जिसको कि हम लोग मैंगो मालफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। ये प्रमुख रूप से जो भी किसान भाई आम का पेड़ लगाए हुए हैं उसमें ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो अब है कि जीवाणु जनित जो झुलसा और कैंकर रोग है उसको हम कैसे पहचाने?
2: ये सर अभी आप जो जिस रोग के बारे में आपने बताया उसको देख कर कैसे पहचानेंगे?
3: हाँ, तो है कि जब आप संक्रमित पौधे को जीवाणु जनित झुलसा एवं कैंकर रोग में देखेंगे तो पाएंगे कि पेड़ के पत्तों के ऊपरी भाग पर जो है थोड़ा सा वाटर सोक्ड लेजन बनता है, जो पत्ती है उस पर पानी जैसा होगा और वो वहाँ सूखना शुरू हो जाता है।
2: अच्छा।
3: और वो लेजन्स जो है एक लेजन दूसरे लेजन से मिलते हैं और फिर फैल कर भूरा और काला हो जाता है वो जगह। तो इस तरह का लक्षण जब आपको पता चले तो इसको आप समझिए कि ये जीवाणु जनित झुलसा या कैंकर रोग है। इसमें अगर आप एक दवाई है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 200 ppm माने एक ग्राम दवा 5 liter पानी में
2: जी,
3: अगर तीव्रता कम है तो एक ग्राम दवा 10 liter पानी में, 100 ppm से हम लोग कहते हैं कि 200 ppm तक इसको ये करना चाहिए। और एक बार इसका छिड़काव कर दिया जाए 15 दिन के उपरांत जो है एक दवा है ब्लाइटॉक्स 50 या ब्लू कॉपर 50, ये भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसमें तत्व है, केमिकल तत्व है, ये 3 gram प्रति लीटर पानी से छिड़काव कर देने से, 2 बार छिड़काव करने से इस बीमारी से किसान भाई जो है
2: निजात पा सकते
3: फल,
2: हैं
3: फल वाले वृक्ष को निजात में ला सकते हैं
2: जी।
3: दूसरा एक कहते हैं अंग्रेजी में जिसको कि पाउडरी मिल्ड्यू चूर्णी लाश्ता, इसमें किसान भाई संक्रमित पेड़ के पत्तियों पे आप देखेंगे कि टेलकम पाउडर जैसा जो है पूरा पाउडर बिखरा पड़ा मिलता है
2: जी, जी।
3: तो ये बेसिकली जो फफूंद है उसके बीज हैं, स्पोर्स हैं। तो देखते ही आप पहचान जाइए कि ये चूर्णी लाश्ता है। और इस देखिएगा कि जब आप मंजर वाली अवस्था होती है आम में तब ये बीमारी देखिएगा कि पूरे मंजर में भी आ जाता है और मंजर को काला कर देता है
2: जी।
3: और उसी समय माहू का प्रकोप भी होता है। तो किसान भाई आपको चाहिए कि इसमें एक बहुत सस्ती दवा प्रचलित दवा है सल्फेक्स TWP 3 gram दवा ये लीजिए। और एक है रोगर डाइमेथुएट के नाम से आता है रोगर, तो 2 ml ये लीजिए। तो 1 liter में 3 gram ये मिला दीजिए, 2 ml ये मिला दीजिए तो माहू का समस्या भी समाप्त हो जाता है और चूर्णी लाश्ता का समस्या भी समाप्त हो जाता है। इसके अलावा आम में जो है एक बताया गया कि जो आम का जो ऊपरा सिरा होता है फल का जो काला पड़ जाता है
2: काला।
3: तो ये बीमारी मुख्यतः आपको देखिएगा कि वहां होता है जहाँ की ईंट का

0: भट्टी है, तो ईंट के भट्टी से जो सल्फर डाइऑक्साइड का फ्यूम्स निकलता है, इसी के कारण जो है इसमें एक पोषक तत्व बोरॉन की कमी हो जाती है। और ये एक से दो किलोमीटर का एरिया जो ईंट भट्टी का है, वहाँ जो आम का पेड़ है, इसमें बीमारी प्रमुख रूप से देखने को मिलती है।
1: कई बार जैसे मार्केट में भी ये देखने को मिलता है कि कुछ आम बड़ा फ्रेश दिखते हैं और कुछ आम ऐसे होते हैं जो अभी आपने बताया कि उस पर ब्लैक स्पॉट, काले काले रंग के धब्बे होते हैं, तो क्या इसी बीमारी के कारण?
0: वो बताएंगे, वो थोड़ा सा अलग बीमारी है।
1: अच्छा।
0: जब अधिक बारिश हो तब जो सूटी मोल्ड का इम्पैक्ट होता है।
1: अच्छा।
0: तो उसमें करना चाहिए कि डाइथेन M45 एक दवा है, जैसे ही बारिश अधिक होने लगती है तो ये फफूंद जो है वो पनपता है।
1: अच्छा।
0: तो उसमें डाइथेन M45 ढाई ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे, तो उस समस्या से किसान भाई निजात पा लेंगे। लेकिन यहाँ है कि बोरेक्स 3 से 4 किलोग्राम बोरेक्स जो है उसका छिड़काव आपको 500 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देते हैं, तो और ये दो बार करेंगे तो आपके उस आम के पेड़ में ये समस्या कम।
1: ये तो बात हुई आम की।
0: हाँ।
1: थोड़ा सा अमरूद और पपीते के बारे में भी यही जानकारी।
0: हाँ।
1: जो आम समस्या है और खास करके झारखंड से जिसका वास्ता है, तो उसके बारे में बताएं कि अमरूद और पपीते के
0: जो अमरूद का बगीचा किसान भाई लगाते हैं तो उसमें मुख्य रूप से दो समस्या आती है अमरूद में। एक तो देखिएगा, जब फलने फूलने वाला अवस्था में है, 4-5 साल फला भी पौधा, तो अचानक देखिएगा सूख जाता है और मर जाता है। तो ये इसको हम लोग सूखा रोग की समस्या कहते हैं, ये फफूंद से होता है। और इसमें है क्या कि इस जो एक बार मिट्टी में आ गई, ये बीमारी मृदा जनित रोग है।
1: अच्छा।
0: और देर से चूंकि समझ में आता है तो किसान भाई को बाद में नुकसान करना पड़ता है। तो इसमें अगर खरीफ फसल में समस्या आ जाए तो उसमें क्या करना है किसान भाई, कि आपको एक सरी गोबर की खाद अपने पास रखनी है, उसमें एक फफूंद है जो जैविक जैविनाशी है, वो बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम करता है, ट्राइकोडर्मा पाउडर जो बाजार में भी उपलब्ध है।
1: अच्छा।
0: तो उसको पहले आप सरी गोबर की खाद में निवेशित कर लें किसान भाई, और निवेशित करके प्रति आम का जो घेरा है उसमें अमरूद का, उसमें रिंड बना दें, और रिंड बनाने के बाद उस घेरे में 1 से 1.5 kg उस निवेशित खाद को प्रति घेरा में डाल करके हर एक 3 महीना पे इसका उपचार करेंगे।
1: रिंड का मतलब जिसमें पानी इकट्ठा होता है गड्ढा।
0: हाँ, जो रिंड कहा जाता है कि सर की जो कैनोपी है उसके चारों तरफ थोड़ा एक नाली चारों तरफ बना
1: दिया
0: देते हैं।
1: हाँ,
0: एक फीट का
1: वहां
0: होता
1: पर
0: है,
1: पानी टिक सके
0: और उस
1: और बिल्कुल जड़ में सटा भी।
0: हाँ, और जड़ के पास जो है जड़ का फैलाव वहां तक होता है ये माना जाता है। तो उसमें अगर 3-4 बार अगर आप करते हैं तो ये समस्या आपका समाधान में हो जाता है। दूसरा एक बीमारी एंथ्रेक्नोज है। एंथ्रेक्नोज में देखा जाता है किसान भाई कि जो आप पौधा का पत्ती है या फल है उस पर देखिएगा फफोला टाइप बनना शुरू होता है, एक फफोला दूसरा फफोला से फैलता है।
1: जी जी।
0: और वो पूरे को फल को ही ग्रसित कर लेता है, और कुछ दिन बाद देखिएगा पूरा फल काला हो जाएगा और झड़ के पेड़ से गिर जाएगा,
1: कई जगह पर काले काले।
0: हाँ, तो उसी को हम लोग कहते हैं मम्मीफाइड।
1: दूर से देखने पे लगता है कि शायद वहां पर वो सड़न हो गया या कुछ।
0: जी, तो इस तरह तो इसमें क्या करना है कि जो गिर के जो निकल बागान में गिरते हैं अमरूद, उसको एकत्र कर लेना, वहां नहीं रहने देना है। और इसमें देखिएगा कि एक और लक्षण क्या है कि टहनी के ऊपर से ही वो पौधा सूखना शुरू होता है और नीचे आता जाता है, तो इसको हम लोग डाईबैक सिम्टम भी कहते हैं। ऊपर से सूख के नीचे की ओर आएगा, तो उसमें क्या करना है कि जो सूख रहा है जहां तक हरा है वहां उस भाग को हरा हुआ भाग के पास काट दें, उसमें बोर्डो पेस्ट का मिश्रण घोल लेप बना करके वहां लगा दें, और बाकी में जो है सो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो ब्लाइटॉक्स 50 के नाम से है या डाइथेन M45 वो दवा का स्प्रे कर देने से ये समस्या का निदान हो जाएगा। इसके अलावा पपीता एक फसल है जिसमें कि आप देखेंगे कि एक बीमारी आता है जिसको कि हम लोग कहते हैं स्टेम और फुट रॉट। जब देखेंगे कि बारिश लगातार हो रही है अगस्त सितंबर के महीने में और खेत में जल निकास की सुविधा नहीं है, तो देखिएगा कि इसमें जो है स्टेम के पोर्शन पे जो मिट्टी से लगा हुआ जो तना है उस पर देखिए चारों तरफ जो है वाटर सोक लेजन बन जाएगा और वो पूरा घेर लेगा, काला काला हो जाएगा, फिर वहीं से जो पौधा गिर जाता है। जैसे ही समस्या देखने को मिले तो खेत से तुरंत जल निकास की व्यवस्था कर दें। और एक दवाई है रिडोमिल MZ, ये एक फफूंद है पीथियम एफेनी डर्मेटम, उसके द्वारा होता है। तो जल निकास की व्यवस्था करके और पौधे के साथ जो जड़ के पास जो मिट्टी है उसको भी इस दवा से मेटल एक्जिल जो रिडोमिल MZ के नाम से बाजार में है 2 ग्राम

0: लीटर पानी घोल बना करके पूरा ड्रेंचिंग कर दें वहाँ की मिट्टी को और पौधे में भी स्प्रे कर दें। ऐसा दो बार करने से 15 दिन के अंतराल पे किसान भाई अपने फसल को बचा ले जाएंगे।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी फल वृक्षों में या फलों में जो रोग होते हैं उनके कैसे उसके लक्षण हैं और कैसे उन पर नियंत्रण पाया जाए, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर हेम चंद्रलाल, अध्यक्ष पौधा रोग विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे कृषक भाइयों को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद।
0: आपको ही प्रणाम, किसान भाई जोहार।
2: तो भाई बहन, एखन हम सुनली कि फल वृक्ष कर रोग नियंत्रण कैसे करे के चाहिए, हमरे के बताले डॉक्टर हेमचंद लाल से गोठियाले प्रभु शरण। तो देखो, हमरे के फल वृक्ष मन तो जरूर लगाए के चाहिए और जानकारी एकदम लेव के चाहिए, कहीं से भी हमारे कर जानकारी भेटा थे तो जानकारी लेव के चाहिए और अपन खेत में और अपन वृक्ष मन कर देखभाल में जरूर प्रयोग करे के चाहिए, है कि नहीं?
3: एकदम नगद जानकारी भी रहे।
2: तो देखो विष्णु भाई, अब तो गीत कर बेरा भी हो चले थे, क्या तो गीत सुनती तो बेस लात लग।
3: एकदम नगद बात की कहली काली की, देखो बात कर बीच में रीज रंग भी हो चाहिए। तो हमरे मन नागपुरी में कालिंदी कुमारी और संगीमन कर गावल गीत के चलो सुनी ला।
2: चलो तो।

0: गाउल गीत जे की नागपुर में रहे जे की संदेश भी देले और संदेश के हमरे मन के बढ़िया से सुन ली और इस संदेश के हमरे के अपन खेत डाड़ मन में जरूर प्रयोग भी करे चाहिए है कि नहीं
1: एकदम। तो देखो भाई अब गीत करवा दे हमरे मन नई उम्र कर नई फसल में हमरे मन मशरूम उत्पादक एगो किसान विक्की कुमार से करल भेंट के सुनब और इनकर से गोठाए हैं हमरे कर संगी मनोज कुमार।
2: मेरा नाम विक्की कुमार है, मैं कांके बोलो के निवरी विकास गांव के रहने वाला हूं और मैं सबसे ज्यादा मशरूम का खेती करता हूं।
0: अच्छी बात है भाई कि आप मशरूम का खेती बाड़ी करते हैं। भाई आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ हुई थी?
2: हाँ पढ़ाई लिखाई एक्चुअली मैं पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई कर चुका हूँ, उसके अलावा मशरूम का प्रशिक्षण लिए हुए हैं। मशरूम का प्रशिक्षण लेते हुए और ट्रेनिंग भी हम देते हैं गांव-गांव जाके और इस खेती को जैसे मशरूम हो जाता है ना तो इसमें सबका माल को मशरूम को लेके बेचने का भी काम हम ही करते हैं।
0: तो भाई अच्छी बात है आप मशरूम से जुड़े हुए हैं, तो कितने सालों से जुड़े हैं मशरूम से?
2: हम 10 साल हो गया।
0: 10 साल तो इस क्षेत्र में आपके लिए प्रेरणा कैसे मिला, कहाँ से आप सोचे कि भाई क्षेत्र में आना चाहिए मशरूम का क्षेत्र में?
2: एक्चुअली हम एक बार रांची आए थे तो रांची यूनिवर्सिटी गेट के पास बिकते हुए देखे थे, तो उनके बाद हम उस बेचते हुए देखे तो वो पता कि कहाँ से ये होता है, तो जिस समय हम देखे थे उस समय तो वो दिल्ली से आता था, तो ये तो पॉसिबल नहीं था कि हम दिल्ली से मंगा पाए, तो उसको थोड़ा सा हम गूगल उगल में सर्च किए, उसके बाद पता चला नहीं प्लांटों में इनका बीज मिलता है, बीज मिलता है, तो बीज को ला के उसके बाद प्रैक्टिकली किए, तो प्रैक्टिकली करने के बाद फर्स्ट टाइम तो नहीं सक्सेसफुल हुए लेकिन उसी क्रम में प्रक्रिया 1-2-3 बार किए उसके बाद सक्सेसफुल हो गए, उसके बाद मेरे अंदर आत्मविश्वास हो गया कि मैं अब कर सकता हूँ, तो उसी के हिसाब से मैं करना स्टार्ट किया। करते करते आज देखिए मैं इसको एक प्रोफेशनल टाइप से वर्क कर रहा हूँ, अब वर्क करते करते 4-5 आदमी भी रखे हुए अपने साथ।
0: तो अच्छी बात है विक्की भाई कि आप मशरूम के क्षेत्र में कदम रखे और अभी हमको लगता है कि आप काफी सफल हो चुके हैं। तो शुरुआत दौर में कैसे शुरुआत किए थे आप, कितने जगह से शुरुआत किए, क्या
2: स्टार्टअप में? हाँ स्टार्टअप में मैं स्टूडेंट थे तो पैसा एक्चुअली कैपिटल का भी पूंजी था, तो 10x10 का रूम में 7-8 हजार लेके हम आए थे और उसी को 7-8 हजार लेके आने के बाद उसी को धीरे धीरे क्रम बाई क्रम करके साल बाई साल मेहनत करते हुए अपने प्रतिभा को आगे बढ़ाते हुए आज अप्रोक्स लाखों का बिजनेस कर रहे हैं और रांची में पूरा कवरिंग कर लिया, मेरा ख्याल से 100 आदमी बेच रहा है तो 50 आदमी मेरा माल को मतलब मेरा मशरूम को बेच रहा।
0: तो जैसे मशरूम की बात करें तो कौन कौन सा मशरूम का उत्पादन करते हैं?
2: हम एक्चुअली झारखंड में सबसे ज्यादा बटम और डिंगरी मशरूम का बहुत ज्यादा प्रचलित है और उसके अलावा और भी मशरूम का हम जानते हैं प्रोडक्शन करने लेकिन वो बहुत कोई जानता नहीं है इसीलिए हम उसको तो नहीं बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बटम और डिंगरी मशरूम, जो कि बटम अभी तो सब जगह सब राशन दुकान में भी मिल रहा है, जगह जगह चौक चौराहे पे भी मिल रहा है और छाता मशरूम अभी देखिए खटाल में मिलता है, कचेरी रवि एंड मशरूम एंड वेजिटेबल सप्लायर में भी मिलता है, प्लस मेरा निवरी विकास में भी ऑफिस है वहां भी मिलता है, इस टाइप से हर एक जगह मशरूम मिलता है।
0: तो आप अपने क्षेत्र में जहां पे मशरूम लगाए हैं वो करीब कितना बड़ा एरिया में लगाए होंगे?
2: हम अभी बटर मशरूम का 4 रूम में अपना लगाए हुए हैं, प्रत्येक दिन 150 kg प्रोडक्शन हो रहा है, छाता का माने तो 30x50 का 2 रूम है और उसी में प्रोडक्शन हो रहा है और छाता मेरा ख्याल से 150 kg प्लस है रांची में मेरा।
0: हाँ तो डेली आपका सप्लाई हो रहा है?
2: हाँ डेली सप्लाई हो रहा, हर एक काउंटर में सप्लाई हो रहा।
0: तो बेचने का समस्या कोई नहीं है सर?
2: कोई समस्या नहीं, हम तो और बोलते हैं कि और किसान हमारे साथ जुड़े तो उसका भी बेचने का जिम्मेवारी हम ले लेंगे।
0: जैसे कि बटम मशरूम के बारे में बात करें तो शुरुआत से कैसे लगाते हैं, शुरुआत थोड़ा सा बताएं उसको कैसे लगाते हैं?
2: ये बटम मशरूम का मेथड 1 महीना 45 दिन का है, उनका एक कंपोस्ट खाद बनता है, कंपोस्ट खाद में बहुत सारा रो मटेरियल आता है जैसे भूसा हो गया, चोकड़ हो गया, गुड़ हो गया और कुछ कुछ खाद बीज दुकान से कुछ कुछ मटेरियल आता है, यूरिया DAP भी कुछ कुछ वहां डाला जाता है और जो हो गया पोल्ट्री जो मुर्गी का जो होता है वो भी डाले जाते हैं भूसा को गर्म करने के लिए, वो सबको 1 मंथ तक प्रक्रिया किया जाता है, मतलब अगर हम चेम्बर में बनाते हैं तो 14-15 दिन में हो जाता है और प्राकृतिक के हिसाब से हम बनाते हैं तो कम से कम 30 दिन लगता है। तो अब हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे बनाए, बड़े बड़े प्लांट जैसे खुले वो तो अपना चेम्बर बनाए हुए हैं वो तो 14-15 दिन में खाद कंप्लीट कर ले रहे हैं, वो खाद में स्पॉनिंग करके उसके बाद उसका जो एसी रूम होता है वहां डाल देते हैं, वहां कम से कम 15 दिन लगता है उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है।
0: तो करीब कितने दिन में तैयार हो जाता है मशरूम बटम का?
2: बटम मशरूम 45 दिन में कंप्लीट फ्रूटिंग आने लगता है।
0: 45 दिन में। चलो अच्छी बात है।

0: हर एक कोई कर रहा है, उस प्रकार से हम लोग भी कर सकते हैं, नवयुवक है।
1: सही बात है। तो किसान भाई, आप लोग खेती बाड़ी करें और साथ में खेती बाड़ी से मशरूम का अगर आप उत्पादन करते हैं तो एक अलग से आपका व्यवसाय हो सकता है और आमदनी बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई हमारे एक बात को सुन रहे हैं, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: यही संदेश है कि अगर मशरूम में इंटरेस्टेड है और करना चाहते हैं तो जरूर हमसे संपर्क करें, और उसमें मेरे साइड से भी सहयोग रहेगा। जैसे कि आज के डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है कि मार्केटिंग, कैसे हम उसको प्रोडक्शन कर लिए लेकिन उसको सही स्थान पे बेच नहीं पा रहे हैं, तो हम बहुत कोई को सहयोग करते हैं, उसी प्रकार सहयोग करेंगे।
1: जैसे कि बहुत सारे लोग खरीदते हैं और खाते हैं, तो सबसे अच्छा मशरूम अगर बटू मशरूम खरीदे तो बहुत पुराना ना हो, अच्छा हो, तो कैसे पहचान करेंगे वो?
0: देखिए, सबसे बड़ा चीज है तो मशरूम दो तीन फ्लश में कटता है। पहला फ्लश जो होता है बहुत हार्ड टाइप से रहता है, जैसे आलू हम लोग पकड़ते हैं तो थोड़ा पूरा हार्ड रहता है ना, उस टाइप से मशरूम बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद डे बाय डे जैसे जैसे जैसे मशरूम बासी होने लगता है तो रुई के जैसा नरम होने लगता है, तो बहुत ज्यादा नरम हो गया तो थोड़ा सा टेस्ट में टेस्ट में थोड़ा सा मतलब अंतर हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, खराब तो नहीं होता है लेकिन टेस्ट में दोनों में अंतर हो जाता है।
1: तो किसान भाई, आप जब भी खरीदें तो आप देख कर समझ के खरीदें और खाएं, और किसान भाइयों आप लोग खेती बाड़ी करें और साथ में मशरूम का उत्पादन जरूर करें। तो किसान भाइयों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद थे बेकी कुमार, जो कि मशरूम का उत्पादन करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही, दूसरे दिन फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक बेकी, आपको जोहार है, नमस्कार, धन्यवाद।
0: नमस्कार सर।
1: और किसान भाई, आपको भी धन्यवाद, जोहार। तो भाई बहन, जैसन की हमारे मन सुन ली कि मशरूम कर खेती हमारे मन के कैसे करे चाहिए और मशरूम से कितना फायदा है और मशरूम हमारे मन के काले के लगा चाहिए और कौन कौन ऐसा मशरूम है जो कि हमारे कर झारखंड राज्य में बगरस बगरा सब कोई खाए ना, और हमरे के मशरूम उत्पादन करे चाहिए और कर से फायदा उठाए चाहिए। चूंकि देखो, खेती बाड़ी तो हमारे मन करते रहिला, लेकिन संगे संगे अगर दूसर दने भी हमारे तनी में ध्यान देव नहीं तो आमदनी जरूर से जरूर बढ़ी है कि नहीं?
2: एकदम सही बात के कहली। और एखन प्राकृतिक रूप में भी जंगल झाड़ में खुखड़ी मन उठेला और उखो हमरे के खाए के चाहिए।
1: और देखो, खुखड़ी तो जंगल झाड़ में उठबे करेले, लेकिन ऐसा खुखड़ी के खाए के नखे जेकर से हमरे में बीमार पड़ जाओ, तो हमरे मन वही खुखड़ी के खाए के जेकर बारे में हमरे मन जान ला, और नहीं जाने थे तो उकर खुखड़ी के एकदम छुए के भी नखे और खाए के तो दूर की बात है।
2: एकदम एकदम सही बात के कह ली।
1: तो भाई बहन देखो, इकरे संग आज कर हमरे कर किसान वाणी कर मेरा सिरात है, तो कहे चाहती कि कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार,
2: और कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे आकाशवाणी रांची कर।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: जिले बस इतने दोस्तों, फिर भेटा एगो नवा जानकारी के संगे, तब तक रोर मन के रेडियो संगे मनोज और
7: विष्णु के देवविदा, जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आपके साथ हूं श्वेता। स्वीकार करें श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म आंधी से। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, पसंद आप सभी दोस्तों की। कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। इसी गीत के लिए फरमाइशी खत आया हजारीबाग पतरातू से आप हैं बेसिल खलखो, सेसिल खलखो, मधु, रितु, रचना, मीतू, श्वेता, पल्लवी, रोहित, प्रवीण, सचिन, नदीम, ललिता और परिवार के सभी सदस्य। एक खत आया जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश से आप हैं मुसर्रफ खां, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, रोजमीन, तैमूर तड़वी और परिवार के सभी सदस्य। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम, आयसा, हदिया, आसमा, सलिया, सोएब खान, मुजतबा खान, राउफ और शाहिद ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है।

कार्यक्रम का अगला गाना कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वरों में फिल्म है आशिकी, पसंद है आप सभी दोस्तों की। सिलवार खुर्द हजारीबाग से आप हैं आशीष कुमार, आयुष कुमार, अनीस कुमार, गायत्री देवी और परिवार के सभी सदस्य। रोपड़ पंजाब से आपने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। आप हैं हरदेव मीका, बलविंदर मीरक, जयतेग मीरक और बीका मीका बीरक। दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना गुड़िया, गोलू भोला और इनके मम्मी पापा आप सभी हैं बड़का गांव से। बिरडी से आप हैं हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मकर, हार्दिक कर्मकर, प्राची कर्मकर और तनु कर्मकर। तो आइए आप सभी दोस्तों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गाना, फिल्म का नाम आशिकी।

आपने ट्यून किया है 102.1 मेगाहर्ट्ज और इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। कार्यक्रम का अगला गाना फिल्म का नाम एतबार, आवाज आशा भोसले की, पसंद आप सभी दोस्तों की। महादेव घाट अमलेश्वर से टुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रयांस और गुड़िया ठाकुर। छत्तीसगढ़ भट्टापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा

परिवार के सभी सदस्य बसंत हजारे, प्रमोद हजारे, महेश हजारे, मिनांशु हजारे और आदित्य हजारे, आप सभी हैं महाराष्ट्र से। बरकाकाना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम और अफजल इब्राहिमी ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। तो चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गाना, फिल्म का नाम एतबार, आवाज आशा भोसले की।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम आखिरी खत, आवाज लता मंगेशकर की, और इस गीत को सुनना चाहा है अंधरा ठाड़ी मधुबनी बिहार से आप हैं शोभी कांत, हेमलता, मनोज, लकी, मोहित, परी, सरोज, स्तुति, नैतिक, सोनाक्षी, अर्चना, विवेक और एस के सज्जन। डम्बाडी हरली बड़कागांव से आपने भी इसी आप सबने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। आप हैं उमेश चंद्र पांडे, शंभू चंद्र, अनिल चंद्र, साकेत, शुभम, नर्मदा पांडे, अक्षता, प्रियंका, शम्मी, अपराजिता, टूकू, अपूर्व और परिवार के सभी सदस्य। ये खत आया है ओल्ड लिसनर ग्रुप मगनपुर से, आप हैं अमजद अली और अब्बास अली। तो आइए आप सभी दोस्तों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गाना, फिल्म का नाम आखिरी खत, आवाज लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम 5 राइफल्स, आवाज अजीज नाज और साथियों की, और इसे सुनना चाहे औरंगाबाद से आप हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। ये खत आया है इसी गीत के लिए चेपा कला बड़का गांव से बाबूलाल ठाकुर, सविया ठाकुर, तिलेश्वरी भरत ठाकुर, मंजू संतोष, विकास कुमार, जितेश, आदर्श, अनुराधा, रुक्मणी, प्रियंका, दीपिका और परिवार के सभी सदस्यों का। अमित चैटर्जी, करुणा चैटर्जी, जय चैटर्जी और बोनी चैटर्जी, आप सभी हैं मटवारी हजारीबाग से। इसी गीत के लिए फरमाइशी खत भेजा है सचिदानंद दुबे, नटवर निर्मोही, कुमार दिवाकर और सत्यम सावरिया ने रातू रोड रांची से। तो आइए आप सभी दोस्तों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गाना। फिल्म का नाम 7 राइफल, आवाज अजीज नाजा और साथी।

कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुना रहे हैं, फिल्म का नाम अजनबी, आवाजें कुमार सानू और सुनिधि चौहान की, पसंद आप सभी दोस्तों की। ग्राम बड़बुड़वा पथरिया से आप हैं, नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका नेताम, प्रोनामिका नेताम और उत्कर्ष नेताम। शिवाजी छत्तीसगढ़ से आप हैं, अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेट्रा से, पेट्रा छत्तीसगढ़ से आपने भी इस गीत को सुनना चाहा है, आप हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। माली टोला खिरगांव से इसी गीत के लिए फरमाइशी खत भेजा, वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास भगत, जितेंद्र, रितेश, रोहित, अनिकेत भगत, ऋषि और राहुल ने। तो आइए आप सभी दोस्तों की पसंद पर हम आपको सुना रहे हैं ये गाना, फिल्म का नाम अजनबी।

कुमार सानू और सुनिधि चौहान के युगल सुरों में गाए फिल्म अजनबी के इसी गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत यहीं समाप्त होता है।

आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या के आज का अंक, न्यूज एट 9 और स्पोटलाइट, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। उसके बाद रात्रि 9:30 से रात्रि 10 तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। तो हमारे इन प्रसारणों की कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दो दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 200

0: 80 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जांच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
2: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उसमें केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास एआई, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
4: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
2: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ये परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया।

0: अम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया और कहा कि इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव करते थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए न्यूज ऑन AIR.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा जिले में आज हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई घर और एक रेस्तरां भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। श्री मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम एक घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
2: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
3: देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि देश खेलों के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय के लिए 4,400 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। भारत ने रियो 2016 में 2 पदक, टोक्यो 2020 में 7 पदक और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते थे। वहीं पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पदकों की संख्या रियो 2016 में 4 से बढ़कर पेरिस 2024 में 29 हो गई है। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। देश ने 2014 के एशियाई खेलों में 57 पदक जीते थे, वहीं 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर इतिहास रचा। सकलेन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म वार से, आवाज़ें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल कुमार के और संगीत विशाल और शेखर का।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: आइए आज बात करें अभिनेत्री लीना चंदावरकर की।
1: क्या सच कह रहे हो? अरे क्या, तुम तो बहुत छोटा ही है।
2: आपको तो ताज्जुब होगा कि इतनी गहरी चोट खाने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ।
1: मुझे गलत मत समझना।
2: यही तो अफसोस है, मैं आपको बिल्कुल सही समझ गया हूँ।
1: मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। सच कहती हूँ, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल नादानी है।
2: कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा।
1: वाह अच्छा शेर है, बैठो मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ।
2: ड्रेसिंग की क्या जरूरत है, दुनिया का हर जख्म कुछ दिनों बाद भर जाता है और फिर अपनी जिंदगी तो कांटों में कटी है।
1: मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उस आदमी से सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें देहरादून तक ले जाए और तुम फिर कड़ी नजर रखे। लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती
2: कि मैं टूट जाऊंगा।
3: लीना, फिर अब भी मैं लेके कहा था, तू कहा थी अब तक
1: घर पर ही थी और कहा थी
2: नेंद्रा को मेकअप करने के लिए 2 घंटे चाहिए।
1: मैं मेकअप नहीं कर रही थी, गाड़ी का इंतजार कर रही थी। गाड़ी तुम लेकर आए, मैं कैसे आती?
2: अंकल की गाड़ी ले आती।
1: उनकी गाड़ी में आई है, मुझे अकल मत सिखाओ।
2: अकल तो उसे सिखाई जाती है जिसके पास अकल हो।
3: अरे अरे अरे, क्या हो गया तुम लोगों को बाबा? आज मेरा बर्थडे है, उस दिन लड़ोगे?
4: आज मेरी सबसे प्यारी सहेली लीना मेरी बर्थडे पार्टी की खुशी में एक गाना सुनाएगी।
2: हाँ हाँ

मीना चंदावरकर दरअसल कारवाड़ की रहने वाली हैं। 15 साल की उम्र में उन्हें अभिनय का चस्का लग गया और होनहार कलाकारों के चयन के लिए होने वाली एक प्रतियोगिता में उन्होंने चुपके से आवेदन कर दिया। उनके माता पिता ने इस बात का विरोध किया, लेकिन दादाजी का समर्थन पाकर लीना चली आई मुंबई। उम्र बहुत

कम होने के कारण इन दिनों उन्हें हीरोइन के रोल नहीं दिए जाते थे। कुछ फिल्मों में लीना चंदावरकर ने बहन की भूमिकाएं की। इस दौर में लीना ने छुटपुट मॉडलिंग भी की। उन दिनों अभिनेता और निर्देशक सुनील दत्त अपनी फिल्म मन का मीत की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म में उन्होंने लीना को पहली बार हीरोइन बनाया।

फिल्म मन का मीत की तैयारी के दौरान सुनील दत्त ने लीना की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अपनी पत्नी नरगिस को सौंपी। नरगिस जी के नजदीक रहकर लीना ने भाषा, संवाद अदायगी, नृत्य, तैराकी और ड्राइविंग सीखी। फिल्म मन का मीत को बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन लीना चंदावरकर की पहचान जरूर बन गई। अगले ही साल सन 1970 में लीना चंदावरकर की धमाकेदार फिल्म आई हम जोली।

0: जाने दो जाना है गाते गाते लीना धूम मचाती हुई चोटी की हीरोइनों में गिनी जाने लगी। शम्मी कपूर के साथ वे नजर आई फिल्म प्रीतम और फिल्म जाने अनजाने में।
1: राम, आज मैं बहुत खुश हूँ। दिल पे एक बोझा था, वो आज हट गया।
2: बोझ? कैसा बोझ?
1: आज जब तुम्हारा फोन आया था तो हेमंत भी वहां मौजूद था। उसने एकदम अचानक शादी की बात छेड़ी।
2: मुबारक हो।
1: ओहो, तुमसे बात करना भी मुश्किल है। मैंने हेमंत से साफ साफ कह दिया कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ।
2: माला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब तुम्हें मालूम होगा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ तो
1: अब कोई फायदा नहीं राम।

0: जब शक्ति सामंत जी आए घर पर और वो जाने अनजाने के लिए आए थे, तो उन्होंने दो फिल्मों के ऑफर लेके आए थे, एक में राजेश जी थे और एक में शम्मी जी। अब पता नहीं मेरे पापा को किसने भड़काया था कि शम्मी जी बहुत ही अपने टाइम में वो क्या बोलते हैं एकदम करके थे, तो पापा ने बोला, पापा भी एकदम उनको मालूम नहीं ना, बोले कि राजेश खन्ना यस, शम्मी कपूर नो। तो उन्होंने वाई क्यों नो, तो बोलते वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, राजेश खन्ना नए नए हैं, तो नहीं आप बोलिए ना, ये शम्मी जी के साथ में बहुत अच्छा रोल है और इतना अच्छा मतलब सब्जेक्ट है। उस जमाना ऐसे था कि कोई आर्टिस्ट ही थे नहीं, इसलिए हम लोगों को वाकई बहुत इज्जत मिली और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस तरह से कि जैसे रवेल साहब मुझे तो अपने एक बेटी की तरह ट्रीट किया और एक मंदिर जैसा लगता था स्टूडियो में जाना का। अब हुआ ये कि शक्ति जी की फिल्म से पहले बप्पी सोनी एक डायरेक्टर थे जिन्होंने प्रीतम के लिए मुझे साइन किया, इन्होंने जाने अनजाने के लिए, तो इसका आउटडोर पहले आया, तो आउटडोर पहले हम लोग कश्मीर चले गए आउटडोर करने के लिए, दो तीन गाने फिल्म आए वगैरह, तो वहां पर शम्मी जी के साथ काफी उनकी फैमिली भी आई हुई थी वहां पर, और मस्ती मजाक भी करते थे, वो मुझे बोलते थे डेढ़ फुटी, मैं बोलती थी लंबे इंसान का दिमाग घुटने में होता है, ऊंचा जो होता है, इस तरह से हम लोग, वो तो राजी नहीं बोला था कि वो डेढ़ फुट ही बोले तो ऐसे बोलना कि घुटने में होता है आप लोगों का दिमाग, तो हम लोग काफी मतलब फैमिली काफी क्लोज आ गई और वो इतने अच्छे इंसान थे कि मैं
1: अभिनेत्री लीना चंदावरकर की धर्मेंद्र के साथ जोड़ी बनी फिल्म रखवाला में मेरे

1971 में हास्य अभिनेता महमूद की फिल्म आई मैं सुंदर हूँ। इस फिल्म के जरिए लीना ने अपने चाहने वालों से कहा,

मंचली में लीना चंदावरकर ने लोगों को अपनी अदाओं से खूब गुदगुदाया और ये साबित कर दिया कि कॉमेडी में भी उनका कोई जवाब नहीं है। सन 1974 में आई फिल्म विदाई, इस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए लीना को खूब तारीफ मिली।

0: सन 1974 में विदाई फिल्म के साथ ही लीना चंदावरकर ने फिल्म उद्योग को अलविदा कह दिया था, क्योंकि सिद्धार्थ वांदोड़कर के साथ उनका विवाह हो गया था। एक दर्दनाक दुर्घटना में उनके पति नहीं रहे और लीना पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मजबूर होकर लीना चंदावरकर को दोबारा फिल्मी दुनिया में आना पड़ा।
1: तो जिंदगी है कभी खुशी है कभी

0: कभी खुशी है कभी गम।
1: आगे चलकर लीना चंदावरकर की मुलाकात हुई सुरों के बादशाह किशोर कुमार से, जो उनके जीवन साथी बने।
2: आज भी मैं जब कोई गाना सुनती हूँ उनका, तो एक एक गाने के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। जैसे एक गाना था, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान
1: सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

आज कल और आज और कल फिल्म का गीत हम आपको सुना रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने।

मोहम्मद रफी को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी आज और कल। कार्यक्रम का अगला गाना अनुराधा और मनु के गुलजारों में, फिल्म का नाम आजा सनम।

आपने ट्यून किया है 102.1 MHz और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम का अगला गाना, फिल्म का नाम आक्रमण, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: कार्यक्रम के आखिर में फिल्म का नाम आन मिलो सजना। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।
1: अच्छा तो हम चलते हैं।

0: अच्छा अच्छा तो हम चलते हैं,
1: अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम।
2: किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल सुरों में फिल्म आन मिलो सजना के इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं समाप्त होता है।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज के फनकार।

कार्यक्रम आज के फनकार सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम आज के फनकार के इस सफर पर आज हम आपको ले चलेंगे 90 के दशक के बेहद मशहूर पार्श्व गायक जिन्होंने बेशुमार शोहरत हासिल की अपने गानों के जरिए, उन्हीं के कुछ चुनिंदा गीतों को आज हम लाए हैं आपके लिए इस कार्यक्रम में।

दोस्तों, 90 के दशक की बात हो और कुमार सानू की आवाज का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर्स में से कुमार सानू का नाम आज भी खास जगह रखता है। 90 के दशक में उनकी आवाज ने रोमांस और प्यार के गानों को एक अलग पहचान दी। उनकी आवाज में गाए कई गाने ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, चाहे प्यार का इजहार हो, जुदाई का दर्द हो या फिर दिल की कोई बात। कुमार सानू की आवाज हर एहसास को खूबसूरती से बयां करती हैं आज भी। यही वजह है कि उनकी कई गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल हैं और नई पीढ़ी भी उन्हें खूब पसंद करती है। चलिए, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं साजन फिल्म से, और साजन फिल्म का यह गाना रोमांटिक गाना है और आज भी 90 के दशक के सबसे पसंदीदा गानों में गिना जाता है। गाने में प्यार और भावनाओं का बेहद सरल तरीके से पेशकश है।

दोस्तों, शाहरुख खान और महिमा चौधरी पर फिल्माया गया गाना दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, प्यार में धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियों को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाता है ये गाना।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 102.1 मेगाहर्ट्ज और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज के फनकार। और हमारे आज के फनकार हैं 90 के दशक के प्रसिद्ध पार्श्व गायक कुमार सानू। दोस्तों, हम आपको बता दें, बहुत समय से वे बंगाली फिल्मों में सक्रिय हैं और हिंदी फिल्मों में अब उनकी सक्रियता कम हो गई है। वर्ष 2009 में उनके अभूतपूर्व संगीत योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और देश के चौथे सबसे सम्मानित नागरिक के तौर पर मनोनीत भी किया गया। फिल्म रॉडी राठौर में गीत छम्मक छल्लू छैल छबीली के साथ दोबारा वापसी उन्होंने की। फिर सन 2014 की रिलीज यशराज फिल्म निर्मित दम लगा के हैसा फिल्म में उन्होंने गीत गाया साधना सरगम के साथ। आइए हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा।

श्रोताओं, कुमार सानू को जुर्म फिल्म के लिए जब कोई बात बिगड़ जाए, गाने से उन्हें पहली सफलता मिली, लेकिन उन्हें आशिकी ने सुपरस्टार बनाया। फिर इस फिल्म से उन्होंने शुरुआत कर लगातार 5 सालों तक, वर्ष 1991 से लेकर के 1995 तक लगातार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार जीते, जो कि एक कीर्तिमान है। उन्होंने उस समय के लगभग सभी संगीतकार के लिए गीत गाए हैं। आनंद मिलिंद, जतिन ललित और अनु मलिक जैसे संगीतकार इनमें शामिल हैं, लेकिन वो नदीम श्रवण के साथ गीत ज्यादा गाए और उनकी सफलता की शुरुआत हुई और उन्हें सर्वाधिक कामयाबी भी प्राप्त हुई उनके गीतों के जरिए। बात अगर फिल्म बाजीगर के इस गीत के लिए की जाए तो बाजीगर फिल्म का गाना आज भी पार्टी और बॉलीवुड प्ले लिस्ट में सुनाई देता है। शाहरुख खान के अंदाज और कुमार सानू की आवाज ने इसे और भी खास बना दिया संगीत प्रेमियों के लिए।

दोस्तों, 90 के दशक के गायक की मखमली आवाजों को शब्दों में समेट पाना या फिर उनके गीतों को चंद समय में सुनकर आनंद उठा पाना काफी मुश्किल है। तो ये कार्यक्रम आज हम समर्पित कर रहे थे पार्श्व गायक कुमार सानू पर, और इसी के साथ ये कार्यक्रम आज के फनकार यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीयों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच पर भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशलयुक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की मध्य प्रदेश इकाई ने ऑपरेशन वज्र 2 के अंतर्गत एक बड़े अंतर्राज्यीय औषधि तस्करी मामले में 66 लाख से अधिक मनोरोगी गोलियां जब्त की हैं। ये खेप मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम 1985 की संबंधित धाराओं के तहत जब्त की गई है। इस अभियान में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और एक ट्रक भी जब्त हुआ है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि CBN ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश गलियारे के साथ मनोरोगी दवाओं की एक बड़ी अवैध खेप की आवाजाही के संबंध में विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और उड़ीसा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना ओरकेल। Prime Minister Narendra Modi arrived in Tashkent, the capital of Uzbekistan, this evening on a two-day visit aimed at further strengthening bilateral ties between India and Uzbekistan. He was warmly received by Uzbek President Shavkat Mirziyoyev at the airport. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that the entire Tashkent city has been decked up with Indian flags.